0: फिको फिका सदी है, फिके फिकी सोए, फिका दरगे सटी है, मोतुका फिके पाए, फिका मुर्ख्या खिए, पाना लहे सजाए महला पहला,
1: अंदरों झूठे।

कौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते धारी है। देखा किता अपना दर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है को सह मनुसारी है। अपन हती अपना पी का सवारी आपे ही।

कौड़ी नानक जापनी हरता के पारावार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक नागली जंजीरी एक पुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप हूँ कैसे करी पुकार, नानक करना जिनकी आ फिर तिस ही करनी सार।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी फ्रिडिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील कुझु निकिता आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमेशह भॻत कंवर राम साहिब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ अॼु मां प्रोग्राम ॿुधंदा सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी। न्यूज़ हेडलाइंस प्रोग्राम जे आख़िरि में नशर कई वेंदियूं। या त असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर छो त भॻत कंवर राम साहिब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

تمام بھگت گورام صاحب جن جی سدا بار آواز میں کلام دی رہی آکاش وانی جی سندھی سرسائیں اور پیش ہے تفسرو 24 مئی 2026 تے فٹ انڈیا سنڈے تینجو سائیکل تے 75 آیوجن کیا ہو ان مسیح پروگرام میں 8000 کھاں بھی ودیک ہنن تے ملک بھر میں کاروائی کی ہوئی جن میں جدید تعداد میں مانو شامل تھیا इन सा अहमदाबाद में साल 2030 में कॉमनवेल्थ रांद कराने अस अगत बदी रहे कौमी जलसे के मशहूर साबरमती नदी के किनारे अगे अहमदाबाद में सरबराह कई नौजवान के मामलन ए रांदन पोरेत ए रोजगार वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया गुजरात के नायब वडे वजीर हर्ष संघवी ए बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना जैसा गड 5000 साइकिल ते सवार हुआ एथलीट्स हुआ नौजवान वॉलंटियर्स ए फिटनेस जै शौकीन तीन इन प्रोग्राम में हिस्सों वरतो अहमदाबाद एडिशन जो मौजू हो एक फिटर इंडिया डां अगते वधण पैडलिंग टू 2030 तेमें 5 किलोमीटर जी साइकिल रैली कई हुई उनखां अलावा योगा ए ज़ुम्बा पिण थिया ये सब कारवाइयूं साबरमती जी नदी किनारे थियूं जैं में मुल्क के फिटनेस सकाफत ए भारत के रांदन में थियल तरक्की के पधरो किया वो इन वाक्य की खास गाल हुई डॉक्टर मांडविया पारा एक खास कॉमनवेल्थ गेम्स थीम एग्जीबिशन नुमा जो मुहूर्त करण जैमें भारत के रांदन में हासिलात के ॾेखारियो वियो इन खां अलावा रांदन के खेत्र में बुनियादी ढांचे के जो खेलो इंडिया मिशन तहत हासिल किया वो है ए मुल्क जो वधंदड़ रांदियुनि जो इकोसिस्टम इन वाक़े में वसी समत ते घणियूं कारवाइयूं थियूं तंहिंमें अची थो वञे पिकल बॉल बॉक्स क्रिकेट वॉलीबॉल टग ऑफ वॉर ऐं ॿियूं घणी क़ौम समत जूं रांदियूं इन वाक़े में उस जहिड़ो माहौल लॻो पियो ऐं हर तबिके जा हिसेदार हिसो वठी रहिया हुआ एक्टर आयुष्मान खुराना अगुणनि कॉमनवेल्थ रांदियुनि विजेतान सां गॾु शुमारु थियो ऐं ओलंपियन सां तंहिंमें अची थो वञे गुरजीत कौर रजनी इती मारपू सोनिका टंडी अंजुमन मोदगल अंकुर मित्तल ऐं तृप्ति मुरगुंदी जंहिंसां नौजवाननि में हिमत आई ऐं असांजे मुल्क में असांजे नौजवाननि में भारत जे नौजवाननि में फिटनेस जी सकाफ़त वधी रही आहे इन वाक़े में चङा ई नाले वारा महिमान पिणु शुमारु थिया रांदियुनि जा सरबराह पिणु शामिलु थिया जहिड़ो की अजय पटेल भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन जो नायब सरबराह ओलंपिक शूटर ऐं CWG मेडलिस्ट गगन नारंग इन खां अलावा मयंक श्रीवासा डिप्टी डायरेक्टर जनरल खेलो इंडिया ऐं ओलंपियन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो सरबराह एदली सुमारीवाला इन खां अलावा डॉक्टर पवन कुमार जेको के मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो तंहिं पिण हिन में हिसो वरितो ऐं सुठी सिहत ऐं हिकु हेल्दी लिविंग लाइफ स्टाइल ते पिणु ॻाल्हायो साल 2030 में थींदड़ इतिहासिक सदी वारे कॉमनवेल्थ रांदियुनि लाइ नौजवान मामलनि ऐं रांदियुनि जे वज़ीर हिकु वसीह मशगूली वारो ऐं क़ौम समझ जो प्रोग्राम करायो मुल्क भर में जंहिंसां आवाम जी हिसेदारी वधी आहे ऐं भारत में रांदियुनि जो इकोसिस्टम वधीक पुख़्तो थियो आहे डॉक्टर मंडवा चयो त इहो हिकु ख़ासि मौक़ो आहे जो असीं ॿई मल्हाए रहिया आहियूं फिट इंडिया संडे जो 75 एडिशन इन खां अलावा कॉमनवेल्थ रांदियुनि जो ॾींहुं पिणु हुन फ़ख्रु महसूसु कयो त गुजरात इहे रांदियूं साल 2030 में कराईंदो कॉमनवेल्थ रांदियूं जंहिंमें हज़ारे माण्हू अॼु सुबुह साण अची करे हिसो वठी रहिया आहिनि

डॉक्टर मंडवा चयो त हिकु हिकु फिट सोसाइटी जेका आहे असां हिकु खुशहाल मुल्क खे बरपा कंदी। असां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे विकसित भारत जे सपने खे पूरा करे रहिया आहियूं, दूरंदेशी खे पूरा करे रहिया आहियूं। हर को शहरी फिटनेस खे ऐं सिहतमंद ज़िंदगी बसर करण खे अवलत ॾेई रहियो आहे। साइकिल हलाइण को महज़ मश्क कान्हे, पर इहा हिकु हलचल आहे जेका असांखे फिट रखे थी। इन खां अलावा पॉल्यूशन खे घटि थी करे ऐं फ्यूल खे बचाए थी। गुजरात जे नायब वॾे वज़ीर हर्ष सांघवी पिणु चयो त पूरो अहमदाबाद शहर अॼु फिट इंडिया संडे ते ज़िंदा थी वियो आहे। असांखे एतिरी जजी तादाद में गुजरात वासियुनि जो रदअमल ॾिसी करे ख़ुशी थी रही आहे, जंहिंमें हज़ारे माण्हू अॼु सुबुह साण अची करे रांदियुनि वारे वाक़िए में शरीक थिया आहिनि। वसी समत ते अहमदाबाद में माण्हुनि जे हिसो वठण सां पतो थो पए कि गुजरात में रांदियुनि ऐं फिटनेस सां माण्हुनि जो उत्साह वधी रहियो आहे ऐं हू आलमी रांदियुनि जे वाक़िए लाइ तयारु पिणु आहिनि। तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। 9870 किलोहर्ट्ज़ ते तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश आहे प्रोग्राम सजण तोखे ख़बर कहिड़ी।

सजन तो के खबर कड़ी सामने प्रोग्राम खड़ी कर मांजी किस्मत में एक दफो बीहर का हाजिर थे कें भी देश समाज मुल्क के तरक्की जो वो दारोमदार आवाम के जिस्मानी ए जहनी सेहत से होंद है। ये साठ सिंध एक्सप्रेस में शाया थे एडिटोरियल है जिनो टाइटल ध्यान चकाईंदड़ है सिंध में आपघात जो वधंदड़ लारो लिखल है। सिंध में जहनी सेहत बाबत जे अंग अखर पेश हैं तिन के डिसी कर लगे तो इतने लखे मानू जहनी बीमारियों में वरतल आन बीमारियों का इलाज बेहतर नमूने नो कर जैं कर ये मानू खुदकुशी था कन या वरी डिप्रेशन में वरतल आन। सिंध में खुदकुशियों जहाँ वधंदड़ केस बुधायन था आम मानू तमाम घणो डिप्रेशन में आन वो जिंदगी में मायूस थी करे पैंजो अंत आण में देर नथा कन। सिंध में जहनी सेहत एक अहम मामलो है जैं पासे तमाम घट ध्यान पे दिनो वे छो जो इनके आम तौर पर बीमारी समझो ही को वे। मेंटल हेल्थ जड़ा घणा इदारा होने के बावजूद भी सिंध में खुदकुशियों जहाँ आपघात जहाँ केस वन वा जरूरत है इन मानून के उत्साह दियण ए जिंदगी ना मोटाने की पर इनजे उबतर थी रो है। एडिटोरियल में अगत लिखल है कि तासो अखबार में खुदकुशियों जो तमाम घणी रिपोर्टू आयु जैमें घणा ही किस्सा दिना वन कि फलाने फलाने गोठ में एतरन मानून पैंजो आपघात कर जैमा पतो तो पवे कि सिंध में मानू मरण के तरजीह था दियन छो जो साणन घणा ही माशी जहनी मसला जैं कर जिंदगी का वधिक ये मौत के तरजीह था दियन। सिंध में सब का वधिक आपघात जहाँ केस थरपाकर में रिपोर्ट थे गुजर साल 2025 में 116 मानून खुदकुशी कई। आपघात करण जहाँ घणा ही कारण थी सकता पर मानून के बेहतर सेहत जहनी सेहत मैसर कराण सरकार की जरूरत है। गरीब मानू वेचारा आपघात कन था छो जो पैं रोजमर्रा जो जरूरतों पूरी नथा कर सकन जै सबब उन जिंदगी बसर करण आसरो खत्म तो वे। तो सिंध एक्सप्रेस में शाया थे एडिटोरियल बुधी रहा टाइटल हो सिंध में आपघात जो वधंदड़ लाड़ो।

ऐं जेको ॿियो एडिटोरियल असांजो ध्यानु शिकार आयो आहे सो बि पिणु हलाक कंदड़ आहे. टाइटल आहे गंबट में HIV जा मरीज़. इन तहत एडिटोरियल में लिखियलु आहे की सिंध में हर साल वांगुरु हिन साल बि HIV जा घणा ई केसिस ज़ाहिर थिया आहिनि. जॾहिं त कुझु साल अॻु में लाड़काणे में HIV जा घणे में घणा केसिस ज़ाहिर थिया. इन्हनि केसनि जे करे ई वॾे तादाद में माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं तबाह थी थियनि. सिंध में अञा बि HIV जा केस ज़ाहिर थी रहिया आहिनि. इन्हनि केसनि ते सिहत खाते तौरु सिंध हुकूमत खे ध्यानु ॾियणु घुरिजे. हिन साल जे पहिरियनि टिनि महीननि में फर्स्ट क्वार्टर में सिंध में HIV जा जजी तादाद में केस ज़ाहिर थिया आहिनि, जिन में 329 ॿार, 332 मर्द, 204 औरतूं ऐं 29 ट्रांसजेंडर आहिनि. पर हैरानी जी ॻाल्हि जो इहे केस अञा ताईं लगातार ज़ाहिर थी रहिया आहिनि, जंहिं मां अंदाज़ो आहे त HIV जे ख़ात्मे लाइ कमु कोन थी रहियो आहे, बल्कि इहो मर्ज़ु सिंध में तेज़ी सां फैलिजी रहियो आहे. HIV खे पकड़ण में अताई डॉक्टरनि जो हिकिड़ो वॾो किरदारु आहे, जेके मरीज़नि खे इस्तेमालु थियल इंजेक्शन हणण सां ज़िंदगियूं तबाह करे रहिया आहिनि. सिंध में सिहत जा घणा इदारा आहिनि जेके बहितरु कमु करे रहिया आहिनि ऐं माण्हू घणनि इदारनि में इलाजु कराए था आहिनि, पर सिंध में मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि जो वधणु पिणु ॻणितीअ जोॻो आहे. हिन वक़्तु गंबट में HIV जा 8 शकी केस ज़ाहिर थिया आहिनि, जंहिंमें 2 ॿारणियूं फौत थी वियूं. इन मां पतो थो पए की सिंध में HIV जा केस अञा बि तमामु घणा हूंदा, ऐं जेकॾहिं सिंध जे हर माण्हू जी HIV टेस्ट कई वञे त नंढनि नंढनि शहरनि में वॾी तादाद में HIV जा मरीज़ ज़ाहिर थी पवंदा. एडिटोरियल में लिखियलु आहे की कुझु अर्सो अॻु में सिंध हुकूमत अताई डॉक्टरनि ख़िलाफ़ु वठ वठणु शुरू कई, पर इहा बि आर्ज़ी कारवाई हुई. अॼु बि सिंध में घणा ई अताई डॉक्टर आहिनि जेके बिना डिग्री जे माण्हुनि जो इलाजु पिया कनि ऐं बीमारियूं पखिड़ण जो सबबु पिया बणिजनि. सिंध में HIV जे मर्ज़ खे पखिड़ण ऐं रोकण जे लाइ इन जे ख़ात्मे लाइ हंगामी बुनियादनि ते उपाउ वठण जी घुर्ज आहे, छो जो जंहिं तेज़ी सां इहो मर्ज़ु पखिड़िजी रहियो तंहिं मां लॻे थो त ईंदड़ वक़्त में वॾी तादाद में हिते हर ॼमार जा माण्हू HIV में मुबतला हूंदा ऐं इहा सूरत हाल तमामु ई बदतरीन थींदी. तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो गंबट में HIV जा मरीज़.

यह आकाशवाणी की सिंधी सरसा हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। अॼु नई दिल्ली में थींदड़ क्वेट गॾिजाणी में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐं अमेरिका जा पाड़ी वज़ीर शरीक थींदा। श्रीलंका पंहिंजे नए फ्री ETA स्कीम रिथा तहत भारतीय सैलानियुनि खे मुल्क में 30 ॾींहं बिना वीज़ा अचण जी मोकल ॾिनी आहे। बांग्लादेश जे तंगल ज़िले में लोह जे शीखनि सां भरियल हिकु ट्रक जे पलटी वञण खां पोइ 15 माण्हू मारिजी विया आहिनि। ऐं बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन्स में PV सिद्धू ऐं लक्ष्य सेन स्टार स्टडेड इंडियन कॉन्टिनेंट जी सरबराही करे रहिया आहिनि।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 अॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव

को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका के अंतर्गत हरि तीरथ सिंह द्वारा शब्द। इनके साथ संगत कर रहे थे सितार पर अकील अहमद, हारमोनियम पर तस्कीन अली खान, बांसुरी पर राजेंद्र प्रसन्ना और तबले पर माधव गुप्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूँ आपकी दोस्त आज यहाँ पर अर्चना लेकर आई हूँ बहुत सारे खूबसूरत से गीत, सुरीले गीत और साथ ही कुछ ज़रूरी बातें सेहत को लेकर। जी हाँ, ये तो आप सभी को पता है कि दोस्तों गर्मी अपने चरम पर है और इस गर्मी से निजात पाने के लिए हम बहुत सारे तरीकों को कहते हैं ना अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर

रहे हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी सहन हमारी जो शरीर है वो कभी कभी नहीं कर पाता है। और जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है ना, उस गर्मी का पता है आपको एक नाम भी होता है। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, उसे नौतपा कहते हैं। जी हाँ, नौतपा। नौतपा के 9 दिनों में गर्मी अपने चरम पर होती है, इसीलिए इसे नौतपा कहा जाता है। इस दौरान जो तापमान है ना, 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तेज धूप, लू और हाई टेम्परेचर से थकान, डिहाइड्रेशन और चक्कर, साथ ही साथ हीट स्ट्रोक का जो रिस्क है ना, वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में खान पान को लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठंडी तासीर वाले फल और ड्रिंक्स शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं और दिन भर एनर्जी भी बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। तो बस आज हम इसी के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे, कुछ बातें बताएंगे और चाहेंगे कि आप उस पर अमल करें और इस तपती जलती गर्मी से अपने आप को बचा कर रखें।

जी हाँ दोस्तों, इतनी जलती तपती गर्मी में पानी की तो बेहद ज़रूरत होती है, और हम चाहते हैं कि मॉनसून अपने तय वक्त पर ना आकर थोड़ा जल्दी आ जाए ताकि इस गर्मी से हमें निजात मिले। दोस्तों, नौतपा की बात हम यहाँ कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो नौतपा में 9 दिनों तक भयंकर गर्मी पड़ती है, चरम पर होती है गर्मी जो होती है। साथ ही इसके गर्म हवाएं चलती हैं जिसे हम लू भी कहते हैं, इससे तापमान अचानक बढ़ जाता है और तेज़ गर्मी महसूस होने लगती है। नौतपा की तेज़ गर्मी शरीर के तापमान को बढ़ा देती है जिससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो कम होने लगते हैं। इसका असर एनर्जी लेवल और बॉडी फंक्शंस पर भी पड़ता है। इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर ऑल ऑफ अ सडन बढ़ने लगता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो घटने लगते हैं, इनबैलेंस होने लगते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया, डिहाइड्रेशन होने लगता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पानी नहीं पियेंगे और आपके शरीर से पानी डिहाइड्रेट हो रहा है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो ही जाएगी। इसके बाद चक्कर, कमज़ोरी जो है वो महसूस होने लगती है, स्किन बर्निंग होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, हीट स्ट्रोक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपके ब्लड प्रेशर है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आने लगता है, और डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो है ना वो होने लगते हैं।

दोस्तों यहाँ गीत तो चल रहे हैं और क्योंकि कार्यक्रम जो है वो गीतों भरी गुड मॉर्निंग है, लेकिन हम चाहते हैं कि साथ ही साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाए जो नौतपा फिलहाल चल रहा है। नौतपा की भीषण गर्मी का असर हर किसी पर पड़ता है दोस्तों, हर किसी पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जैसे कि जिन्हें क्रॉनिक डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़, हार्ट या किडनी, सांस के मरीज़ों को गर्मी से बड़ी परेशानी होती है और जो इनके तबीयत है वो बिगड़ने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। जो धूप में रहते हैं, लंबे समय तक तेज़ धूप में रहने से शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है और हीट स्ट्रोक का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जो ज़्यादा कैफीन या फिर कहते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, इससे भी बॉडी जो है आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है

जो हैवी वर्कआउट करते हैं उन सभी के लिए भी जो भीषण गर्मी है वो कहते हैं ना नुकसानदायक होती है। स्कूली बच्चे, जी हाँ, स्कूली बच्चे, बच्चों का शरीर और उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। धूप में जाने आने से और कम पानी पीने से उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है कि गर्मी जो है उन्हें परेशान करे और वो बीमार पड़ जाएं। छोटे बच्चे, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करने की क्षमता कम होती है, तो ये भी गर्मी के वजह से अधिकतर बीमार पड़ सकते हैं। बुजुर्ग, उम्र बढ़ने के साथ शरीर का कूलिंग सिस्टम कमज़ोर होता है होता जाता है। इससे डिहाइड्रेशन और थकान जल्दी होने लगती है, जिससे बुजुर्गों को और भी तकलीफ उठानी पड़ती है। गर्भवती महिलाएं, जी हाँ, गर्भवती महिलाएं शरीर पर अतिरिक्त दबाव और पानी की ज़्यादा ज़रूरत के कारण हीट स्ट्रोक की शिकार हो जाती हैं।

नन्ना नारे नारे नारे। वक्त हो चुका है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:47 और कार्यक्रम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना।

दोस्तों, नौतपा में हेल्थ रिस्क से बचने के लिए आपको किन उपायों को करना चाहिए या कैसे इस नौतपा के जो असर है उससे बच सकते हैं, उसके लिए हम आपसे आपको बता सकते हैं कि जैसे आप शरीर को ठंडा रखना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए और सही खान पान को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए लाइफस्टाइल में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि पानी जो है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पानी पिए, दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, प्यास लगने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। जी हाँ, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बच पाएंगे। वॉट

रिच फ्रूट्स खाएं, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, जैसे फल जो है वो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, तो इनका सेवन अपनी डेली लाइफ में करें। नेचुरल ड्रिंक्स लें, डाइट में जो है वो छाछ शामिल करें, नींबू का पानी, सत्तू और नारियल पानी ज़रूर लेते रहें। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखें, और इसके लिए क्या करें, ORS या फिर नमक शक्कर का घोल खुद से प्रिपेयर करके आप अपने पी सकते हैं और अपने शरीर को जो है हाइड्रेट रख सकते हैं। हल्के और ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े शरीर को ठंडा रखते हैं, तो कोशिश करें कि कॉटन के कपड़ों को और हल्के रंग के कपड़ों को ज़रूर कैरी करें। धूप से बचें, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच किसी भी वजह से बाहर निकलने से बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अपने आप को 12 से 4 के बीच में बाहर निकलने से रोकें। सिर आँखों को कवर करके रखें, अगर बाहर जाते भी हैं तो समय पर कैप, सर पर जो है वो कैप लगाएं, छाता लें या फिर टॉवल या गमछा या कुछ सूती कपड़ा जो आप कैरी कर सकें, जिससे आप अपने पसीनों को पोंछ सकें या फिर कहते हैं ना धूप से जो है वो बच सके, तो ऐसा कुछ अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और हाँ, मसालेदार खाना और तला भुला खाने से थोड़ा सा बचें अपने आप को। कई बार होता है ना, क्रेविंग होती है, बट उस क्रेविंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें कि भाई चटपटा नहीं खाना, क्योंकि अगर चटपटा खाया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो गर्मी है फिलहाल अपने चरम पर है। शरीर को ठंडा रखें, दिन में एक दो बार नहाएं या फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को टाइम टू टाइम जो है ना वॉश करते रहें।

दोस्तों, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जूसी फ्रूट्स जो है वो आप ज़रूर लेते रहें, अपने डाइट में उनको शामिल करें। इसके साथ ही हमने बताया आपको देसी ड्रिंक्स जो हैं, लाइक छाछ है, लस्सी है और नींबू पानी है, ये भी आप अपने जो है डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसको वैसे भी पी सकते हैं फॉर अ चेंज।

नारियल पानी, गन्ने का रस, जल जीरा, जी हाँ, और साथ ही साथ खीरा पुदीना ड्रिंक। ये हमारे देसी ड्रिंक्स हैं जो हमें इन सभी बीमारियों से बचाते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको दुरुस्त रखते हैं। तो कोशिश कीजिए इन सभी देसी ड्रिंक्स को आप दिन में कम से कम 2 से 4 बार ज़रूर पिएं। और हाँ, इन ड्रिंक्स के अलावा आप पानी भी भरपूर मात्रा में पिए ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचें और इस गर्मी का पूरे मजबूती के साथ सामना कर सकें।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी के अनुसार हो चुका है वक्त 7:56 और पूरे 30 सेकंड्स। फिलहाल जो वक्त है वो मेरे यहाँ से रुखसत होने का भी हो चुका है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी, वैसे तो आप सभी जानते हैं लेकिन फिर भी हमने आपको दे दिया, आपके साथ शेयर कर दी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो नौतपा के बारे में है उसके बारे में आपके साथ शेयर कर दिए। आई होप आपको वो भी पसंद आई होंगी। इसी आशा के साथ कि आप इस भयंकर गर्मी में अपना ध्यान रखेंगे, अपने अपनों का ध्यान रखेंगे और हाँ, भरपूर पानी पीना है, चल तला भुना जो है वो मसालेदार खाना नहीं खाना है, जूसी फ्रूट्स का सेवन करना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए गर्मी से बचना है। सबसे बड़ी बात है गर्मी से बचना है। तो बस इसी आशा के साथ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का भी ध्यान रखेंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे और आपसे दोबारा मिलने का वादा लिए, इसी आशा के साथ इजाज़त चाहती है आपकी ये दोस्त एंड होस्ट। आप सुनते रहिए हमें इसी तरीके से और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। टेक केयर, बाय बाय।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रूपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2000 2020 में

0: हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उज़रा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते के हालात व वाक़यात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के ऐन मुताबिक ये उज़राए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को Washington DC में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उज़राए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड के वज़राए खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूस करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशी होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है, जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों, नीज बहरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूस की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगी, जहां वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीर दाखिला आज सुबह BSF की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती

0: मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज्यादा सयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदाम किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबह इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज़ वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैन अल-अक़वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें ताकि मुमकिन एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में CNG की कीमत 83 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरां आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर ज़िले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। جنوب مغربی مانسون کے آج کیرلم پہنچنے کا امکان ہے. عام طور پر مانسون 1 جون کو کیرلم پہنچتا ہے. موسمیات محکمے نے کیرلم کے 14 میں سے 4 ضلعوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا.

0: गया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज़े हज अदा कर रहे हैं। कल मनासी के हज के आगाज़ के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहाँ तौबा इस्तग़फ़ार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहाँ वो शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके ज़रिए वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुकाम ने 87 से ज़्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज़, रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी एहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 8:45:15 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे अब्दुल सामी खान द्वारा राग नट भैरव में गायन। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर अकबर लतीफ खान।

माफ कीजिएगा, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत अब आप सुनेंगे अब्दुल समी खान द्वारा सरोद पर बजाया राग राग नट भैरव। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर अकबर लतीफ खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप सुन रहे थे अब्दुल सामी खान द्वारा सरोद पर बजाया राग राग नट भैरव। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर अकबर लतीफ खान। 9:15 होने को है, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय गौरव की भावना को जन्म देती है और एक अग्रणी लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में किसी भी देश की स्थिति को मजबूत करती है। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब उसकी शिक्षा प्रणाली की स्थिति उसकी प्रगति का प्रतिबिंब बनेगी। इसलिए भारतीय विश्वविद्यालय में नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। डिग्री बनाम दक्षता, स्टार्टअप संस्कृति में विश्वविद्यालयों की भूमिका। पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आप गणित के विशेषज्ञ रहे हैं, गणित पढ़ना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण रहा है, खास करके स्कूली शिक्षा के दौरान, और बहुत बच्चे इसीलिए आर्ट्स ले लेते हैं कि आगे जाके उनको मैथमेटिकल अप्रोच और रीजनिंग उनको लगता है कि कठिन है और इसके कारण विज्ञान विषय कठिन हो जाते हैं। तो आपने जो एक लचीली और बहुविषयी शिक्षा पद्धति बनाई थी, एक अवधारणा को बल दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो गणित की शिक्षा है उसको लेकर के आपके अनुभव क्या है और किस तरह लोगों को उसका फायदा अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिल सकता है?
2: देखिए, शिक्षा अंतरात्मा की खोज है। ये हर व्यक्ति विशेष के अंतरात्मा की खोज को ही उसकी शिक्षा कहा जाता है। हर व्यक्ति विशेष के अंदर एक ध्वनि है, उसके अंतःकरण की ध्वनि, उसके जो है आत्मा की ध्वनि, मैं उसको अंतर्ध्वनि कहता हूँ। और गणित में जब आप किसी चीज की परिभाषा देते हैं तो उसके साथ उदाहरण भी देना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जीवन पर्यंत की यात्रा है, अपने आप की खोज। लेकिन जब आपको ध्वनि मिल जाती है तो आप प्रशिक्षित तब होने लगेंगे जब उस ध्वनि के अनुकूल संसार में कदम रखेंगे। आप उसके अनुकूल कदम रखिए, आप प्रशिक्षित होने लगेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने इसमें कहीं किसी औपचारिक डिग्री की चर्चा नहीं की है, मतलब ही नहीं है। जिन लोगों को मैंने अपने जीवन में आदर्श माना, उनमें से शायद ही किसी के पास कोई डिग्री रही। मैं कबीर को मानता हूँ, मैं तुलसीदास को मानता हूँ, मैं सूरदास को मानता हूँ, मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ, गुरु नानक को मानता हूँ, किसी के पास डिग्री नहीं थी। मैं माइकल फैराडे को मानता हूँ, विज्ञान के इतने बड़े वैज्ञानिक रहे, उनके पास कोई डिग्री नहीं, तो स्कूल भी नहीं पास थे। तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये क्यों प्रशिक्षित थे, क्यों विद्वान थे? इन सब ने अपने अंतरात्मा की खोज को, ध्वनि को पकड़ लिया था। देखिए, गांधी जी ने बड़े कम आयु में अपने आत्मा की ध्वनि पकड़ ली थी, वो थी सत्य से जुड़ जाओ। वो बार बार ध्वनि पुकार रही थी, सत्य सत्य सत्य। कैसे हुआ? एक बार वो 8-9 साल के थे, एक नाटक देखने गए थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वो नाटक जब उन्होंने देख लिया तो उसका ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि घर आते ही वो आईने के सामने खड़े हुए और प्रण लिया उन्होंने कि जीवन पर्यंत मैं सत्य से जुड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये उनकी ध्वनि थी, उसी के अनुकूल वो कदम रख रहे थे। ये तो नहीं रखा उन्होंने कि मुझे इससे नौकरी मिलेगी, इससे नहीं रखा कि मैं महात्मा बन जाऊंगा या अंग्रेजों को भगा दूंगा। वो तो सत्य से जुड़ रहे थे, ध्वनि से जुड़ रहे थे, उसके अनुकूल कदम रख रहे थे। यह आप करने लगे भला होगा। उसी तरह आप रामानुजन को ले लीजिए, रामानुजन के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, पता नहीं लोग जानते हैं कि नहीं, उनको तो 12वीं भी नहीं पास करने दिया, निकाल दिया मद्रास यूनिवर्सिटी ने उनको, ये सब हुआ। लेकिन इतने बड़े गणितज्ञ, मैं तो उनको देवता मानता हूँ, हमारे लिए गणित के वो ईश्वर हैं। तो क्या बात थी, उनके हाथ एक पुस्तक स्कूल में लग गई गणित की, और कोई ऐसी चमत्कारी पुस्तक भी नहीं थी, लेकिन वो पुस्तक से उनके अंदर की ध्वनि जग गई कि यही मुझे करना है, मैं गणित से जुड़ूंगा। फिर वही बात जो गांधी के साथ थी कि चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, रामानुजन निष्ठा से जुड़ गए, चाहे कोई कीमत मुझे चुकानी हो मैं गणित नहीं त्यागूंगा। गरीबी में थे, खाने को नहीं मिलता था, पिताजी नाराज हो जाते थे, लेकिन उन्होंने गणित को नहीं छोड़ा, तो फिर पार हो गए, रामानुजन बन गए, ईश्वर बन गए। तो संसार में ये सारी ध्वनियां हैं, शिक्षा की संस्थाओं को ये करना होगा कि बच्चों को इन ध्वनियों से धीरे धीरे परिचित कराएं, तो कोई न कोई एक ध्वनि यहाँ जगा देगी। जैसे नाटक ने गांधी जी को जगाया, गणित ने रामानुजन को जगाया, ऐसे ही होता है। जब मैं वाइस चांसलर था, यही प्रयास किया कि मैंने हमारी शिक्षा की जो पद्धति थी पूरी बदल दी। हमने कहा कि आप डेटा से जुड़िए, हमने कहा कहा आप आईटी से जुड़िए, हमने कहा आप कम्युनिकेशन से जुड़िए, ये सारी चीजें पहले वर्ष में हमने उस बच्चे को उपलब्ध कराया। पद्धति बदली, पेडागोजी एकदम बदल दिया कि बच्चा जो है इसको लेकर ब्लैक बोर्ड से नहीं सीखेगा, वो व्यवहारिकता से सीखेगा, प्रोजेक्ट करेगा ग्रुप्स में, तो उससे उसको बहुत फायदा मिला। और कई ध्वनियों को हमने चखाया बच्चे को पहले वर्ष में, तो उसका रुझान कहीं ना कहीं बनने लगा। तो दूसरे वर्ष में यही पेडागोजी एक्शन के साथ जुड़ी, प्रोजेक्ट में काम करो, ब्लैक बोर्ड पे कम और रटना कम, वो करते करते वो दिशा में स्पेशलाइज करता गया। लेकिन साथ में संस्कृत पढ़ रहा है बच्चा, पहले संस्कृत पढ़ते थे बच्चे तो सिर्फ संस्कृत पढ़ते थे, हमने कहा इसके साथ तुम कोडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखो अगर तुम्हें रुचि है। तो आप यकीन कीजिए मैं हजारों बच्चों से मिला।

0: संस्कृत के करीब एक तिहाई ने हमसे बोला हमें कोडिंग से जुड़ना है, कभी मौका ही नहीं मिलता था, अब हमने जोड़ दिया। तो अब वो संस्कृत को लेकर कोडिंग में निपुण हो गए, अब उनको नौकरियां भी अच्छी मिल जाएंगी या अपना खुद स्टार्टअप बना सकते हैं। ये हमने शुरू किया था, नॉलेज को एक्शन से जोड़ा, व्यवहारिकता लाए हमारे पेडागोजी में, ये हमारी परियोजना थी। नई शिक्षा नीति यही कहती है।
1: और वही शायद क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की जो स्थापना की गई थी,
0: पहला प्रयोग मेरा वही था 2012 में मैंने उसकी स्थापना की। वहां पर ट्रांस डिसिप्लिनरी लर्निंग होती थी और व्यवहारिकता से, और वहां के बच्चों को हमें गूगल ने कहा कि साहब आपके जो ये बच्चे हैं, अभी वो पास भी नहीं हुए थे लेकिन वो कोई इंटर्नशिप नहीं करते थे, गूगल के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे, गूगल के साथ जो प्रॉब्लम्स होते थे, गूगल ने हमको कहा कि साहब ये किसी भी IIT के बच्चे से ज्यादा मजबूत है, सक्षम है, हम इनको प्रिफर करते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल था वो।
1: निश्चित रूप से डिग्री बनाम दक्षता की जो बात की जाती है, कौशल की जो बात की जाती है, उसका प्रयोग आपने बहुत पहले ही अपने कार्यकाल के दौरान अपने ही विश्वविद्यालय में किया था। आपने जैसे डाटा की बात की थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डाटा साइंस का युग है, और इसके साथ ही गणित की भूमिका भी बढ़ जाती है, साथ ही होता है इस सब के उपयोग के लिए एक वैज्ञानिक सोच, तार्किक दृष्टिकोण की। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके जो शैक्षणिक पद्धति है वो किस तरह की है, किस तरह के सुधार होने चाहिए, और हम अगर एक अपनी शिक्षा पद्धति को लेके एक वैश्विक स्तर पर आना चाहते हैं, एक पहचान के रूप में जो ग्लोबल हब के रूप में आना चाहते हैं, तो किस तरह के हमारे लक्ष्य होने चाहिए?
0: देखिए, उसके सारे नुस्खे नई शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जड़े हुए हैं, वो तो भारत के पूरे परंपरा में जुड़े हुए रहे हमेशा से, तो उसको अपना लें सही माने में। हम भूल क्या कर रहे हैं कि हम उसको एक औपचारिकता में अपना लेते हैं। लोग कहते हैं अच्छा इसको आप और विषय से जोड़िए, तो मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हैं, अच्छा इसको एक हिस्ट्री का कोर्स दे दो, एक संस्कृत का कोर्स दे दो। वो नहीं कह रही है शिक्षा नीति, उसका कहना है कि गणित इतिहास के माध्यम से भी सीखो और इतिहास को गणित के माध्यम से सीखो। तो इतिहास में गणित, तो गणित में इतिहास, वो हम नहीं कर पा रहे, उसको ट्रांसडिसिप्लिनरिटी कहते हैं। देखिए मैं उदाहरण देता हूं आपको, नोम चॉम्स्की बड़े जाने माने विद्वान हैं, MIT के प्रोफेसर, अब तो बड़ी उम्र हो गई, उनकी आयु बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको 70 के दशक में ह्यूमैनिटीज का आइंस्टाइन कहा जाता। तो उन्होंने बड़ा भारी रेवोल्यूशन, क्रांति ला दी थी लिंग्विस्टिक्स में। वो जो क्रांति ले आए थे, उन्होंने क्या किया था, उनको गणित आती थी, थे लिंग्विस्टिक्स के आदमी, वो गणित जानते थे, संस्कृत जानते थे, संस्कृत में जो पाणिनि के वैशेषिक तत्व थे वगैरह थे, उसका उन्होंने गहरा अध्ययन किया था और उसको गणित के ढांचे में डालकर लिंग्विस्टिक्स में लगाया और उसी से क्रांति आई। अब हमारे यहाँ देखिए, इतने छात्र गणित भी पढ़ते हैं, कितने सारे छात्र संस्कृत पढ़ते हैं, कितने सारे छात्र लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी छात्र ये काम नहीं कर सका जो उन्होंने करके दिखाया, जबकि तीनों चीज में भारत निपुण रहा है। अब आप समझ रहे हैं, वो इसलिए कि हमने हर विषय को एक कुएं के अंदर डाल के रखा और विषय की तरफ उसको जाने नहीं दे, उससे नई शिक्षा नीति कह रही कि बाहर आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति चिल्ला चिल्ला के कह रही इससे बाहर आइए, विषय को विषय से जुड़ने दीजिए नैसर्गिक रूप से, तब नए आविष्कार होंगे, नई सोच निकलेगी, आर्थिक रूप से लाभ होगा।
1: और शायद इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो नई शिक्षा नीति है वो अधिक वैज्ञानिक होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति भी आई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जय विज्ञान में जय अनुसंधान जोड़ा, तो तब से लेके बहुत सारे नए नए जो कार्य हो रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेटिव वे में, और आज वर्तमान में अगर देखें तो एक स्टार्टअप की संस्कृति का विकास हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, इसमें विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में। तो आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि जो इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड में एक बड़ा बजट रखा है, उसका उपयोग विश्वविद्यालयों को किस तरह से करना चाहिए?
0: देखिए मैं फिर उदाहरण से समझा, जब मैंने इनोवेशन सेंटर बनाया 2012 में, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, और वहां जो प्रयोग आरंभ किए तो वो यही थी कि आपको नॉलेज को, विज्ञान को समाज के चुनौतियों और आवश्यकताओं से जोड़िए प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो पहले ही वर्ष में 3 छात्र थे, एक छात्रा और 2 छात्र, उन्होंने मिलके डेटा, IT और फाइनेंस को जोड़ा, ये 3 अलग विषय हैं, और उन्होंने स्टार्टअप बनाया। तो हमारे यहाँ हमने छूट डाली थी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर कोई स्टार्टअप की आइडिया लाते हैं, मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हो, आपके पास स्टार्टअप की आइडिया है, वो फेल हो कि ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। आइडिया सही तरह से मनाया है सिंसियरली तो आपको कई अंक हम प्रदान कर देंगे और उस स्टार्टअप के लिए हम सहायता भी देंगे आर्थिक। हमारे पास तो विश्वविद्यालय बहुत कम, सहायता के माध्यम बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा। एक साल के बाद जब वो दूसरे वर्ष में आए तो नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि मैं ये स्टार्टअप 30 करोड़ में

0: खरीद लेता हूँ। उन बच्चों ने नहीं बेचा, वो आगे बढ़ते गए, यहाँ से पास भी हो गए, अब वो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में है और सब अरबपति बने बैठे हैं। लेकिन ये अलग एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। हमारे यहाँ उसके बाद जब हमने 4 वर्षीय परियोजना पूरे विश्वविद्यालय में लागू की तो स्टार्टअप्स को हमने एक केंद्रीय रूप से रखा था, सेंट्रल था वो, और बच्चों ने स्टार्टअप बनाया। तो मेरा जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो कई करोड़ के स्टार्टअप दिल्ली विश्वविद्यालय में चल पड़े थे अंडर ग्रेजुएट से।
1: आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, आप उपाध्यक्ष हैं जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद के, तो वहाँ उच्च शिक्षा के अवसर के लिए और खास करके दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए आप क्या चुनौतियाँ देखते हैं और आप किस तरह चाहते हैं कि वहाँ प्रयास किए जाने की जरूरत है?
0: देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस वजह से नहीं कि मैं जुड़ा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंने काफी सहयोग पाया है। वहाँ अच्छा काम करने के लिए बहुत लोग आगे बढ़े हैं और जो हमारे वहाँ गवर्नर साहब हैं उनका पूरा सहयोग रहता है और उन्होंने जो है हर तरह से सहायता दी है। और मैं कोई चापलूसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। वहाँ पर हमने शिक्षा की संस्थाओं को एक नया स्वरूप दिया है। इन सबको कहा है कि देखिए, सबसे पहले तो आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो स्कूल के बाद पहली डिग्री, उस पे ज्यादा जोर दीजिए। नींव वहीं पड़ती है। आपकी नींव कमजोर होगी तो इमारत तो ढीली रह जाएगी, तो नींव कैसे मजबूत करना है उसके लिए हमने एक नई डिग्री कायम की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल है। उस डिग्री का नाम ही है डिजाइन योर डिग्री, उसका नाम ही है डिजाइन योर डिग्री। तो बच्चे को छूट है कि वो अपनी डिग्री अपने अनुकूल इच्छाओं के, हम लोग उसको सलाह देंगे, लेकिन तुम अपनी डिग्री 4 वर्ष में बना के निकल जाओ, लेकिन उसको छूट है, 2 वर्ष में भी जा सकता है, 3 वर्ष में भी निकल सकता है, 4वें वर्ष जाएगा तो सक्षम रूप से एकदम पूर्ण रूप से निकल के बाहर आएगा। अब उसमें क्या है, वही है नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के सारे सिद्धांत है। हमने ये कहा है कि व्यवहारिकता लाओ, हमने कहा है कि तुम जो अपने डेटा स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, आईटी स्किल्स, इनको आप जोड़ो, इनसे जुड़ो। उसके साथ साथ हमने उसको कहा है कि तुम प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखो विषय को, तो कई विषय चखो, फिर जो भाएगा उसको दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष में और गहराई से पढ़ना, और हर विषय का हर विषय से लेन देन रहता है तो उसको हमेशा जोड़ के प्रोजेक्ट में ले आते हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी, तो बच्चा सक्षम होता जा रहा है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, जो पहला बैच है अब 4वें वर्ष पहुंचा है, पहला बैच हमारा जो पहला प्रयोग जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया, फिर और विश्वविद्यालय कर रहे हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज कर रही है, सब कर रही है। तो जो पहला बैच था उसमें जो पहली बार हमने किया तो ये तो नया था, उन 4 वर्ष पहले की बात है। वहां के बच्चे अभिभावक समझ नहीं रहे थे कि क्या, फिर भी कुछ लोग आए, करीब 40 बच्चे आए और उनमें से कई ऐसे थे जो निराश थे, जो कहीं मिल नहीं रहा था दाखिला, मनोबल टूट चुका था। जब वो आए तो मेरे जैसा अनुभवी व्यक्ति भी थोड़ा हिल गया था कि भाई इन बच्चों को मैं कैसे इससे जोड़ूंगा, लेकिन हमें अच्छे अध्यापक मिल गए और 1 वर्ष तक हमने बहुत परिश्रम किया। 1 वर्ष बाद उन बच्चों को आप देखते तो कभी मानेंगे नहीं, यहाँ से अच्छे अच्छे जो है पूंजीपति थे उनको मैंने भेजा कि आप जाके देखिए, तो आके कहे के साहब ये तो हर एक बच्चा वहां का जीनियस है, ये उन्होंने कहा। उसका इतना परिवर्तन हो चुका था मस्तिष्क का, ये हो रहा था उस डिजाइन योर डिग्री में, लेकिन वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही लागू किया और कुछ नया नहीं किया मैंने, वही किया।
1: बहुत अच्छा, और निश्चित रूप से इसका फायदा वहाँ के लोगों को मिलेगा और वहाँ की जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर अपना स्थान पाएंगी और उन्हें वो एक राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद निश्चित रूप से उस राज्य के लोगों को भी फायदा होगा। प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, इन सब बातों के लिए आकाशवाणी आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा।
2: डिग्री बनाम दक्षता, स्टार्टअप संस्कृति में विश्वविद्यालय की भूमिका। अभी आप पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दिलीप झा। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल।

0: सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 26 मई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1889 में एफिल टावर का पहला लिफ्ट आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोला गया था, जिससे लोगों को पेरिस के इस आधुनिक अजूबे की ऊंचाई से शानदार नजारा देखने का मौका मिला। 1950 में आज ही के दिन ब्रिटेन में पेट्रोल की खरीद पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से लागू की गई राशनिंग को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। आज ही के दिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ ली थी। 2020 में आज ही के दिन जेके रॉलिंग ने बच्चों की कहानी द इकाबोग को ऑनलाइन किस्तों में प्रकाशित करना शुरू किया। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराई गई थी। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है के विक्रम सिंह की। उनका जन्म 26 मई 1938 को हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और फिल्म निर्माता थे, जो अपनी वृत्तचित्र सत्यजीत रे इंट्रोस्पेक्शंस और फीचर फिल्म तर्पण के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। इतिहास के व्याख्याता के रूप में थोड़े समय अपनी सेवा देने के बाद वे 1962 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा में शामिल हो गए। भारत सरकार के साथ अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों का निर्वाह किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म तर्पण का संवाद।
2: अरे बहुत देख ली ठाकरों की ठगराई, आज फैसला हो के रहेगा।
3: भाई टुकड़ों पे पले और माने आग निकाले।
4: सरपंच का धर्म भी कभी निभाया तूने? ठाकरों के अलावा किसी और का भी ख्याल किया तूने?
5: अरे मैं फत्तू की बकरी नहीं हूँ जो मार डालेगा।
6: इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अरे कुएं से पानी भरे? अरे भाइयों उठा के फेंक दो।
7: ठाकुर ठाकुर
6: ठाकुर ये अन्याय मत कर।
1: आज पुण्यतिथि है आशा लता विश्वास की। उनका वास्तविक नाम मेहरून निसा था। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1917 को भुज में हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और निर्माता थीं, जो मुख्य रूप से 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक के मध्य तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं। वे लक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी मुख्य फिल्में आजादी, देशभक्त, चार आंखें, श्रीमान फंटूश आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके द्वारा निर्मित फिल्म का संवाद।
8: दूसरी दरगाह जी, एक अर्जी लिखो हाँ जी, दरकार को हाँ जी, दरबार को हाँ जी, वो गोरा गोरा हाँ जी, वो सूखा छोरा हाँ जी, चोर मोरा हाँ जी, क्या नाम बोलो हाँ जी। नाम कैसे बताऊं जिस चोर था,
1: आज जयंती है राम किंकर बैज की। उनका जन्म 26 मई 1906 को बांकुड़ा, बंगाल में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है। संभाल परिवार, मिलकॉल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजात व रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट आदि उनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। अपने दृढ़ संकल्प से वे भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने थे। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और आज जयंती है मनोरमा की। उनका जन्म 26 मई 1937 को राजमन्नारगुड़ी, तंजावुर जिला, तमिलनाडु में हुआ था। वे दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री और गायिका थीं। उन्होंने 1500 से अधिक तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने 1000 फिल्में पूरी की थी। वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका एक गीत।
9: वाव वाजा रे वो तांड, नीवा रंगाटी ना उड़ माटे, जाम बाजा जग
7: ना साईदा पेट कुक चांदा जा जग ना साईदा पेट कुक बावा जारे उठांडे नी वरा।
1: आज जन्मदिन है दिलीप जोशी का। वे एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में काम करते हैं। उन्हें लंबे समय से चल रहे भारतीय हिंदी भाषा के टेलीविजन सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनकी मुख्य फिल्में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन आदि है। आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म का संवाद।
10: जय भोलेनाथ जय हो प्रभु सबसे।
11: ओ भैया किधर, ये लिफ्ट साहब लोगों के लिए है, कॉमन लिफ्ट उधर है, चलिए।
12: देखो भैया शिव प्रसाद,
11: हमारा नाम गौरी शंकर है।
12: गौरी शंकर? अरे गौरी शंकर हो या शिव प्रसाद हो, क्या फर्क पड़ता है, आखिर दोनों नाम भगवान शंकर का ही है ना।
11: हाँ ये तो है, जय भोलेनाथ।
12: अच्छा देखिए,
0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
13: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी

की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के वजराय खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादले ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते के हालात व वाकयात नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अल-अक़वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते के क्वाड के नज़रिए के ऐन मुताबिक ये उज़राए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उज़राए खारजा कल नई दिल्ली पहुँचे हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहाँ आ गए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथूला पास का दौरा करेंगी, जहां वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीर दाखिला आज सुबह बीएसएफ की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सयाहों को बहफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुक्काम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज्यादा सयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें से कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदाम किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चिनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबह इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज 4थे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैन अल-अक़वामी तशवीश की सेहतयामा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। डीजीसीए ने कहा है कि युगांडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा।

0: मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मिना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तिग़फ़ार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलफा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मिना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके ज़रिए वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग को ख़त्म करने के लिए किसी भी मुआहदे में सऊदी अरब समेत कई ममालिक के अब्राहम समझौते में शामिल होने की शर्त लाजमी होनी चाहिए। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमत बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुकाम ने 87 से ज़्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमत पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सेफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीव की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। खास खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज़्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
2: गम गुसारी। शरीयत इस्लामिया ने हर शख्स को मुकल्लफ बनाया है कि वह हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक की मुकम्मल तौर पर अदायगी करे। मालिक हकीकी ने अपनी किताबों और अपने नेक बंदों को दुनिया में भेजकर उनके कौल व अमल से लोगों के हकूक अदा करने की जो बेशुमार मिसालें पेश की हैं, वह रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। मगर आज हम दूसरों के हकूक को अदा नहीं करते, अलबत्ता अपने हकूक का झंडा उठाए रहते हैं, दूसरों के हकूक की कोई फिक्र नहीं करते, अपने हकूक को हासिल करने के लिए मुतालबात करते रहते हैं। चुनांच हकूक के नाम पर अंजुमनें और तंजीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई अंजुमनें और तहरीकें या कोशिशें मौजूद नहीं हैं جن میں یہ تعلیم دی جائے کہ

0: आपने सुना पामेला सिंह की आवाज़ में ये कलाम। इसके साथ ही आज का गैर फिल्मी गज़लों का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव्स के लिए 1071 किलोहर्ट्ज़। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस सुनी जा सकती है। अब पेश है पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
1: पूर्वोत्तर डायरी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूर्वोत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में बीते दिनों एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का समापन हुआ। 3 दिन तक चली इस कार्यशाला में पूर्वोत्तर भारत में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने को लेकर विचार विमर्श हुआ और भारत भी पाम ऑयल और वनस्पति खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है कि हर राज्य वनस्पति खाद्य तेल के उत्पादन में अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाए। पूर्वोत्तर भारत में भी अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में आयोजित हुई इस कार्यशाला में सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य इकट्ठे हुए और उन्होंने खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन को

0: लेकर रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया। तो आइए हमारे संवाददाता मनोज की इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं इस कार्यशाला के प्रमुख निष्कर्षों के बारे में।
1: अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में स्थित पासीघाट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती के तीव्र विस्तार के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना और केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप वनस्पति तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना था। इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों में ऑयल पाम की खेती से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की और ऑयल पाम की खेती तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में मौजूद अवसरों एवं चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यशाला का संयुक्त आयोजन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ICAR, IIOPR, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
0: अरुणाचल प्रदेश से अब हम चलते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम में तकनीक की सहायता से कई रोचक समाधान निकाले जा रहे हैं। हाल ही में 2 महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशंस की शुरुआत हुई है। लेबर लिंक नाम की इस एक ऐप से मिजोरम में श्रमिकों को काम दिलवाने में सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। दूसरी तरफ बोलने में असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए एक और खास ऐप की भी शुरुआत हुई है। ये 2 मोबाइल ऐप किस तरह से मिजोरम में समाधान तलाशने में मदद कर रही है, आइए एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमारे सहयोगी उत्पल ने तैयार की है।
2: मिजोरम अब लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक को तेजी से अपना रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं और बच्चों को अपनी बात कहने में भी मदद मिल रही है। डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मिजोरम सरकार ने मिजोरम लेबर लिंक नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य दिहाड़ी श्रमिकों को सीधे काम देने वालों से जोड़ना है। पहले कई श्रमिकों को काम पाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर इंतजार करना पड़ता था और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उन्हें कम मजदूरी और असुरक्षित काम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। अब इस नए ऐप के जरिए श्रमिक डिजिटल तरीके से अपना पंजीकरण कर सकते हैं, अपनी योग्यता और स्थान के अनुसार काम खोज सकते हैं और काम से जुड़ी जानकारी सीधे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने, काम में पारदर्शिता बढ़ाने, खासकर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को समान रोजगार अवसर देने में मदद करेगी। ये ऐप राज्य सरकार की तेज, सुरक्षित और तकनीक आधारित सेवाओं की व्यापक योजना का भी हिस्सा है। इसी बीच मिजोरम की तकनीक से जुड़ी एक और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। एक मिजो टीम ने माय फर्स्ट वॉयस नाम का AI आधारित ऐप विकसित किया है जो बोल नहीं पाने वाले बच्चों को संवाद करने में मदद करता है। ये ऐप बच्चों की आवाज, गुनगुनाहट और हल्की ध्वनियों का विश्लेषण करता है और परिवार की आवाज तथा स्थानीय भाषा के उच्चारण के साथ मिलाकर एक स्वाभाविक आवाज तैयार करता है। इस परियोजना को मीडिया मोनक्स इंडिया और सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव का सहयोग मिला है। इस तकनीक की मदद से कई बच्चे अब अपनी जरूरतें बता पा रहे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं और पहली बार कविता भी सुना पाए हैं। माता पिता का कहना है कि इस तकनीक से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार के साथ अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। मिजो नव प्रवर्तक जॉन वी पैटे द्वारा तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट को हाल ही में वैश्विक पहचान मिली जब इसे वर्ष 2026 में वेब्बी पीपल्स वॉयस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
0: श्रोताओं, नागालैंड की प्रीमियम कॉफी देश दुनिया में अपनी खुशबू और अपने स्वाद के लिए मशहूर होती जा रही है और नागालैंड

0: कि इस कॉफी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एक विशेष परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत नागालैंड में कॉफी की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कॉफी की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से इस खास परियोजना का उद्घाटन किया। तो आइए कोहिमा से हमारी संवाददाता असुनो से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: नागालैंड की धुंध से ढकी पहाड़ियों से अब एक नई खुशबू और नए अवसरों की शुरुआत हो रही है। किसानों की मेहनत और राज्य की उपजाऊ मिट्टी से जुड़ी ये पहल अब वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी डोनर ने मिशन कॉफी ऑफ नागालैंड और क्लस्टर आधारित कॉफी वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नागालैंड नामक पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना पर 175 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नागालैंड में कॉफी की खेती से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पर्यटन और निर्यात तक पूरी कॉफी वैल्यू चेन विकसित करना है। इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ 18 मई को नई दिल्ली से केंद्रीय डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस दौरान नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मंत्रालय के अधिकारी, नागालैंड सरकार के प्रतिनिधि, किसान, उद्यमी और अन्य हितधारकों ने भी हिस्सा लिया। नागालैंड की कॉफी अब केवल एक सामान्य उत्पाद नहीं रह गई है, बल्कि धीरे धीरे एक विशेष और प्रीमियम कॉफी के रूप में पहचान बना रही है। सफलता किसानों और कॉफी से जुड़े लोगों की मेहनत का परिणाम है। नागालैंड की जलवायु और मिट्टी अरबिका और रोबस्टा दोनों तरह की कॉफी की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। राज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी उगाने की क्षमता है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 63% है। हालांकि अभी केवल करीब 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही कॉफी की खेती हो रही है, जो राज्य के 17 जिलों में फैली हुई है। इस बड़ी संभावना को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित उत्तर पूर्व विजन के तहत नागालैंड की कॉफी वैश्विक पहचान बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि कॉफी की खेती नागालैंड में सतत आर्थिक विकास का एक मजबूत माध्यम बन रही है। इस मिशन के तहत कोहिमा जिले के तोफेमा और न्यूलैंड जिले के घोटुवी को पायलट क्लस्टर के रूप में चुना गया है। इन क्षेत्रों को कॉफी उत्पादन और मूल्य संवर्धन के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना के मुख्य हिस्सों में हाईटेक नर्सरी, 400 हेक्टेयर में खेती का विस्तार, मिट्टी संरक्षण और टेरेसिंग, वॉशिंग स्टेशन, रोस्टिंग और ग्राइंडिंग यूनिट तथा कॉफी पर्यटन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके तहत फार्म स्टे जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। कॉफीज ऑफ नागालैंड को एक प्रीमियम, ट्रस्टेबल और सिंगल ओरिजिन कॉफी ब्रांड के रूप में देश और विदेश के बाजारों में पहचान दिलाने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी जोर दिया जाएगा। इस पहल से कॉफी उत्पादन में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। अभी जहां प्रति हेक्टेयर 200 से 300 किलोग्राम उत्पादन होता है, वहीं इसे बढ़ाकर लगभग 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से किसानों की आय बढ़ेगी और खेती, प्रोसेसिंग, रोस्टिंग, बरिस्ता, प्रशिक्षण और पर्यटन के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही ग्रामीण युवाओं की भागीदारी भी कॉफी उद्योग में बढ़ेगी। नागालैंड में विकसित नागालैंड 2047 के तहत वर्ष 2047 तक 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी कोहिमा से आसोनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं कहानी अरुणाचल प्रदेश की ताइक्वांडो स्टार रूपा बयूर की। रूपा बयूर ने हाल ही में एक इतिहास रचा। मंगोलिया में आयोजित हुई 9वीं एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता और इससे पहले भी उन्होंने इसी चैंपियनशिप में 2024 में वियतनाम में भी कांस्य पदक जीता था। यानी दो बार पदक विजेता होने का

0: और उन्होंने प्राप्त किया और उन्होंने पूर्वोत्तर के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया। तो आइए रूपा बयूर की कहानी सुनते हैं। रूपा बयूर से बात की है हमारे सहयोगी विशेष ने।
1: नमस्कार रूपा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, थैंक यू।
1: इन 9th एशियन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2026 में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: थैंक यू सो मच आप सभी को।
1: से जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आपका अनुभव रहा जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता?
2: एक्सपीरियंस तो मेरा काफी अच्छा रहा था क्योंकि मैंने बैक टू बैक इस बार मारा था। मैंने 28 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था और आफ्टर 2 ईयर्स बैक अब ये 9 एशियन चैंपियनशिप में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मेरा कॉन्फिडेंट लगता है नेक्स्ट टाइम और मैं अच्छे कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील बहुत अच्छा आ रहा है
1: जी। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि आपने वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप में जब भारत को जीत दिलाई थी तब उसमें आपकी रैंकिंग में इजाफा हुआ, उसके पहले G2 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता, उससे पहले एशियन चैंपियनशिप में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में ताइक्वांडो में भारत को मेडल दिलाया। तो उसी कड़ी में एक और मेडल आपकी झोली में गिरा है, तो किस तरीके से आपकी तैयारी रही है?
2: तैयारी तो मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस था, बट इसमें मेरा सिर्फ फिजिकल या मेंटल सिर्फ नहीं था, मेरा बहुत और बहुत जनों का कंट्रीब्यूट भी था, क्योंकि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना लंबा जो आना, तो इसीलिए उसपे काफी मेहनत रहा है मेरा कोच का, जिन्होंने मुझसे ज्यादा तो उन्होंने ही इस चीज के लिए तैयारी किया था, उसका प्लानिंग का हिसाब से और हमारा ट्रेनिंग वो मेंटेन करना पड़ता था, तो हमारे लिए काफी टाइम दिक्कत भी हुआ था कि हम ये जो प्रोग्राम को आगे लेकर आने के लिए, बट धीरे धीरे हम हार नहीं माना तो धीरे धीरे आगे ये चलते गए, तो काफी प्लानिंग का साथ में हमारा काफी सिस्टमेटिक के हिसाब से हो गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन इजी नहीं था, तो बहुत तकलीफ था, बहुत काफी सारा तकलीफ आया, दिक्कतें आई थी, बट अब ठीक हो, अच्छा लग रहा है अब मेडल मिलने के बाद।
1: बाकी खिलाड़ियों से आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से अलग रही जिसने आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दिलाने में मदद करी?
2: मैं हमेशा मेरा कोच को बहुत बिलीव करता हूँ, तो मेरा कोच का ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से मैं करता हूँ हमेशा, तो जैसे हमारा डाइट फॉलो करना, केयरिंग करना, और जैसे मतलब पूरा दिन मेरा ट्रेनिंग पे रहता था, ट्रेनिंग करके आते फिर खाना खाते फिर रेस्ट करते फिर ट्रेनिंग करते फिर खाना करके फिर सो जाते फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, मेरा शेड्यूल वही रहा और हमारा फोकस एक जगह पे टिका रहा कि हमें ये करना है, तो उस हिसाब से आप फिजिकली सिर्फ या ट्रेनिंग करता है बोलने से भी नहीं होता है, आपका माइंड भी बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है इस चीज के लिए, तो हम जो चीज फोकस करते हैं जो उसी हिसाब से हमारा ट्रेनिंग, मेरा सर का हिसाब से मैंने ट्रेनिंग किया है, तो उसके लिए आज रिजल्ट आया तो मुझे बहुत अच्छा, मैंने मेरे सर पे भरोसा किया है तो
1: जी। मैम, और आप थोड़ा सा ताइक्वांडो खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरीके से ये खेल बाकी खेलों से अलग है?
2: ताइक्वांडो जो है कोरिया का नेशनल गेम्स है, तो ये काफी मतलब ओलंपिक का इवेंट्स है, तो मतलब वोट इसमें डिफरेंट वही है कि ताइक्वांडो में क्यूरिगी और पुमसे जो है डिफरेंट वही है कि क्यूरिगी में वो फाइटिंग होता है, एक दूसरे को फाइट करता है, बट पुमसे का डिफरेंट वही है कि हम परफॉर्म करता है एक दूसरे में, बट हमारा भी सेम बाउट होता है, बट हम परफॉर्म करते हैं उसमें, हम एक दूसरे को फाइट नहीं करते, हम परफॉर्म करते हैं, हम जो परफॉर्म करते हैं हमारा जो टेक्निक है वही टेक्निक क्यूरिगी में यूज करता है, तो हम बोलते ताइक्वांडो, लेकिन हमारा ताइक्वांडो का अंदर आने के बाद 2 डिसिप्लिन हो जाता है, तो वही डिफरेंट वही है और कुछ नहीं है
1: जी। और अब इस साल आपको एशियन गेम्स भी खेलने हैं, तो किस तरीके की आपकी तैयारी है?
2: अभी तो फिलहाल मेरा तैयारी अभी अभी मैं वापस जाएंगे इंडिया जाने के बाद, मेरा तैयारी तो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 2021 से, तो अभी होपफुली हमारे जो प्लानिंग का हिसाब से अभी होंगे तो और अच्छा रहेंगे, अभी जाएंगे वापस फिर वापस अपना ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो अपना जो प्लानिंग है शेड्यूल है उस हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए और ज्यादा मुझे डबल काम करना है, तो मुझे और ज्यादा करना है
1: जी। आपकी ट्रेनिंग और तैयारियों के लिए भारत सरकार आपकी किस तरीके से मदद कर रही है?
2: भारत सरकार मुझे काफी हेल्प कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी हमारे लिए सबसे वो होता है कि फाइनेंशियल में मुझे काफी इश्यू होता है, तो हम चैंपियनशिप में आना जाना, मुझे रहना खाना और मुझे ट्रैवल करना या टिकट, ये सब में काफी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा हेल्प किया है भारत सरकार ने भी, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वो ने भी, तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ उसके लिए। और उसने काफी हेल्प किया है ट्रेनिंग के

0: ट्रेनिंग में, फाइनेंशियल के इशू में मुझे काफी हेल्प किया है।
1: जी हाँ, और ये दूसरा मौका है जब आप स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं, तो हम
0: जी
1: आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से भारत के लिए मेडल्स जीतती रहेंगी और हम
0: जी
1: आपसे
0: थैंक
1: इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे।
0: यू सो मच।
2: एरी सिल्क के बारे में अपनी अगली रिपोर्ट में आपको विस्तार से बता रहे हैं और इस रिपोर्ट में आप जानेंगे खास तौर पर मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में एरी सिल्क का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। एरी सिल्क पूर्वोत्तर भारत की एक अलग शिल्पकला की पहचान है। ये रेशम कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता का प्रतीक है और इस रेशम से पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण भी एरी सिल्क के माध्यम से हो रहा है। तो आइए, पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक तंत्र का एक अहम हिस्सा एरी सिल्क के बारे में आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं।
3: मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। सामान्यतः शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के रीभोई जिले और उमरेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमरेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के वर्षों में एरी सिल्क को मिला GI टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। GI टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरी सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों

में बुनकरों की आय में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरी सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरी सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।

0: पूर्वोत्तर क्षेत्र महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण वहां की संस्कृति से मिलता है। विभिन्न जनजातियों में महिलाओं को समाज में हमेशा से ही प्राथमिकता दी जाती रही है। और इसके अलावा हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों से महिलाओं ने हमेशा से ही अपनी अलग मिसाल पेश की है। और वास्तव में भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण है। इसका उदाहरण हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि महिलाएं पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं और अपनी आजीविका के लिए अपनी आर्थिक निर्भरता से अपनी आजीविका कमाती हैं। और इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक बहुत अहम उदाहरण है। आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
1: के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने में महिलाओं को वरीयता दी जाती है। खेलकूद में पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। इस क्षेत्र की विविधता और जनजातीय समाज की खासियत ने महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पूर्वोत्तर भारत में कई जनजातियां मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करती हैं, जहां संपत्ति और वंश मातृपक्ष से चलता है। मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां इस प्रणाली का प्रमुख उदाहरण है। इन समुदायों में परिवार की संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है और पुरुष विवाह के बाद पत्नी के घर में रहते हैं। ये प्रणाली महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में ऊपर रखती है, जिससे वे परिवार और समुदाय में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मणिपुर में इमा मार्केट या मदर मार्केट एक प्रमुख उदाहरण है, जहां लगभग 5000 महिलाएं व्यापार करती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा बाजार है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। ये बाजार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। इस बाजार में महिलाएं हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और वस्त्र जैसी कई वस्तुओं का व्यापार करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर त्योहारों के संदर्भ में बात की जाए तो मणिपुर का थाबल चोंगबा एक प्रमुख उत्सव है, जहां महिलाएं नृत्य और संगीत में सक्रिय भागीदारी करती हैं, जो उनके सांस्कृतिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। इसी प्रकार नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है, जहां वे पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं।

0: इसके अलावा असम की हिमा दास ने एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है, जिससे क्षेत्र की अन्य महिलाओं को खेल कूद में करियर बनाने की प्रेरणा मिली है। उद्यमिता के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए असम में असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी हैं। मिजोरम में महिला साक्षरता दर 90% तक पहुंच रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस साक्षरता दर से महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं।
1: श्रोताओं, आपको उम्मीद है आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा पता है airnsgtalks@gmail.com और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। पूर्वोत्तर डायरी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले सप्ताह फिर एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमें अनुमति दें, नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात सुनी जा सकती हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

जी हाँ, मोहब्बत इसी का नाम होता है कि अपनी ज़िंदगी लुटा कर लोग दूसरों के जीवन को सजा देते हैं, दूसरे के जीवन को ज़िंदगी से भरपूर कर देते हैं। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस एयर कर रही है प्रोग्राम मेरी पसंद। गर्मी का है मौसम और ख़ास तौर पर जनूबी हिंदुस्तान की बात की जाए तो शदीद गर्मी से दो चार है लोग बाग परेशान हाल है, और हम ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी हमेशा भरपूर अंदाज में गुजरे। जिस्मानी हरारत बढ़ती रहे और डिहाइड्रेशन ना हो तो फिर आप लस्सी का इस्तेमाल कीजिए। नमकीन या मीठी लस्सी हो सकती है, जिनको डायबिटीज़ है खुदा ना ख्वास्ता वो नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको नहीं है वो मीठी लस्सी पी सकते हैं। आपके मैदे को ठंडक पहुंचाती है और आपकी प्यास भी बुझ जाती है, और आप इंजॉय करते रहिए साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है मेरी पसंद। और मेरी पसंद का अगला नगमा, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। ये नगमा हमने लिया है राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज़ सुरेश वाडकर की है। पहला नगमा जनता हवलदार फिल्म से था, अनवर का गाया हुआ।

ही जी। ये उर्दू सर्विस कह रही है आपसे कि मैं हूँ अपने सामीन के साथ दिन नशरियात लेकर आते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा है, खासकर उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो गर्म लहर चल रही है। मतलब जैसे शीत लहर आती है वैसे गर्मी की ज़बरदस्त लहरें हैं भाई। इतनी तेज़ गर्मी है और इतनी गर्म हवा है, कैसे डिहाइड्रेट रखेंगे आप। गन्ने का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लेकिन लेकिन ये जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो ना पिए, बाकी लोग पी सकते हैं। तवानाई देता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, तो जो लोग पी सकते हैं वो पिए और जो नहीं पी सकते हैं वो पानी का इस्तेमाल मुतवातिर करते रहें। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद

भाई गर्मी का मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कह रहा है कि तुमने दी आवाज़, क्योंकि मार्च में सभी लोग परेशान थे कि गर्मी का स्वागत करें, सर्दी को रुखसत करें या बरसात के मज़े लें। तीनों मौसमों का लुत्फ लिया हमने मार्च के महीने में, और अब आ गई है जलती कुरती सी गर्मी। कैसे बीट करेंगे इसको? लेमन सोडा या फिर शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नमकियात होती है, सिट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं ये चीज़ें, और जो पसीने से ज़ाया हो जाती है एनर्जी, ताकत बहाल कर देती हैं ये चीज़ें। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अगर बाहर सफ़र में हैं तो घर से ज़रूर लेके जाइए ये कोई ना कोई चीज़ आपके साथ, ताकि जो अखराज हो रहा है पसीने के ज़रिए आपके जिस्म से नमकियात का, वो कमी ना हो उसकी, और आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस आप सुन रहे हैं। ये नगमा हमने जो अभी आपको सुनवाया बेताब फिल्म से था, और आवाज़ थी शब्बीर कुमार की, और ये है किशोर कुमार, फिल्म है सनम तेरी कसम।

0: सनम।
1: बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कह रहे हों गर्मी से कि कितने भी तुम सितम कर लो, हम हंस हंस के सहेंगे, क्योंकि हमारे पास हीट को बीट करने के बहुत सारे उपाय मौजूद हैं। कई चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। नारियल का पानी भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो पैक्ड नारियल का पानी मिलता है उसकी जगह अगर आप फ्रेश नारियल के पानी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का ख़जाना है नारियल का पानी, और हमारे जिस्म को फौरी तौर पर हाइड्रेट कर देता है।

गज़ब की गर्मी में गज़ब फिल्म का नगमा गज़ब का ही खूबसूरत लगा। ये था अमित कुमार का गाया हुआ नगमा। मेरी पसंद प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे थे कैसे हीट को बीट करेंगे जनाब। देखिए, ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें आप आर्टिफिशियल स्वीट का इस्तेमाल ना करें, यानी चीनी ना डालें। विटामिन का ख़जाना है, हाइड्रेशन का ज़रिया है। रायता या फिर खीरा जो है वो अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखें। इससे आपका निज़ाम हाजमा भी दुरुस्त रहता है और जिस्म ठंडा रहता है। पानी में पुदीना और लीमू मिलाकर एक डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं। अपने साथ रखिए उस बॉटल को, ये ताजगी भी देगा और हाइड्रेशन भी देगा, यानी दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। एक ही बोतल में दो दो चीज़ें एक साथ पाइए और इस गज़ब की गर्मी को हरा दीजिए। हमारे साथ बने रहिए, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आखिरी पेशकश है किशोर कुमार की आवाज़ में दीदार यार फिल्म का, ज़रा नॉटी सा नंबर है, समाप्त फरमाइए।

दीदार यार फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब इख्तिताम पजीर हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब सुनिए जनाब देवेंद्र सिंह का तहरीर करदा ड्रामा, उन्वान है देख वफा बदनाम ना हो, पेशकश प्रेम वोहरा की है।

0: शहर में मर गया।
1: डॉक्टर साहब मुझे कब छुट्टी देंगे? डॉक्टर साहब
0: अरे शोर मत मचाओ, वार्डन आ रही है। अरे नहीं ये तो

0: लो, अब एक और आ गया है। अभी तो 6 बजे हैं। अबे ओ लाहौरी मल जी, ये आया और वो गया, लो कर लो बात। वाह भाई वाह, अस्पताल भी अजीब दुनिया है। तू चल और मैं आया। लाहौरी मल जी, जाने वाले पर लोग रोते हैं और आने वाले पर हम हंसते हैं।
1: खामोश रहो लाहौरी, देखो होश में आ रहा है शायद।
2: अब ये ट्रक का पहिया मेरी तरफ क्यों आ गया? मैं तो सड़क से दूर खड़ा था, पटरी पर दरख्त के नीचे, और फिर वो अकेला पंछी आसमान से कहाँ चला गया? फिर वो सफेद दीवार सुर्ख हो गई, लेकिन मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है मुझे? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं?
1: कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम हमारे पास हो, सब ठीक हो जाएगा।
2: तुम कहाँ हो? अपने कपड़े उतार दो। हा? उतार दो ये कपड़े।
1: क्या क्या बकवास कर रहे हो?
2: मुझे सफेद कपड़ों से उलझन होती है, यूं लगता है जैसे कोई रूह कफन में लिपटी मेरी तरफ पड़ रही है। और

0: यहां तो बहुत सी रूहें कफनों में लिपटी हुई मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मैं ये चादर नहीं ओढूंगा, ये भी तो सफेद है।
1: लो लो ये कंबल ले लो, वरना सर्दी लग जाएगी। देखो ये सफेद नहीं,
0: ये कंबल ले लो, इसका रंग भी तो लाल है। आप मुझे मार ही क्यों नहीं डालते? ये सब लोग मेरी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं, क्यों बन गए हैं? मैं सच कह रहा हूं सिस्टर, ये दुनिया भी।
2: अरे वाह भाई, दुनिया को भी अपना दुश्मन समझने वाले तेरे सदके। लाहौरी मल जी, कोई बताए इसे कि यहां तो सभी दुश्मन दोस्त नहीं। अरे जिसका कोई दुश्मन नहीं होता वो खुद अपना बैरी बन जाता है।
3: चुप रहो, शोर ना मचाओ।
2: लो और लो, कोई मरने के लिए यहां आ जाए और तो कोई बात भी ना करे। चल लाहौरी मल, चल दुनिया, चलो चली का मेला।
0: लेकिन ये ट्रक का पहिया, बताओ सिस्टर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
1: देखो शोर ना मचाओ।
3: देखिए यहाँ शोर के लिए जगह नहीं है, ये घर नहीं अस्पताल है, बाकी मरीजों को डिस्टर्ब मत करो।
0: मैं डिस्टर्ब करता हूँ? मैं? अरे मेरी तो ऊंची आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। मैंने तो कभी अपने दुख और दर्द की बात नहीं की। डॉक्टर साहब मैं तो चुपचाप बेवफाई तक को पी गया, लेकिन किसी से उस बेवफा की बात नहीं करी। और डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि
1: देखो अच्छे मरीजों की तरह चुपचाप लेटे रहो।
0: लेकिन वो ट्रक का पहिया जो मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, और ये सफेद दीवार जिस पर खून के धब्बे बड़े होते जा रहे हैं, वो तो बुलंद होती जा रही है। क्यों है? अरे कितनी धूप है यहाँ, चिलचिलाती धूप। पानी पानी, मुझे प्यास लगी है, पानी दो मुझे, पानी दो मुझे।
1: बेहोश हो गया है
3: सिस्टर, इसको आईसीयू में ले चलो, खून ज्यादा बह गया है।
1: लेकिन ये फॉर्म?
3: हाँ फॉर्म कौन भरेगा? फिलहाल इसको बेड नंबर 13 पर ले जाओ, वो खाली हो गया होगा।
1: 13 नंबर खाली हो गया? सीमा मर गई क्या?
3: और क्या, जख्मी बहुत थे, बहुत जालिम थे उसके सास ससुर।
0: मेरा सर कहाँ रखा है आपने? इस गद्दे पर, ये गद्दा है ये? मुझे तो यूं लगता है जैसे किसी चट्टान पर रखती हो मेरा सर। लेकिन मेरी आंखें कहाँ गई? ये मेरे सर के ऊपर ट्रक क्यों चल रहा है सिस्टर?
1: ये ट्रक नहीं, पंखा है।
0: पंखा है ये या ट्रक का पहिया?
1: मिस्टर तुम रिलैक्स करो, दिमाग को आराम दो।
0: क्यों?
1: दिमाग पुरसकून हो तो जिस्मानी तकलीफ भी कम महसूस होती है। जिस्म और रूह पर बाहर सी आ जाती है, जानते हो?
0: बाहर तो जब आती है जब जेब खाली हो और इश्क कर रहे हो, पतझड़ की शाम हो और आप शहर से दूर कहीं एक नदी के किनारे खड़े हो और साथ में आपके कोई दुश्मन ईमान हो, ऐसे में सूरत जल्द डूब जाता है।

0: वो देखो प्रीतम, नदी पर दो किश्तियां तैर रही हैं जैसे
1: जैसे ख्वाब। हाँ। आंखों की बेकरार पलकों पर कुंवारे ख्वाब। सीमा आओ। हाँ। ये हसीन लम्हे, ये प्यारे पल इस दुनिया से छीन कर अपने दिल की दुनिया बसा ले, इनको कैद कर ले।
0: देखो हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी है। हाँ। और हम भीग जाएंगे। सड़क के किनारे उगे हुए पेड़ भी

0: भीग रहे हैं लैंप पोस्ट के बल पर, बारिश के कतरे आंसुओं की तरह।
1: तुम्हें लैंप पोस्ट पर बहुत रहम आता है, कभी मुझ पर रहम नहीं आया।
0: वाह, क्यों नहीं, लैंप पोस्ट की तरह तुम भी तो मेरा इंतजार करते हो।
1: कितनी अच्छी हवा चल रही है।
0: हाँ, इसमें कैसी भीनी भीनी महक है।
1: हाँ,
0: इस चट्टान के ऊपर और कुछ नहीं सिवाय आकाश के। आकाश पहले नीला था, अब संवला गया है।
1: और नीचे नदी है, जोश में मस्त बिफरी हुई, अपने हुस्न पर नाज करती हुई, सौ सौ बल खाती हुई, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसी।
0: मेरे जैसी?
1: हाँ।
0: ऐसे मौसम में यूं भीगते भीगते सो जाने को जी चाहता है, और सोते सोते मर जाने को।
1: मर जाने को क्यों?
0: यूं ही, अगर ये सपना पूरा ना हुआ।
1: ये सपना जरूर पूरा होगा सीमा, क्यों नहीं होगा।
0: ऐसे ही मुझे डर सा लगा रहता है।
1: इस चट्टान पर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हुए तो तुम्हें डर नहीं लगता है?
0: मैं तो चाहती हूँ तुम्हारा हाथ थाम कर इस खूबसूरत वादी में छलांग लगा दूं और मर जाऊं।
1: अजीब है तुम्हारी मोहब्बत सीमा, रुस्वा और बदनाम ना होने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है तुमने, और हंसते हंसते मर जाने का भी। लेकिन सीमा, मोहब्बत में जीते रहना, किसी की याद में तड़पते रहना भी तो एक सीमा है प्यार की।
0: ना ना ना, यूं ना कहो, यूं जिए जाना तो अजाब है। जब कोई जी ना सके, मर ना सके, एक झलक देखने के लिए तड़पता रहे, एक आवाज की तलाश में भटकता रहे, सिर्फ एक मुलाकात, एक मेल के लिए।
1: सीमा, ये भी प्यार की एक सीमा है। काश वो शाम कभी तमाम ना होती। अगर उसने यूं खत्म होना ही था तो हम भी उसके साथ खत्म हो जाते, और फिर मेरा इंतजार शुरू हुआ, उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया, और मैं उस जैसी आवाज, उस जैसी शक्ल ढूंढता रहा, पर उसको नहीं पा सका। और उसी रात किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। सीमा, तुम इस वक्त?
0: हाँ, मैं।
1: लोगों के लिए तो दिन खुशी की खबर लाता है, और मेरे लिए ये रात खुशियां लेकर आई है।
0: रात तो रात ही होती है, तुम देखना चाहते थे ना, आप जी भर कर देख लो मुझे।
1: क्या मतलब, तुम बैठोगी नहीं?
0: मैं बैठने के लिए नहीं, जाने के लिए आई हूँ।
1: क्या
0: बात, अब छुपी नहीं रही। मैंने सोचा था कि अगर डैडी मान जाए तो मम्मी को मनाना आसान हो जाएगा, लेकिन डैडी ने तो।
2: सीमा, सीमा बेटी, तुम्हें मैंने कभी लड़की नहीं समझा, लड़का समझकर तुम्हारी परवरिश की है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। जहां तुमने चाहा जाने दिया, जितना पढ़ना चाहा मैंने कोई रुकावट नहीं डाली। कौन आता है, कौन जाता है, तुम किस किस से मिलती हो, मैंने पूछा तक नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे हम नादिम हों। लेकिन आज जो सुन रहा हूं, देख रहा हूं।
0: लेकिन प्रीतम बहुत नेक लड़का है, और मैं।
2: नेक लड़का है, लेकिन तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? उसके माँ बाप कौन हैं, क्या करते हैं, हमारे मुकाबले में उनकी क्या हैसियत है, ये बताओ। इसके अलावा वो और साथ, हम और साथ, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, तुम्हारा मुस्तकबिल हमने बनाया है। तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या मुनासिब है हम जानते हैं। अगर तुमने मनमानी करने की ठान ली है तो हम आज से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारी

0: कॉलेज की पढ़ाई आज से खत्म और सिनेमा और सैर भी बंद। हम इस आजादी से बाज आए जो बच्चों को आवारगी की राह पर ले जाए।
1: हाँ सिमी, हाँ तुम्हारे डैडी ठीक ही तो कह रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए एक आईएएस लड़का चुना है, उसका फ्यूचर है। इन भूखे नंगे कंगालों से हमारा तुम्हारा क्या वास्ता? अरे रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। अपनी तरफ देखो, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। हम लोग इज्जतदार हैं, समझी?
2: आपकी इज्जत है, ऊंचा खानदान है, दौलत है, लेकिन मैं किसको दौलत, खानदान और इज्जत समझती हूँ वो आपने नहीं जाना। मेरे ख्यालात की आप दोनों ने कभी कदर नहीं की। बच्चों के भी ख्वाब होते हैं, यह बात आपके कभी ध्यान में नहीं आई। बच्चों के भी जज्बात होते हैं, वो भी आजादाना तौर पर जीना चाहते हैं, ये शायद आप नहीं जानते।
0: ये फिल्मी डायलॉग हैं, ख्याली दुनिया की बातें हैं, सस्ते घटिया नावलों की बकवास। सुन लिया राजरानी, और दिखाओ इसको फिल्में, और तो इसको आजादी। लेकिन इन सब का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी फिल्म नहीं होती, जैसे फिल्म जिंदगी नहीं हो सकती। ये सब शेख चिल्ली की सी बातें हैं।
2: डैडी
0: मर गया तेरा डैडी,
2: डैडी
0: मर गया तेरा डैडी, वो डैडी जिसने फर्ज अदा किए है एक ऐसी औलाद के लिए जिसे उसने शहर में बदनाम करके रख दिया। वो होगा जो हम चाहेंगे, वरना बेटा हमारा मुंह ना देखना, ना मेरा ना अपनी माँ का। बेटा बेटा वैसे तुम आजाद हो, जो चाहे कर सकती हो।
2: सॉरी डैडी।

0: मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मैं तुमसे चोरों की तरह मिलती रहूँ ये मुझे मंजूर नहीं, और वो तुम्हें अपना लें ये भी मुमकिन नजर नहीं आता। तुम भी तो कुछ बोलो, कुछ मशवरा दो, कोई सलाह दो, कुछ कहो, छिड़को मुझे।
1: सीमा,
0: ये क्या, तुमने तो मुझे मेरी शॉल पकड़ा दी। तुम मुझे माफ कर दो। बात सुनो, तुम कोई अच्छी सी नौकरी नहीं हासिल कर सकते? तुम्हारे पास अचानक कहीं से बहुत सारी दौलत नहीं आ सकती क्या? तुम अचानक बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते क्या?
1: फिर क्या होगा सीमा?
0: फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम क्या हो, कौन हो, और मैं तुम्हें क्यों इतना प्यार करती हूँ।
1: सीमा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे अपाहिज बना दिया है। न पढ़ने में जी लगता है, न खेलने में, और न ही किसी काम में। मोहब्बत इंसान को इतना बेबस और लाचार बना देती है, आप समझाओ मैं।
0: प्रीतम, तुम जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, क्या मुझसे नफरत नहीं कर सकते तुम?
1: मैं क्या कर सकता हूं मैं नहीं जानता। मैं तो मोहब्बत करता रहूंगा, नफरत तुम कर लेना। चलो सीमा, छोड़ा हूं तुम्हें।
0: प्रीतम।

0: ये चक्कर क्यों नहीं बंद होते? ये पहिया क्यों नहीं रुकता है? क्यों नहीं रुकता ये पहिया? ये कौन मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है? सिस्टर सिस्टर सिस्टर, मेरे दोनों बाजू नस्त्रों से छल्ली कर दिए गए हैं। मैंने मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है सिस्टर, क्या बिगाड़ा है?
1: लेकिन तुम भी तो बातों की नश्तर लगाते रहे हो ऐसे कि रूह कहाँ पुटती है।
0: क्या कहा सिस्टर? रूह? रूह कहाँ है? रूह क्यों कांपती है सिस्टर?
1: कुछ नहीं है? ये मेरा ध्यान सामने वाले क्लॉक टावर की तरफ चला गया था।
0: सिस्टर, वो क्लॉक टावर के पीछे क्या है सिस्टर?
1: मुर्दा घर।
0: मुर्दा घर? मुर्दों का भी कोई घर होता है सिस्टर, है? मुर्दा घर।
1: हाँ होता है पीता, घर भी और घाट भी।
0: मरे हुओं को घर का क्या फायदा है?
1: उनको तो अब फायदा या नुकसान नहीं होता। हाँ कई और हैं जिनका रोजगार बन जाती हैं ऐसी मुर्दा घर। तुम्हें तुम्हें मरने से डर लगता है क्या?
0: पहले कभी नहीं लगता था, लेकिन लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मेरा बूढ़ा होने को जी चाहता है।
1: बूढ़ा होने को किसका जी करता है? क्या करोगे तुम बूढ़े होकर? मेरी तो बुढ़ापे के नाम से रूह कांपने लगती है। तुम उस तरफ क्या देख रहे हो?
0: कुछ नहीं, अभी इतने गिद्ध थे टावर पर, अब एक ही गिद्ध रह गया है, उसी को देख रहा हूं। हाँ आप क्या कह रही थी सिस्टर?
1: मैं पूछ रही थी बूढ़े होकर तुम क्या करोगे?
0: सिस्टर, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो सारा सारा दिन धूप में बैठूंगा और मेरी बीवी मेरे इर्द गिर्द मंडराया करेगी और मैं सारा सारा दिन अखबार और किताबें पढ़ूंगा। किताबें पढ़

0: मीना जरा इधर आना तो।
1: आती हूँ।
2: अरे हमारे पास भी बैठ जाया करो कभी कभार।
3: कोई ढंग से बात करो जी, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। बच्चों के सामने इस तरह के चोचले अच्छे नहीं लगते। तुम्हें क्या कहेगी?
2: ये दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। मैं सोचता हूँ वो दिन कब आएगा जब कोई शोरगुल नहीं होगा, कोई किसी के खिलाफ नहीं होगा, कोई मुल्क दूसरे को धमकियां नहीं देगा, ये खुदगर्जी और बेईमानी इस दुनिया से दूर हो जाएगी, अगवा और दूसरी वारदातें नहीं होंगी।
3: क्यों, क्या हो गया अब? कब किसी ने आपका बुरा सोचा है? हाँ, पर किसने हमला किया है? कौन कत्ल हो गया है? अरे आपका तो कुछ चोर भी चुरा कर नहीं ले गए। आप तो हर एक पर एतबार कर लेते हो, किसी को धोखेबाज और बेईमान नहीं समझते।
2: लेकिन ये देखो मीना, पूरा अखबार बेईमानी, अगवा, कत्ल, डाके और धोखेधड़ी की खबरों से भरा पड़ा है, और इस अखबार का नाम है नया संसार। अगर यही नया संसार है, यही नई दुनिया है, तो ये दुनिया मेरी दुनिया क्यों बन गई है? मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहना।
3: देखो देखो, आपको फिर चक्कर आने लगेंगे। आप अखबार की खबरों को सच ना समझा करें। अरे आपकी दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता। जरा आसमान की तरफ देखो, कितना शफाफ और पाक है। हवा में कैसी दिलनवाज महक है।
2: लेकिन इस आसमान पर सिर्फ एक अकेला पंछी उड़ रहा है, न जाने वो अपने घोंसले तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। अब तो दिन भी ढल गया है, रात होने को है, और वो अकेला पंछी उड़ रहा है, और वो बिजली के तार पर वो चील उल्टी लटकी हुई है। कोई उसको वहां से छुड़ाता क्यों नहीं?
3: आप क्या सोचने लगे आप? हाँ, याद है कभी हमें दाल रोटी तक के लाले पड़ते थे, और हम दोनों इसी चक्कर में गलता रहते थे। मेरे पास सिर्फ दो साड़ियाँ थीं, एक को धोती थी और दूसरी पहनती थी, और अब इतनी है कि याद नहीं। हमारे पास इतना अच्छा घर है, बच्चों के पास अपने अलग अलग कमरे हैं, आपकी लाइब्रेरी है, बाग है, बाग में धूप आती है। बताओ और क्या चाहिए आपको? क्यों फिजूल बातें सोचकर उदास हो जाते हो? सभी तो सुख है हमें।
2: अगर सभी सुख है तो तुम्हें जोड़ों का दर्द क्यों है मीना?

0: ये दर्द मेरा है, मैं इसका जिक्र करके दूसरों को परेशान तो नहीं करती, और आप है? अरे आपसे तो ख्यालों का बोझ भी बर्दाश्त नहीं होता।
1: ख्यालों का बोझ उठाना ही तो मुश्किल होता है मीना। सही बात पागल बनाने की, तो तुम तो हमेशा ही मुझे पागल बनाती रही हो। कभी बातों से, कभी गुस्सा होकर, कभी घूर के, तो कभी प्यार करके। ऐसा पागल तो मैं किसी को नहीं बना सका मीना।
0: अच्छा जी, बातें बनानी कोई आपसे सीखे। अब क्या हुआ, अब क्या सोचने लगे आप?
1: कुछ नहीं, वो जो झील बिजली के तारों पर उल्टी लटकी हुई है ना, वही आंखों में घूम रही है। अरे अरे, मुझे मुझे चक्कर आने लगे हैं।
0: सुनिए,
1: ये ऐसा दर्द हो रहा है मुझे। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: लो ये दवाई खा लो, इन टैबलेट से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, खा लो ना।
1: सिस्टर, सिस्टर, हाँ? तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? ये तुम्हारी साड़ी कैसे जल गई है? तुम्हारी तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो गई हैं? है? तुम्हारे बाल क्यों उलझ गए हैं? तुम अपने पांव की तरफ क्यों देख रही हो सिस्टर? है? क्या तुम कोई लाश देखकर रो रही हो? है? क्या तुमने कोई कत्ल किया है? है? किसी मासूम लड़की को आग लगाई तुमने? है?
0: चुप हो जाओ, आंखें खोलो और देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
1: तुम आंखें बंद करके मेरी बात को कान खोलकर क्यों नहीं सुनती सिस्टर?
0: तुम्हारी बातें तो इंसान को पागल बनाकर रख देती हैं। तुम खामोश नहीं रह सकते, तुम बहुत बातें करते हो।
1: मैं बातें नहीं करता, मैं कुछ जानना चाहता हूँ सिस्टर, कुछ पूछना चाहता हूँ।
0: क्या पूछना चाहते हो? पूछो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुमने अभी अभी कहा था कि तुम बूढ़े होना चाहते हो।
1: हाँ।
0: तुमने उस बूढ़े लौहारी का हाल देखा है? सारी उम्र इसकी हेरा फेरी में गुजरी है। ये अपनी बैठक पर जुआ चलाता था। ये बहुत निडर गुंडा था, कभी कहता था इस दुनिया में हर चीज हर इंसान बिकाऊ है, लेकिन एक आदमी ने इसकी टांगें तोड़ दी और इसे बताया कि हर आदमी हर चीज बिकाऊ नहीं होती। अब ये हंसता भी है और रोता भी है।
2: क्यों लाहौरी, ये बूढ़ा होना चाहता है?
3: अच्छा, तो ये बूढ़ा होना चाहता है? पागल हो क्या? बताओ तो लाहौरी मल को कि तुम बूढ़ा होने के लिए क्यों उतावले हो? अरे, बुढ़ापा तो बहुत जलील होता है, तुम नहीं जानते लड़के, तुम नहीं जानते।
0: लाहौरी, बात सुनो, तुम अब घर लौट जाओ।
3: ओ मैम साहब, मैंने नहीं जाना अस्पताल छोड़कर। अरे, घर क्या मुँह लेकर जाऊं? मैंने तो उसके तमाम जेवर एक एक करके दांव पर लगा दिए, सारी दुनिया के नंबर निकले, हमारे ही नंबर नहीं निकले। हाँ, जब बैठक चलाई तो चल निकली, और फिर मौज ही मौज, लहर बहर हो गई मैम साहब। वो लोग जो कन्नी काट कर निकलते थे ना, अब रुककर सलाम नमस्ते करने लगे। लेकिन फिर वो नया इंस्पेक्टर आ गया इलाके में, ईमानदार कहीं का, वो हमारे हाथ ही नहीं चढ़ दे, मुट्ठे पर हाथ ही ना रखने दे। बार बार कहे मैं यहां से तमाम बदमाशी जुआ और गुंडा गर्दी खत्म करके रख दूंगा, सो उसने हमारी टांगें तोड़ दी। अब हमें समझ आई कि वो खाने पीने वाला अफसर नहीं था, गुंडों का दुश्मन, यानी हमारा बैरी। हमने अपने ट्रक वाले से कहा भाई इसका भी इलाज कर दो। एक रात अपने घर वापस लौट रहा था तो उसने ट्रक का पहिया उस पर चढ़ा दिया।
0: हाँ? ट्रक

बात याद रखो, मौत से लड़ो, जिंदगी से नहीं। अभी तुम्हें तो बहुत कुछ देखना है। तुम आके तो खोलो। मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने बेपनाह मोहब्बत की और उसने वफा नहीं की। अब मैं तुम्हें मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। प्लीज तुम सो नहीं, जागते रहो प्रीतम। मोहब्बत की कोई हद नहीं, मोहब्बत की कोई उम्र नहीं, मोहब्बत का कोई मजहब धर्म नहीं होता। मैं सीमा नहीं, मैं मीना भी नहीं, तुम्हारी हम मजहब भी नहीं, लेकिन तुम यूं छोड़ कर नहीं जा सकते। सुनो, जागो प्रीतम, सो नहीं, जागते रहो। मौत मंजिल नहीं होती प्रीतम, जिंदगी मंजिल होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब देवेंद्र सिंह का तहरीर करदा ड्रामा देख वफा बदनाम ना हो। पेशकश थी प्रेम वोहरा की। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से एबोला वबा को सेहत एमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। अमरीका ने आबनाए हुरमुज के नज़दीक मिज़ाइल लॉन्च करने के ईरान के ठिकानों और कश्तियों पर अपने दिफा में हमले किए हैं। भारत समेत दुनिया भर के आज़मीन आज सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। और गोवा के मारगांव में खवातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले मुआशरे वाले मुल्क हैं जो खुशहाली के फरोग की खातिर इख्तिरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को भी उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के ममालिक ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है। मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया और क्वाड के चार मुल्कों ने खास तौर पर भारत बहरुल काहिल खित्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार वसत आई है जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक नेटवर्क, जेर समंदर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने की सरगर्मियां शामिल हैं। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत

आराधना फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को, फिल्म है मस्ताना।

हीरा पन्ना फिल्म का नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब सुनिए मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले को फिल्म है हम किसी से कम नहीं।

0: होते होते होते प्यार होता है।
1: फिल्मी दुकानें जारी हैं। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है सालार जंग म्यूजियम।
2: किसी भी मुल्क की तारीख, तहजीब, तमदन और सकाफत का अंदाजा उस मुल्क में मौजूद तारीखी इमारतों और मकामात से ही नहीं, बल्कि उस मुल्क के हुक्मरानों की ज़ौक़ तामीर और अवाम के मिजाज से भी लगाया जा सकता है। और बिलाशुबा हिंदुस्तान में ऐसे मकामात, इमारतों और यादगारों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं तारीखी यादगारों में से एक यादगार है 1951 में कायम होने वाला हैदराबाद शहर का सालार जंग म्यूजियम, जो सारी दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद और मुनफरिद म्यूजियम है, जो एक ऐसे शख्स नवाब यूसुफ अली खां सालार जंग सोम की आला व उम्दा ज़ौक और शौक़ की अक्कासी करता है, जिन्होंने अपनी 60 साल जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ नवादिरात और बेशबहा कीमती अशिया जमा करने में सर्फ कर दिया, जो उनके बाद कौम और मुल्क का असासा बन गई। बताया जाता है कि इस वसी और इस म्यूजियम में 43,000 नादिर नायाब अशिया मौजूद हैं। हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1952 में इस म्यूजियम का दौरा करने के बाद कहा था, मुझे सालार जंग म्यूजियम के मायने से खुशी हासिल हुई। एक शख्सी जौक ने इतना सामान बहम पहुंचा दिया कि जो हुकूमतों की कोशिश से भी फराहम नहीं हुआ करता। मजीद खुशी दरअसल इस बात से हुई कि यहाँ चीज़ों की तकसीम और तरतीब नहायत काबिलियत के साथ कायम की गई है, और इसके लिए स्टाफ की हुस्न कारकर्दगी का एतराफ़ करना पड़ता है। ये शायद उस वक्त की बात होगी जब सालार जंग म्यूजियम नवाब यूसुफ अली खां के मस्कन दीवान देवड़ी में वाक़ था, और इसका इफ्तिताह 1951 में उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसका हुस्न इंतज़ाम सालार जंग स्टेट कमेटी के पास था। 1958 में ये वजारत सकाफत का हिस्सा रहा। 1961 में कानून साजी के जरिए कौमी अहमियत का हामिल करार दिया गया, और फिर उसके नज़्म नस्क और इंतज़ाम को एक बाख्तियार इदारे के हवाले किया गया, जिसके सरबराह गवर्नर

0: रहे। 1968 में इस म्यूजियम को दीवान देवड़ी से मौजूदा इमारत में मुंतकिल किया गया और तकरीबन 40 साल बाद फिर इसकी तज़ीनी नौ के जरिए मौजूदा शक्ल सूरत गिरी से आरास्ता किया गया। इस तरह ये कहा जा सकता है कि म्यूजियम 50 वर्षों में 3 अदवार से गुजरा, लेकिन खास बात यह है कि इस सारे अमल के दौरान न तो तरतीब बदली और न ही इसकी तकसीम। सालार जंग म्यूजियम को ये एजाज हासिल है कि एक घराने की जमा करदा नवादिरात की नुमाइश गाह है। यूं तो दौलत और सरवत हैदराबाद के बहुत से घरानों में रही, लेकिन ज़ौक शौक, इल्म दोस्ती और दौलत की यकजाई ने यह करिश्मा कर दिखलाया कि 3 नस्लों की काविश ने इस अजायब घर की सूरत इख्तियार कर ली। आज जिस इमारत में सालार जंग म्यूजियम कायम है उसका संग बुनियाद 23 जुलाई 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जिसको हैदराबाद के मशहूर आर्किटेक्ट जनाब हशमत रजा ने डिजाइन किया था और जिसका इफ्तिताह 1 जून 1968 को उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। सालार जंग का कुतुबखाना नवादिरात से ज्यादा बेशकीमती है। हर खानदान का कुतुबखाना उसके इल्मी जौक का मजहर हुआ करता है। इस कुतुबखाने की सबसे कदीम किताब एक कलमी कुरान मजीद है, जिस पर सालार जंग के जद्द आला मोहम्मद बाकर इब्ने शेख मोहम्मद अली के दस्तखत हैं और इसकी शुरुआत 1656 में हुई। चुनांचे सालार जंग अव्वल की जिंदगी में कीमती और नादिर किताबों की तादाद 6000 तक पहुंच चुकी थी। मीर लायक अली ने इसमें कुरान मजीद का इजाफा किया और अलहदा फहरिस्त मुरतब की। सालार जंग सोम के जमाने में कुतुबखाना बहुत मशहूर हो चुका था और आज इसे आलमी शोहरत हासिल है। आज इस कुतुबखाने में तकरीबन 56,000 से ज्यादा अंग्रेजी किताबें और तकरीबन 22,000 अरबी, फारसी और उर्दू किताबें मौजूद हैं। सालार जंग म्यूजियम में नादिर कलमी किताबें, मुसव्वरी के नादिर शाहकार, शाहकार मुजस्मे, फर्नीचर के शाहकार और बच्चों के खिलौनों के शाहकार मौजूद हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के तआवुन से 1946 में कायम होने वाली दुनिया भर के अजायब खानों की तंजीम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम में मई 1977 में मास्को में होने वाले इजलास में 1978 से हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने का फैसला किया गया था, जिसके बाद हर साल इस दिन को इस नुक्ते नज़र के साथ इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है ताकि अवाम में तहजीब और तारीख के साथ साथ माजी को महफूज रखने और इसके मुसलसल मुताले का शऊर पैदा किया जा सके।
1: आपने सुना प्रोग्राम तारीख साज, आज का मौजू था सालार जंग म्यूजियम, तहरीर जनाब अशरफ उस्मानी की थी। ये आकाशवाणी है, मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब सुनिए सोनू निगम और अनुराधा पोडवाल को। फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये नगमा था अकेले हम अकेले तुम फिल्म से। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी है, अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, भारत अमरीका संबंधों को नई मजबूती पर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती। पिनाक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: पिनाक जी, एक बेहद अहम दौरा है अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में, और भारत अमरीकी संबंधों को नई मजबूती देने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के शब्द सुने।
4: I think where the United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
2: पिनाक जी, एस जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की तरह ही भारत इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है वो सर्वोपरि है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
3: देखिए, हर एक देश अपनी जो इंटरेस्ट है उसको सबसे नेचुरली प्रायोरिटी देती है। अब उसमें ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कभी, अच्छा ठीक है आप ये करिए तो हम ये करेंगे। पर जो ट्रंप साहब ने नीति अपनाई है वो थोड़ा सा और पिछले प्रेसिडेंटों से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि अमेरिका को क्या फायदा है वो सबसे पहले वो देख रहे हैं। भारत भी हमेशा देखता है कि भारत का क्या फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत है, काफी गहराई है, पर हमारे डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल है, पावर इक्वेशन जो होता है वो अलग अलग है, लोग डिफरेंट हैं, उनकी सिस्टम अलग है, वो डिफरेंट पीपल हैं, तो इसमें तो होता ही है, डिफरेंसेस तो होंगे ही, ये नॉर्मल होता है। तो इसीलिए हम लोग बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, उसमें से जब कुछ मुद्दा निकलता है इस पे दोनों तरफ राजी होते हैं तब आगे बढ़ती है बात।
2: जी पिनाक जी, आइए सुनते हैं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के शब्द।
5: एंड वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दैट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गोइंग इनटू द 21st सेंचुरी गिवन द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस न्यू एरा इज इंडिया। इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट आई नो दैट वी हैव दिस वेरी वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एंड वी शेयर सो मेनी वैल्यूज एंड सो मेनी कॉमन इंटरेस्ट्स। एंड सो ऑब्वियसली आई ट्राई टू गेट अराउंड द वर्ल्ड, आई विल ट्राई टू गो टू अदर सेलिब्रेशंस ऑफ आवर 250th बर्थडे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो आई डाउट एनी विल हैव अ प्रोडक्शन लाइक दिस वन, बट I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly, for the people of other countries working together as well.
2: पिनाक जी, मार्को रूबियो ने कहा कि न सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में रहने वाले लोगों के लिए भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो उन सब के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पार्टनरशिप्स अमेरिका की हैं उनमें भारत की पार्टनरशिप को अमेरिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और समझता है कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते वक्त भारत अमेरिका के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस पर?
3: स्टेटमेंट में तो काफी चीजें उन्होंने कही जो अच्छी हैं, पर उसका जो नतीजा अगर असली निकालना है तो वो नेगोशिएशन से ही निकलेगा। जैसे हमारे ट्रेड नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं तो उसका क्या होगा, फाइनली उसका रूप क्या होगा, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो बातें सेक्रेटरी रूबियो ने कही क्या उसका कोई झलक उसमें दिखाई देता है, ये हम लोग असेस करेंगे, क्योंकि कहना एक बात है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है

0: थिंक अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करेगा बहुत लोगों को, हमारे देश को तो करेगा ही, उनके देश को करेगा और बाकी देशों को भी करेगा, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। अमेरिका तो है ही मिलिट्रली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री, और इंडिया का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारे संबंध है ये इन्फ्लुएंस करेगा, दुनिया को करेगा, रीजन को करेगा और दोनों मुल्कों को करेगा।
1: पिनाक जी, कई बार कोशिश की गई कि व्यवसाय की डील क्रैक की जाए, ट्रेड नेगोशिएशन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि रशिया पर लगे जो सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंद हैं, वो इंडिया की तरफ टारगेट नहीं किए गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ तो हैं लेकिन भारत और रूस के जो संबंध हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये बात कितनी सच है और असल में प्रैक्टिकली कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि इसका असर इंडिया US के रिलेशंस पर पड़ रहा है?
0: इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सैंक्शंस का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है
1: जी,
0: क्योंकि हम लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है और फिर तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमको सस्ते में मिल रहा था तेल। तो ये कहना कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं है शायद कुछ हद तक सही है, पर बात तो ये है जो भी रशिया के साथ तेल खरीदता तो सबको इफेक्ट किया है, उसमें इंडिया भी है। तो हम तो उस नजरिए से देखेंगे कि हमको क्यों इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हो जिसमें हमें इफेक्ट हो रहा है। एक स्तर पर आप कहते हो जैसे रूबियो साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े दोस्त है, पर दोस्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन मतलब डायरेक्टली ना ले पर इनडायरेक्टली तो फर्क पड़ रहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम होना चाहिए। ये सैंक्शंस वगैरह जो है ये टेम्पररी है, कभी कभी वो उठा देते हैं फिर कहते नहीं हम फिर लगा देंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी दिक्कत हो जाती है, सप्लाई चेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सैंक्शंस की नीति से हम लोग खुश नहीं हो सकते और कभी भी खुश नहीं हो।
1: पिनाक जी, आपने एक बेहद जरूरी शब्द कहा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आज की इस दुनिया में हर देश या हर उभरता हुआ देश या हर विकसित देश कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन उनके लिए लाभकारी हो। क्या लगता है कि जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं अब या अब के बाद या इस विश्व की जो परिस्थिति है उसके बाद, इस बात पर निर्भर करेंगी कि सप्लाई चेन जिन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको कितना लाभ देती हैं, और अब हम म्यूचुअल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के विश्व की तरफ जा रहे हैं?
0: देखिये, वो तो मल्टीलैटरल WTO जो एग्रीमेंट्स थे वो तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों के धक्के से उसको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट, पर जो उसको मानते हैं उसके साथ तो चल रहा है, पर अब सब लोग बायलैटरल की तरफ झुक रहे हैं
1: जी।
0: क्योंकि जो सबसे बड़ा इकोनॉमी दुनिया में है वो अगर कहता है कि हम नहीं मानते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, एक तरफा उन्होंने वो डिसीशन लिया है। इसीलिए भारत भी EU के साथ बायलैटरल कर चुका है, उसके बाद

0: नॉर्डिक स्टेट्स जो है उनके साथ भी करेंगे, सबके साथ ही तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है और उससे सप्लाई चेन्स बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए भी नीतियां बदलनी पड़ती है और इंडिया बदल रही है नीति, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई चेन्स के जो कई हब्स हैं वो अब यहाँ बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है, पर बायलैटरल हो जाए तो ठीक है, वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जब मल्टीलैटरल आप मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं हम, तो मल्टीलैटरल जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जब हो जाता है तो तब फिर मामला फिर बैक टू नॉर्मल हो सकता है, पर नॉर्मल नॉट इन द सेंस की जो दुनिया पहले थी जहां मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सब मानते थे, पर वो दुनिया नहीं रहेगी अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स की दुनिया में हम पहुंच गए।
1: तो पिनाक साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हो, जब मध्यस्थता ना हो पाए, तो किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं सरकारें? आपके तजुर्बे से आप क्या बता सकते हैं श्रोताओं को कि वो कौन से नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं जिन पर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि चलिए हम अब इन पॉइंट्स पर एक दूसरे से सहमति जताते हैं और अब आगे चलकर हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहेंगे?
0: ट्रेड का जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट्स काफी हो जाती हैं कि अच्छा इस आइटम पर हम ये करेंगे, उस आइटम पर इतना ड्यूटी लगाएंगे, पर कुछ आइटम हमेशा बच जाती है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट है उस आइटम को हम चाहते हैं कि कम ड्यूटी लगे, और वो अपनी तरफ से बोलेंगे कि नहीं इस पे आप जीरो ड्यूटी कर दें। क्योंकि देखिए अमरीका ने जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये नीति अपनाई है कि जिन देशों के साथ हमारा एडवर्स ट्रेड इंबैलेंस है, यानी जो लोग हमें ज्यादा बेचते हैं और हम उन्हें कम बेचते हैं
1: जी,
0: उनके साथ हमारा रुख बदलेगा, और उन्होंने बदला भी चाइना के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे फेवर में है, वो 40-45 बिलियन डॉलर है। अब अमेरिका की ये नीति के बजाय अब वो ज्यादा हमको बेचना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ज्यादा बेचते हो पर हम नहीं बेच पाते हैं क्योंकि आपके टैरिफ ज्यादा है। और हमारी तरफ से हमने बोला ठीक है, आप ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो बात हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा कम कर देंगे टैरिफ आपके अच्छे जो गुड्स हैं उन पर। फिर एक और बात थी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो हमने मना कर दिया कि वो हम नहीं खोलेंगे, डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि करोड़ों लोग इस पे निर्भर हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, तो इसलिए उनका जो जीवन है हम नष्ट नहीं करना चाहते, तो इस पे तो हम अटल रहेंगे मुझे लगता है, पर बाकी जितने भी चीज है उनको दूसरी जगह कंसेशंस दे देंगे। तो इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो बैठ के कई हो जाता है, फिर कुछ बाकी रह जाता है, तो फिर बाकी चीजों पे जाके चर्चा होती है अंदरूनी भी, फिर बैठकर भी दूसरे मुल्क के साथ जो बैठते हैं उसके भी सब चर्चा होती है, और तब जाके डिसीशन निकलता है, फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है, पर ये कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है।
1: बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और इसी बीच जो ये एक बदलता विश्व प्रारूप हमारे सामने है और किस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चलता ही जा रहा है, अभी फिलहाल उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए भारत चीन रिश्ते कितने अहम हो जाते हैं? भारत ने अब चीन के साथ व्यवसाय दोबारा धीरे धीरे धीमे धीमे ही सही ग्रेजुअली ही सही दोबारा शुरू किया है। चीन और रूस के रिश्ते हम सभी जानते हैं कि बेहद मजबूत हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका साथ नहीं है, वैसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारत और चीन भी साथ नहीं है, लेकिन भारत और चीन ज्योग्राफिकली बेहद करीब हैं और हम जानते हैं कि इससे पहले आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते कितना ये तय करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत रहते हैं?
0: ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कि चीन भारत और अमेरिका
1: जी,
0: इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो मतलब इंटरेस्ट है वो अलग अलग है
1: जी,
0: और इसीलिए चीन के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन भी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है
1: बिल्कुल,
0: और सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता
1: बिल्कुल,
0: वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वो 90% कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहां पहुंचे थे बीजिंग उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी फर्क पड़ रहा है रहा है उन, तो इसलिए दबाव तो वो ट्रेड भी यूज करते हैं लोग दबाव बनाने के लिए कि अगर आपके पास एक मोनोपोली हो किसी आइटम का, तब दूसरों को जब लेवरेज करते हैं तो आप फायदा देखते हैं अपने देश के लिए। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड भी बहुत बड़ा है और हमारा जो ट्रेड है वो एडवर्स

0: हैं जो उस पे होता है। इसलिए चाइना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े इंटरडिपेंडेंट हैं, पूरी दुनिया ही आज इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए नेचुरली ये नेगोशिएशंस करके, और इंडिया ने भी देखा कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाता है तो हमें फिर दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, हमें दूसरों के साथ भी हमें ट्रेड की जो चिंता है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो सोचना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में चाइना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई चीजों में तो वो अमरीका से भी आगे चला गया है। तो इसलिए हमें ये रियलिस्टिक पोजीशन को लेना ही पड़ेगा। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
1: बिल्कुल मीनाक्ष साहब, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, टैक्स भरते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका के ग्रोथ रेट में बहुत अहम योगदान देती है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
0: देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल कर रहे हैं। अब जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा दिल्ली में अपने स्पीच में कि जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी हम कर रहे हैं शायद उससे भारतीयों को ज्यादा फायदा मिले, तो देखते हैं कि उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या बनेगी और उसमें फाइनली क्या होगा इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने।
1: पिनाक जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, आलमी खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड मुल्कों के दरमियान मजबूत इश्तराक और साझेदार मुल्कों के लिए इमदाद पर जोर दिया है। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज के नज़दीक मिज़ाइल लॉन्च करने के ईरान के ठिकानों और कश्तियों पर अपने दिफा में हमले किए हैं। भारत समेत दुनिया भर के आज़मीन आज सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। गोवा के मारगांव में खवातीन की SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी है। अब खबरें तफसील से। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल ने कांगो और युगांडा में इबोला व बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैन अलावी तशवीश की सेहत आमा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगांडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें उसूल करने को यकीनी बनाना होगा। DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए यह लाजमी बना दिया है कि वह परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें ताकि मुमकिन इबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वह बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कई होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुकाम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखिर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुकाम को मुत्तले करना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान की वजीर खारजा توشی متسو موٹیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شرکت کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دیگر ملکوں کی مدد کرتے ہوئے کواڈ ملکوں کے مابین اشتراک کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ کے ممالک کھلے معاشرے والے ملک ہیں جو خوشحالی کے فروغ کی خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔

0: आ जाएंगे जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की क्यादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, कदम्बी श्रीकांत और HS प्रणय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। गोवा के मरगांव में खवातीन के SAFF चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीव की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए जबकि प्रियंका ने और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत खवातीन की SAFF चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे IPL के फाइनल में पहुंच जाएगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड मुल्कों के दरमियान मजबूत इश्तराक और साझेदार मुल्कों के लिए इमदाद पर जोर दिया है। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज के नज़दीक मिसाइल लॉन्च करने के ईरान के ठिकानों और कश्तियों पर अपने दिफा में हमले किए हैं। भारत समेत दुनिया भर के आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। गोवा के मरगांव में खवातीन की SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर जारी है उर्दू सर्विस की नशरियात।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से एबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ जयशंकर ने क्वाड मुल्कों के दरमियान मजबूत इश्तराक और साझेदार मुल्कों के लिए इमदाद पर जोर दिया है। अमेरिका ने अब नए हुरमुज के नज़दीक मिसाइल लॉन्च करने के ईरान के ठिकानों और किश्तियों पर अपने दिफा में हमले किए हैं। भारत समेत दुनिया भर के आज़मीन हज आज सऊदी अरब में फरीज़ाए हज अदा कर रहे हैं। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। गोवा के मारगांव में खवातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस का वक्त अब खत्म हुआ। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज बात हो रही है फिल्म तीन देवियां की। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक की है जो एक साथ तीन अलग अलग स्वभाव की महिलाओं के आकर्षण में फंस जाता है। उस दौर के हिसाब से ये कहानी काफी मॉडर्न और काफी बोल्ड मानी गई थी। फिल्म के का जो मुख्य किरदार है वो है देवदत्त आनंद, जिसे निभाया देवानंद ने। देवदत्त एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करता है, कविताएं लिखता है और सपनों की दुनिया में जीता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में तीन अलग अलग महिलाएं आती हैं, मासूम और सरल नंदा, ग्लैमरस अभिनेत्री कल्पना और रहस्यमयी और अमीर महिला सिमी। तीनों उसे प्यार करने लगती हैं और देवदत्त खुद भी नहीं समझ पाता कि उसका असली प्यार कौन है। यही उलझन इस फिल्म की आत्मा है। इस फिल्म में रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, स्टाइल भी है और सबसे बढ़कर शानदार संगीत है। श्रोताओं, बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टारकास्ट की, जो आपको पता चल ही गई होगी। देवानंद साहब हैं, नंदा है, सिमी ग्रेवाल, कल्पना मोहन और IS जौहर। और एक खास बात यह है इस फिल्म की कि फिल्म में रेडियो की दुनिया की मशहूर आवाज़ अमीन सयानी भी सुनाई देते हैं, जो उस समय श्रोताओं के दिलों पर राज किया करते थे।

फिल्म के अगर ये देखा जाए कि क्या उसका बजट रहा और कितना उसमें कमाई की, तो इसके आंकड़े प्रॉपर तरीके से तो नहीं पता, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये एक मिड बजट स्टाइलिश रोमांटिक फिल्म मानी जाती है और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया। खासकर उसके संगीत ने फिल्म को एक लंबे समय तक लोकप्रिय बनाए रखा। तीन देवियों को कोई बड़े अवार्ड्स भी नहीं मिले, लेकिन उनके संगीत की और प्रस्तुति की हमेशा तारीफ हुई है और इसे उस समय की एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। और लोकेशंस ज़्यादातर महबूब स्टूडियोज़ में ही हुई। उस दौर की मुंबई की सड़कें, बस और आलीशान बंगलों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। अगर तीन देवियों को आज भी याद किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उसका संगीत। संगीत दिया था महान संगीतकार SD बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। तो सुन लेते हैं इस फिल्म का वो गीत जो आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गीतों में गिना जाता है।

और आइए अब श्रोताओं के संदेशों को पढ़ देते हैं। हमारे पास सबसे पहला संदेश आया है वीरम गांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार और प्रवीण सुल्ताना का। साथ ही छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा जुड़ रहे हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदेव सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह जुड़ रहे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता पी एस नोहावकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहरेकर। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं। सुरेश जाधव, अनीता जाधव और नेहरू चौक पेठर से ये हमारे श्रोता हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से जुड़ रहे हैं। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल का संदेश। इसके अलावा अजीत भवसार जी का संदेश है जो कि काफ़ी लंबा है, लेकिन ये पूरा संदेश तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ आपके नाम को हमने यहाँ कार्यक्रम में शामिल ज़रूर कर लिया है। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या जुड़ रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। पहाड़गंज मुल्तानी डहाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का संदेश। साथ ही संदेश मिला है सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवम जैन का। तो हमारे ये सभी श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने संदेश भी हमको भेजे हैं। तो श्रोताओं, बात कर रहे हैं हम फिल्म तीन देवियां की और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, ये जो फिल्म है ना, इसकी खासियत ये भी है कि ये फिल्म आंशिक रूप से ब्लैक एंड वाइट और आंशिक रूप से रंगीन है। उस दौर में ये प्रयोग काफ़ी अलग माना गया था। इसके अलावा ये जो फिल्म है, इसका अंग्रेजी वर्जन भी बनाने का सोचा था, ओ बॉय एंड थ्री गर्ल्स, इस पर भी काम हुआ, जिसमें संगीत दिया था एस डी बर्मन के सुपुत्र आर डी बर्मन ने, लेकिन ये जो फिल्म है ये रिलीज़ नहीं हो पाई। और इस फिल्म की कहानी में थोड़ा सा पश्चिमी टच था, अर्बन रोमांटिक फिल्मों के गाने जो हैं इसमें ज़्यादातर कॉपी करने की कोशिश की गई थी, इस तरह के गाने इसमें डाले गए थे कि अंदाज थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो गया। तो उस समय में ये जो कथानक था इस फिल्म का, ये भी काफ़ी बोल्ड था कि एक व्यक्ति तीन महिलाओं के साथ एक टाइम में किस तरह से प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ जाता है, तो उस दौर में ये एकदम अलग था। और एक और बात यह है कि उस समय दर्शकों ने फिल्म को खास तौर पर संगीत, फैशन और देवानंद के अंदाज को सबसे ज्यादा पसंद किया था। तीन देवियां सिर्फ एक ऐसी फिल्म नहीं है जो एक साधारण फिल्म हो, ये एक 60 के दशक की रोमांटिक सोच को, संगीत को और स्टाइल का एक आईना था। उसे देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने स्टाइल को भी चेंज किया और उस समय पर कहा भी जाता था कि देवानंद जो है ना एक स्टाइल आइकन बन गए थे। और गाना जो है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये तो जैसे हमने इस पर पहले भी जिक्र किया कि ये गाना अब तक भी रोमांटिक गानों में से एक

श्रोताओं, इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अपने मेल्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में। छोड़े जाते हैं आपको इस गीत के साथ।

0: इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग नवी दिल्ली विच हुई है। मीटिंग विच हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान विच भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद से सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों नाल गलबात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 3 दिन दौरे ते गंगटोक पहुंच गए ने। पंजाब विच 8 नगर निगमां 75 नगर कौंसलां ते 20 नगर पंचायतां दीआं चोणां लई अज वोटां पै रहे ने। दोपहर 12 बजे तक 31.6% वोटिंग दर्ज की गई है। आईपीएल क्रिकेट विच अज धर्मशाला च पहले क्वालीफायर मुकाबले विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दा मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग अज नवी दिल्ली विच हुई। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मीटिंग विच हिस्सा लिया। क्वाड देश हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी और समुद्री खेत्र विच गतिविधियां ते हालत की निगरानी लई एक सांझी संचालन स्थिति ते सहमत हुए ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे, फिजी विच एक अजमायशी बंदरगाह प्रोजेक्ट और समुद्र हेठां केबलां विछाउण ते सहयोग बारे एक माहर पैनल स्थापित करन ते विचार करेगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग के मुख्य नतीजों विचों एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क नूं अंतम रूप देना सी। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क ते भी दस्तखत किए ने। अज हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा तकनालोजी प्रबंधन नीति अंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और हंगामी प्रतिक्रिया अभ्यासों के खेत्रों में क्वाड पहलकदमी का ऐलान भी किया गया। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग तो बाद अपने बयान में डॉ जयशंकर ने जोर देकर कहा कि क्वाड देशों में सहयोग को होर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग उसारू रही और इस विच मुख तौर पर हिंद प्रशांत नाल संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने सुरक्षित और निर्विघन समुद्री व्यापार के नाल नाल पछमी एशिया च स्थिरता लियाउण लई सफारती कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिता है। केंद्रीय वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा विच कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कारनी नाल मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुभकामनावां दित्तियां। दोवां आगुआं ने दवल्ले सहयोग नूं होर मजबूत करन बारे सकारात्मक अते दूरदर्शी विचार वटांदरा कीता। ओह भारत कैनेडा व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते सेपा नूं छेती पूरा करन ते भी सहमत होए। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोहां देशां लई विकास अते

0: उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ते संसद दे स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कतर विच इक संभावी शांति समझौते दीआं संभावनावां ते चर्चा कर रहे ने। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रैस वे से आज दो वख-वख सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले आगरा लखनऊ एक्सप्रैस वे से एक बस के पलटन 6 लोगों की मौत हो गई, 10 जख्मी हो गए। एक होर घटना में बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रैस वे से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय वापरिया जदों एक कार जिस विच लोग सवार सन एक खड़ी कार नाल टकरा गई। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालीफायर मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। यह मैच धर्मशाला में शामी 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच की जेतू टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जदों के हारने वाली टीम को क्वालीफायर 2 में एक होर मौका मिलेगा। अंत में 94 खबरें एक बार फिर सुन लो। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की प्रधानगी हेठ क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग अज नवी दिल्ली में हुई। मीटिंग में हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहलकदमी बारे सहमति बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने अज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया, बीएसएफ के जवानों गलबात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के 3 दिन दौरे से गंगटोक पहुंच गए हैं। पंजाब में 8 नगर निगमां 75 नगर कौंसलों से 20 नगर पंचायतों की चोणों लिए अज वोटां पै रही। दोपहर 12 बजे तक 31.6% पोलिंग दर्ज की गई। आईपीएल क्रिकेट में अज धर्मशाला च पहले क्वालीफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा। साडा अगला प्रदेशक खबरों का बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजारा खारजा की मीटिंग की सदारत की। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कनकनी और इन्हें काबिले इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में खत्म हो गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले मुआशरे वाले मुल्क हैं, जो खुशहाली के फरोग के खातिर इख्तिरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के मुल्कों ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है।
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया और क्वाड के 4 मुल्कों ने खास तौर पर भारत बहरुल काहिल खित्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार वसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ज़ेर समंदर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने की सरगर्मियाँ शामिल हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने उन शोबों से मुतालिक जिनमें वो इश्तराक कर सकते हैं मजीद

0: Uluru in qualifier one in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier two. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जाएगा।

0: important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: Action. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित BSF मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIR News Hindi को फॉलो कर

0: सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही।

0: ही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। निजे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। और आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में उस इंसान की जो कैमरे के सामने बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उसके बनाए किरदार, डायलॉग और फिल्में करोड़ों दिलों में बसती है। ये कहानी है मशहूर निर्देशक और निर्माता आदित्य चोपड़ा की। एक ऐसा नाम जिसने रोमांस को नए अंदाज में परिभाषित किया और हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज बात हो रही है मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक यश आदित्य चोपड़ा की। दोस्तों, आदित्य चोपड़ा का जन्म 21 मई 1971 को मुंबई में मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के यहाँ हुआ था। फिल्म का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला था। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं आदित्य फिल्म सेट्स पर कैमरा, लाइट और स्क्रिप्ट को समझते थे। और जब उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया तो वो एक इतिहास बन गया। उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। आदित्य चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता यश चोपड़ा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी, जहां उन्होंने चांदनी और लम्हे जैसी फिल्मों में काम करके निर्देशन की बारीकियों को सीखा था।

श्रोताओं, लेकिन असली तूफान जो लेकर आई ना आदित्य चोपड़ा, वो लेकर आए थे 1995 में। सिर्फ 23 साल की उम्र में आदित्य चोपड़ा ने बनाई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और इस फिल्म ने इतिहास रच दिया था। फिल्म में थे शाहरुख खान और काजोल। राज और सिमरन की प्रेम कहानी ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया। कहा जाता है कि पहले शाहरुख खान इस फिल्म को करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो एक रोमांटिक हीरो की इमेज नहीं चाहते थे, लेकिन आदित्य ने उन्हें मनाया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। डीडीएलजे सिर्फ सुपरहिट नहीं हुई बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से मानी जाती है। मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर में ये फिल्म कई वर्षों तक लगातार चलती रही, बहुत सारे अवार्ड जीते और आदित्य चोपड़ा रातों रात बॉलीवुड के स्टार निर्देशक भी बन गए। और ये बताते हैं कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें आया था एक ट्रेन में सफ़र करते वक्त, और क्या मैजिक उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से किया।

उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने संभाली यशराज फिल्म्स की जिम्मेदारी। उन्होंने इस बैनर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों में शामिल कर दिया। उनके नेतृत्व में कई शानदार फिल्में बनी, जैसे मोहब्बतें, वीर जारा, रब ने बना दी जोड़ी, बंटी और बबली, धूम, वॉर, पठान, और इन सब ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े। आदित्य चोपड़ा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो नए टैलेंट्स को मौका भी देते हैं। उन्होंने कई कलाकारों को लॉन्च किया या बड़ा ब्रेक दिया, जिनमें अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा और आज ये सभी बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। आदित्य चोपड़ा की फिल्मों में भावनाएं बहुत गहराई से दिखाई देती हैं। उनकी कहानियों में परिवार, प्यार, रिश्ते और भारतीय संस्कारों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया जाता है। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि दर्शकों को भावनात्मक सफर पर लेकर जाते हैं, और खास बात यह है कि उनकी फिल्म के गाने हमेशा ही सुपरहिट होते हैं।

श्रोताओं, आदित्य चोपड़ा को बेहद परफेक्शनिस्ट माना जाता है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक फिल्मों में कॉन्सेंट्रेटली अपना काम किया, बहुत ज्यादा मीडिया इंटरव्यू भी नहीं दिए। यशराज स्टूडियो को आधुनिक तकनीक से लैस करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। वो मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक इमोशन है। अगर 90 के दशक के बाद बॉलीवुड में रोमांस का चेहरा बदला तो उसमें आदित्य चोपड़ा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भारतीय फिल्मों को इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचाया। एनआरआई दर्शकों के बीच हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता को बढ़ाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।

श्रोताओं, आदित्य चोपड़ा को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी जैसी फिल्मों के लिए कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 1995, 2005 और 2007 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।

आदित्य चोपड़ा को सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से यश राज फिल्म्स के तहत उनके काम के लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे यानी विजेता चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 3 बजने को है, निजी प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एनसीईआरटी।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर होंगी।
1: से खबरें सुनिए। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजराए खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम महफूज और मजबूत तवानाई की मार्केट्स के लिए पुख्ता आजम का अदा किया है। भारत और अमरीका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई काम करने और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीज़ हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर वन में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला डिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में खत्म हो गई। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा, जापान के वज़ीर ख़ारिजा और अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले माशरे वाले मुल्क हैं जो खुशहाली के फरोग की खातिर इख्तरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के ममालिक ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है। मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया और क्वाड के चार मुल्कों ने खासतौर पर भारत बहरुल कायल खत्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बाहरी शोबे में इश्तराक में लगातार वसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक नेटवर्क, जेर समंदर केबल, तरबियत, सराजसाजी, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने की सरगर्मियां शामिल हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने उन शोबों से मुतालिक जिनमें वो इश्तराक कर सकते हैं मजीद पेशरफ्त की है। भारत और अमरीका ने आज एक दो तरफा फ्रेम वर्क पर दस्तखत किए, जिसका मकसद अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना है। यह अहम मुआहदा नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक दूसरे को सौंपा। वजीर खारजा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क से मुतनव्वे सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलेगा, दोनों मुल्कों को माली मादनियात मामलात से मुतालिक तआवुन में मदद मिलेगी और अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर के मौसिर बंदोबस्त में भी मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के तीन रोजा दौरे पर गंगटोक पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वज़ाला प्रेम सिंह तमांग और दीगर सीनियर शख्सियतों ने किया। सदर जमहूरिया अपने दौरे में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों का इफ्तिताह करेंगी, जिसका मकसद रियासत में महफूज और काबिल रसाई ट्रांसपोर्ट सहूलियात में बेहतरी लाना है। वो सिक्किम की मालामाल माहौलियाती और फूलों की सैर करने के लिए रिज पार्क में ऑर्किडेरियम भी जाएंगी। बाद में वो तिब्बती उलूम के नामग्याल इंस्टीट्यूट का भी दौरा करेंगी। यह अदारा नायाब मखतूतात और बौद्ध सकाफती फन पारों की हिफाजत के लिए जाना जाता है। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया नाथुला दर्रा जाएंगी और गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की

में उनसे मिले दिन की तवक्का भी न थी, नशे में उनसे मिले दिन की तवक्का भी न थी, कैसे आलम में ये पहुंचा दिया किस आलम ने, कैसे आलम में ये पहुंचा दिया किस आलम ने। मुलाजा जी देख कैसा इजहार तसल्ली का सलीका था उसे, कैसा इजहार तसल्ली का सलीका था उसे, जख्म कुछ और ज्यादा ही किया मरहम ने। कैसा इजहार तसल्ली का सलीका था उसे, जख्म को कुछ और ज्यादा ही किया मरहम ने। और दोस्ती आखिरी इम्कान भी खोने ही को थी, दोस्ती आखिरी इम्कान भी खोने ही को थी, चल उठी कैसे कि जो नब्ज लगी थी थमने, चल उठी कैसे कि जो नब्ज लगी।

0: दर्द के मानिंद लगी थी जमने, कहकहा मार के दुनिया को जगाया हमने। हजरत कजल सैलो ममतरा की मैं पेश कर रहा हूं, मुलाहजा कीजिए इसका मतलब। महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, महफिल में जब से उसने पुकारा हमारा नाम, दुश्मन बना हुआ है हमारा, हमारा नाम दुश्मन बना हुआ है हमारा, हमारा नाम। और शेर मुलाहजा कीजिए कि मुंह से निकल गया है तो हैरान वो भी है, मुंह से निकल गया है तो हैरान वो भी है, लेना नहीं था जिसको गवारा हमारा नाम, लेना नहीं था जिसको गवारा हमारा नाम। और शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, सहना हुआ है कब से बेचारा हमारा नाम। शोहरत तलाश में है किसी और की मगर, सहना हुआ है कब से बेचारा हमारा नाम। वैसे मुलाहजा कीजिए कि तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, तुमको पुकारते हैं हमें देखते हैं लोग, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम, जैसे कि एक ही हो तुम्हारा हमारा नाम। और शह पर खामोश रह के ये हमने किया कमाल, शह पर खामोश रह के ये हमने किया कमाल, जीता कभी किसी से नहारा हमारा नाम, जीता कभी किसी से नहारा हमारा नाम। और ये सिलसिले की आखिरी गजल पेश कर रहा हूं, मुलाहजा कीजिए इसका मतलब हाजिर है। बहर उनवान आसानी से बातें करते रहते हैं, बहर उनवान आसानी से बातें करते रहते हैं, हम अपने घर की वीरानी से बातें करते रहते हैं, हम अपने घर की वीरानी से बातें करते रहते हैं। और शेर मुलाहजा कीजिए कि जो वो तस्वीर हमको एक दीवाना समझती है, जो वो तस्वीर हमको एक दीवाना समझती है, सो हम भी एक दीवानी से बातें करते रहते हैं, सो हम भी एक दीवानी से बातें करते रहते हैं। और ये शेर है कि हवा के रुख पे चलने से तो कासिर हैं, यही सच है, हवा के रुख पे चलने से तो कासिर हैं, यही सच है, मगर हम रेत में पानी से बातें करते रहते हैं, मगर हम रेत में पानी से बातें करते रहते हैं। वो हमसे अपनी घबराहट छुपा लेते हैं लेकिन हम, वो हमसे अपनी घबराहट छुपा लेते हैं लेकिन हम, पसीने और पेशानी से बातें करते रहते हैं, पसीने और पेशानी से बातें करते रहते हैं। और ये मक्ता इस गजल का है, हमें तन्हाई खामोशी के ताने देती है शह पर, हमें तन्हाई खामोशी के ताने देती है शह पर, हम अपनी बज़्मे इमकानी से बातें करते रहते हैं, हम अपनी बज़्मे इमकानी से बातें करते रहते हैं। बहर उनवान आसानी से बातें करते रहते हैं, हम अपने घर की वीरानी से बातें करते रहते हैं।
1: तो दोस्तों, कलाम शायर के तहत अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर शहपर रसूल से उनका कलाम। बहुत आसान से लफ्जों में, बहुत मुख्तसर की रदीफ में मुकम्मल बातें कह देना शहपर रसूल साहब की इंफरादियत है। दोस्तों, कहते हैं कि अफसाने के किरदार हमारी जिंदगी के किरदार होते हैं, यानी उस समाज के किरदार होते हैं जिसमें हम और आप रहते हैं, लेकिन एक आम आदमी उन किरदारों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, हमारी जिंदगी को एक नया रुख देते हैं, बल्कि ऐसे भी किरदार होते हैं जो फरामोश किए हुए होते हैं, जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, लेकिन एक कलमकार, एक अफसाना निगार उन किरदारों को अपने कलम के जरिए जिंदा और जावेद कर देता है। अफसाने की खास बात यह है कि मुख्तसर तौर पर कही जाने वाली वो कहानी है जिसके लिए तभी वक्तों का इंतजार होता था, यानी एक जमाना था जब हम तभी कहानी सुनते थे। लेकिन इंसानी तरक्की के साथ साथ सबसे उनका शय जो है वो होता गया वक्त, यानी आज किसी के पास वक्त नहीं है कि वो तवील कहानियां सुने, इसलिए अफसाना वजूद में आया और इसने बहुत जल्द मकबूल आम सिंफ की सूरत इख्तियार कर ली। तो बहरहाल, एक तमीज तमीद के बजाय मैं अपनी तमीज यही मुख्तसर करता हूं और अब सुनते हैं

0: रमजान फरली से उनका ये अफसाना।
1: चारा,
0: पापा कोई कहानी सुनाइए ना। मेरे दोनों बच्चे करीब आकर बैठ गए। कैसी कहानी? ऐसी कहानी जिसमें खूब सारे जानवर हो, शेर हो, भेड़िया हो, चीते हो और थ्रिल हो। ठीक है, आज मैं ऐसी ही कहानी सुनाता हूं। किसी जंगल में बहुत सारे जानवर थे, उनमें भेड़ें भी थी। भेड़ों के रेवड़ जंगल में चारों तरफ जगह जगह बिखरे पड़े थे। भेड़ों को जंगल के कुछ जानवर पसंद नहीं करते थे और उनके खिलाफ अपने दिल में मैल रखते थे, उनसे नफरत करते थे। पसंद न करने की कई वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि भेड़ें बच्चे बहुत पैदा करती थी और जंगल में जगह जगह उनके रेवड़ों के फैले रहने से दूसरे जानवरों को कूदने, फांदने और भागने दौड़ने में रुकावट पैदा होती थी। भेड़ों का रहन सहन और खाने पीने का तरीका दूसरे जानवरों से अलग था। नफरत की एक वजह यह भी थी। एक और वजह यह थी कि जंगल का राजा शेर भेड़ों पर मेहरबान था। ये और बात थी कि शेर की मेहरबानियां सिर्फ उन चंद भेड़ों तक ही महदूद थीं जिनके बाल ज्यादा घने और सफेद थे। भेड़ों की बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी थी जिनके बदन पर बाल थे ही नहीं, और जिन पर थे भी तो काफी छिद्रे और नुचे खुचे थे और उनके पेटों में गड्ढे भी थे। गड्ढे इसलिए थे कि उन्हें पेट भर चारा नहीं मिलता था और चारा न मिलने से उनके पेट अंदर तक धस गए थे और धसे हुए खाली पेट गड्ढों की तरह दिखाई देते थे। उन्हें चारा इसलिए नहीं मिलता था कि जंगल की बहुत सी चरागाहों में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। भेड़ों से नफरत करने वाले जानवर शेर से भी जलते थे। शेर से जलने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि शेर भेड़ों पर मेहरबान था, बल्कि असल वजह यह थी कि शेर जंगल का ख्याल कम और अपना ज्यादा करता था। उसकी मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो जंगल की हरेक चीज पर सिर्फ अपना हक समझता था। अगर वो किसी जानवर को अपना शिकार बनाता तो उसे अपना पैदाइशी हक समझता। वो जब चाहता दहाड़ता और अपनी दहाड़ से जंगल के कोने कोने में दहशत फैला देता, मगर किसी दूसरे जानवर की गुर्राहट भी उसे पसंद नहीं थी। जब भी कोई जानवर जरा भी ऊंची आवाज में बोलता तो उसकी मोछें तन जाती, गुस्से से उसका मुंह फैल जाता और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आते। शेर से दुश्मनी रखने वाले जानवर हमेशा शेर से बदला लेने और उसको नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे, मगर कामयाबी न मिलने पर वो अपना गुस्सा भेड़ों पर उतारते थे। कभी भेड़ों के बच्चे पकड़ ले जाते, कभी बूढ़ी भेड़ों को मार गिराते, कभी मादा भेड़ों के थनों को भंभोर डालते और कभी कभी रेवड़ों पर हल्ला बोलकर उन्हें इतना दौड़ाते कि बहुत सी भेड़ें आपस में टकरा टकरा कर कुचल जाती। शेर से उनकी दुश्मनी बढ़ती गई और यहां तक जा पहुंची कि उन्होंने एक दिन शेर के खिलाफ बहुत सारे जानवरों को जमा कर लिया। उनमें से एक ने अपनी गर्दन उठाकर भीड़ को मुखातिब किया और नहायत ही असरदार और गुस्से से भरी आवाज में कहा, साथियों, शेर की मनमानी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, हमें इसके खिलाफ मिलजुल कर कुछ करना चाहिए। यूं भी इस जंगल पर उसको राज करते हुए काफी अरसा हो चुका है, अब किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। फिर ये हुआ कि आपस में राय मशवरा करके उनमें से कुछ जानवर शेर के पास गए और बहुत ही गंभीर लहजे में बोले, माफ कीजिएगा, हमें आप पर भरोसा नहीं रहा, अब हम अपना राजा किसी और को बनाना चाहते हैं। शेर ने बहुत ही जब्त और धीरज के साथ उनकी बात सुनी और एक एक को घूरते हुए पूछा, क्या ये जंगल के सभी जानवरों की राय है? शेर के इस सवाल पर उनमें से कुछ तो सहम कर खामोश हो गए, मगर कुछ जानवरों ने जोर देकर जवाब दिया, हाँ, जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कि उनका राजा किसी दूसरे को बनाया जाए। उनका जवाब सुनकर शेर बड़ी नरमी से इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मगर मेरी जानकारी के मुताबिक सभी जानवर ऐसा नहीं चाहते। फिर भी मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि आप अपना राजा फिर से चुन लीजिए। शर्त सिर्फ यह है कि मैदान में मैं भी उतरूंगा। जानवरों ने शेर की शर्त बखुशी मान ली। अब तय ये करना था कि शेर के मुकाबिल मैदान में उतारा किसे जाए। पूछताछ करने और टोल लेने पर पता चला कि यूं तो जंगल का हर एक जानवर राजा बनना चाहता था, मगर बाघ, भेड़िया, तेंदुआ और भालू अपने को इस ओहदे का हकदार समझते थे। एक साथ ये चारों तो राजा बन नहीं सकते थे, इसलिए फैसला ये हुआ कि चारों ही मैदान में उतरे। जो जीत जाएगा उसे जंगल का राजा बना दिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू चारों जंगल में घूम घूम कर तमाम छोटे बड़े जानवरों से मिलने लगे। ये चारों उम्मीदवार बारी बारी से भेड़ों के पास भी पहुंचे और अपने अपने दांतों को छुपाते हुए बहुत ही मीठी आवाज में बोले, हम अगर राजा हो गए तो तुम्हारे लिए जंगल की सारी चरागाहें खोल देंगे। कोई रोक टोक नहीं होगी। हमारे राज में कोई तुम पर हमला नहीं करेगा। तुम्हारा एक बच्चा भी नहीं मारा जाएगा। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर भेड़ों के रेवड़ से कुछ भेड़ें गर्दन उचका उचका कर उनकी तरफ देखने लगी। उधर शेर ने भी जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाकर उनसे मिलना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने ज्यादा घने और सफेद बालों वाली भेड़ों को भी अपने कछार में बुलाया और न जाने उनके कानों में क्या कहा कि जब वो कछार से बाहर निकली तो उनकी आंखें हिरनों की तरह चमक रही थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी सी वादी में जमा हुए। राजा बनने की शदीद ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवार शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और भालू पांचों जानवरों के हुजूम से हटकर पांच किनारों पर जा खड़े हुए। जंगल के ढिंडोरची ने चीख चीख कर भीड़ को मुखातिब किया, सुनो सुनो, ऐ जंगल के समझदार और होशियार बासियों, सुनो, तुम्हारे होने वाले राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं। इन्हें देखो, सोचो और अपनी अपनी पसंद के राजा के खेमे की तरफ बढ़ जाओ। ढिंडोरची का ऐलान सुनते ही जानवर अपने झुंड से निकलकर पांचों उम्मीदवारों के पास पहुंचने लगे। ज्यादा सफेद और घने बालों वाली भेड़ें दूर दूर तक फैले हुए अपने रेवड़ से निकलकर शेर की तरफ बढ़ी। बस फिर क्या था, उनके पीछे पीछे भेड़ों का सारा रेवड़ भी शेर के पास पहुंच गया। शाम तक जानवरों का सारा हुजूम पांच हिस्सों में बढ़ चुका था। एक एक हिस्से की गिनती शुरू हुई। शेर के पास जमा हुए जानवरों की तादाद सबसे ज्यादा निकली। शेर जीत गया और फिर से जंगल का राजा बन बैठा। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और भालू अपनी हार से बहुत दुखी हुए और काफी शर्मिंदा भी। उन सब ने अपनी हार का जिम्मेदार भेड़ों को ठहराया। बाघ और भेड़िया तुम्हारे गुस्से के भेड़ों के रेवड़ पर जगह जगह टूट पड़े। जख्मी भेड़ें बदहवास होकर गिरती पड़ती, लंगड़ाती, रोती पीटती शेर के पास पहुंची। शेर ने उनका रोना धोना सुनकर दहाड़ते हुए ललकारा, खबरदार, अब अगर किसी ने इन पर हमला किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। मगर शेर की दहाड़ और धमकी के बावजूद हमले नहीं रुके। कुछ दिनों बाद तेंदुआ और भालू दोनों एक साथ मिलकर भेड़ों के पास आए और बहुत ही एतमाद और भरोसे के साथ प्यार भरी आवाज में हमदर्दी जताते हुए बोले, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे वास्ते जंगल की दूसरी चरागाहें भी खुलवा देंगे। तेंदुआ और भालू की नर्म मुलायम बातें सुनकर भेड़ें जुगाली करने लगी, जैसे उनके सूखे मेदों से बहुत सारी हरी मुलायम पत्तियां निकलकर उनके मुंह में आ गई हो। उनके सर हिलने लगे, दुमे भी हिलने लगी और उनके पांव भी आगे पीछे होने लगे। گرگٹوں کے ذریعے شیر تک جب یہ خبر پہنچی تو گھبرا کر فوراً اس نے اپنی سلاحکار لومڑی کو طلب کیا. لومڑی نے اپنی آنکھیں نچا نچا کر خبر کی گمبھیرتا سے شیر کو آگاہ کیا. شیر نے بنا دیر کیے اپنے پالتو درندے جنگل کے کونے کونے میں دوڑا دیے. دیکھتے ہی دیکھتے باغ اور بھیڑیے کے بہت سارے حمایتی بندی بنا کر گفاؤں میں قید کر دیے گئے. باغ اور بھیڑیے شیر کی اس چالبازی پر اس درجہ

0: आउट है कि वो शेर को उसकी इस हरकत का मजा चखाने के लिए आपस में मिल गए। उन्होंने बहला फुसलाकर गीदड़, सांप और बंदरों को भी अपने साथ मिला लिया। शेर से मुकाबले की तैयारियां शुरू हो गई। सब ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। गीदड़ों की बाकायदा बैठकें होने लगी। हुआ हुआ निकलने लगा। दूर दराज के गीदड़ भी इस कोरस में शामिल हो गए। गीदड़ों ने अपनी भक्तियों से भेड़ों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। सांप अपने बिलों से निकलकर भेड़ों के सामने लहरा लहराकर अपना फन फैलाने लगे। उनकी फुंकारें भेड़ों के कानों में घुसकर उनके दिलों को दहलाने लगी। बंदर भेड़ों के रेवड़ों के आसपास के पेड़ों पर चढ़कर दांत खिचकिचाने लगे। कलाबाजियां खाने के बहाने भेड़ों की पीठ पर धम धम कूदने लगे। बाघ और भालुओं ने अपने हमले तेज कर दिए। भेड़ें दाएं बाएं अंदर बाहर हर तरफ से मार खाने लगीं। जगह जगह उनके बच्चे कुचले और डसे जाने लगे। बूढ़ी भेड़ें अपनी जानों से हाथ धोने लगी। नौजवान भेड़ें लगाने लगी और मादा भेड़ें अपने थनों की नोच कसोट के दर्द से कराहने लगी। तंग आकर बहुत सारी भेड़ें शेर के कछार में पहुंची। शेर से रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया, खून रिसते हुए जख्म दिखाए और गिड़गिड़ाकर बोली, हमसे अब और नहीं सहा जाता, हमारी हालत पर तरस खाइए और किसी तरह इन दरिंदों से हमें बचाइए। भेड़ों का हाल देखकर शेर ने गुर्राते हुए अपने शेरों को हुक्म दिया कि वह हमला रोकने का जतन करें, मगर इसके बावजूद बाघ भेड़िए और उनके साथियों के हमले नहीं रुके। भेड़े शेर से नाउमीद और मायूस होकर रहमतलब निगाहों से दूसरे जानवरों की तरफ देखने लगी। ज्यादा घने और सफेद बालों वाली भेड़े भी न जाने क्यों इस बार उनके साथ हो गईं। ये देखकर कि भेड़ें उनकी तरफ देखने लगी हैं, बाघ और उसके साथियों ने हमले रोक दिए। अब भेड़ें बेखौफ होकर इत्मीनान की सांस लेने लगी। उनके जख्म भरने लगे, मगर कुछ दिनों के बाद अचानक एक रोज रात के सन्नाटे में उन पर हमला हो गया। इस हमले में बहुत सारी भेड़ें मर गईं और हजारों की तादाद में बुरी तरह जख्मी हो गईं। भेड़ों के रेवड़ में कोहराम मच गया। उनकी चीहो पुकार से सारा जंगल दहल उठा। उनके दुख में शरीक होने और उनसे हमदर्दी जताने जंगल के कोने कोने से जानवर पहुंचने लगे। अपना सारा काम छोड़कर जंगल का राजा शेर भी उनके पास पहुंचा। भेड़ों की हालत देखते ही शेर की आंखों से आंसू जारी हो गए। रो रो कर उसने भेड़ों का हाल पूछा, आगे बढ़कर उनके जख्मों पर मरहम रखा, हमदर्दी के बोल बोलकर ढारस बंधाई, हर तरह का दिलासा दिया और अपने कारिंदों से कहकर उनके आगे हरे नर्म चारे के ढेर लगवा दिए। सिर्फ यही नहीं कि शेर ने भेड़ों के गम में आंसू बहाए, उनके लिए मरहम पट्टी और चारा पानी का बंदोबस्त किया, बल्कि उनकी तसल्ली के लिए बहुत से गीदड़, बंदर, सांप और कुछ बाघ भालू और भेड़िए पकड़कर बंद भी कर दिए। शेर के आंसुओं और उसकी चारा गरी के जज्बे से भेड़ें फिर पसीज गई।
1: सामने भी आप डॉक्टर गजनफर अली से उनका ये अफसाना सुन रहे थे चारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए कुछ बातें हो जाए मौसीकी रेज यानी मौसीकी से भरी हुई कुछ शायरी का लुत्फ लिया जाए और गजल सुनी जाए जगजीत सिंह से।

0: जी सिंसियर भी आप समाप्त फरमा रहे थे ये गजल। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे। पहली पेशकश मेरे हम सफर फिल्म से है, आवाज लता मंगेशकर की है।

इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नश्र होंगी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम, महफूज और मजबूत तवानाई की मार्केट्स के लिए पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। भारत और अमरीका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कानकनी और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीज़े हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर वन में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में खत्म हो गई। वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशी मित्सो मोटेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले माशरे वाले मुल्क हैं जो खुशहाली के फरोग की खातिर इख्तरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉ जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के ममालिक ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है। मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया और क्वाड के चार मुल्कों ने खासतौर पर भारत बहरुल काहिल खित्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार उसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक नेटवर्क, जेर समुन्दर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने की सरगर्मियां शामिल हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने उन शोबों से मुतालिक जिनमें वो इश्तराक कर सकते हैं मजीद पेशरफ्त की है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा आज सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। उधर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से पहले ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के तीन रोजा दौरे पर गैंगटॉक पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर सीनियर शख्सियतों ने किया। सदर जमहूरी अपने दौरे में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों का इफ्तिताह करेंगी, जिसका मकसद रियासत में महफूज और काबिल रसाई ट्रांसपोर्ट सहूलियात में बेहतरी लाना है। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया नाथुला दर्रा जाएंगी और गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन वो सिक्किम पुलिस को भारत के सदर जमहूरिया के पुलिस कलर मेडल से नवाजेंगी। इसके साथ ही सिक्किम मुल्क में ऐसी 15वीं रियासत बन जाएगी जिसे ये बावकार एजाज हासिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाक बैन अलावी सरहद पर सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस इलाके में सरहदी हिफाजती दस्ते के अमले से बातचीत की और मुल्क की सरहदों की हिफाजत में खुद को वक्फ करने देने पर उनकी तारीफ की। वजीर दाखिला ने अपने दौरे में रियासत के सरहदी खितों के लिए दरख्शा गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले को वक्फ किया। इस पहल के तहत तालीम, सड़कों, बिजली और रोजगार के मौकों समेत बुनियादी ढांचे और लाजमी सहूलियात को बैन अलावी सरहद पर वाक गांवों में इस्तेहकाम हासिल होगा। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। वजीर आला भजननाथ शर्मा और कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल परवीन कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबरा तपन देका और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज देर गए जनाब अमित शाह बीकानेर में बीएसएफ सदर दफ्तर में सरहदी हिफाजत के बारे में एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला, राजस्थान सरकार और बीएसएफ के सीनियर अफसरान भी तालमेल से मुतालिक इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक मुश्तरका बचाव टीम के जरिए गुलमर्ग में केबल कार में फंसे हुए 300 सयाहों को कामयाबी के साथ बचाया जाना भारत की आफात से निमटने वाली एजेंसियों की पेशावराना सलाहियत, जरूरत और इश्तराक का इजहार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने चैलेंजों से पुर कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एचडीआरएफ पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम की कोशिशों को सराहा है। भारत और अमेरिका ने आज एक दो तरफा फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासर की सप्लाई, कंकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना है। ये अहम मुआहिदा नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक दूसरे को सौंपा। वजीर खारजा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क से मुतनव सप्लाई चेन को इस्तेकाम मिलेगा, दोनों मुल्कों को माली मामला से मुतालिक ताउन में मदद मिलेगी और अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासर के मौसर बंदोबस्त में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वह इस बात की हिमायत नहीं करते कि पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अब्राहम मुआहिदों में शामिल हो। उन्होंने इसराइल का इजहार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान अमन मुजाकरात में शामिल मुल्कों पर जोर दिए जाने के बाद किया है कि वह अब्राहम मुआहिदों में शामिल हों जिनमें इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान सिफारती, इक्तसादी और सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन पहले से ही इस मुआहिदे में शामिल हैं। इसराइल की फौज ने लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में कई हमले किए हैं। इससे कबल इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि उनका मुल्क हिजबुल्ला ग्रुप पर अपने हमले तेज करेगा। इसराइल की दफाई अफवाज ने कहा है कि उसने लबनान के मशरक और कुश्त दीगर इलाकों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कई मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन ने हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का वर्द करते हुए मैदान अरफात पहुंचे, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जा रहा है। ये आजमीन वहां तौबा व इस्तफार में दिन गुजार रहे हैं। आजमीन मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलफा रवाना होने से पहले जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हजाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। जनूब मगरबी मानसून के आज या कल केरलम पहुंचने के इम्कान है। मौसमियात के महकमे की जानिब से मानसून की आमद के बारे में बाजबता ऐलान मुतवक्के है। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरलम में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलप्पुज़ा जिलों में आज कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केरलम में जनूब मगरबी मानसून की आमद का बाजबता तौर पर ऐलान तब किया जाएगा जब केरलम और लक्षद्वीप में मानसून पर नजर रखने वाले 14 स्टेशनों से कम 60% 10 मई के बाद लगातार दो दिन तक कम से कम 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करें। कई जनूबी खित्तों में मुसलसल बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में लू से कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि बहुत से मकामात पर दर्जे हरारत 43 से 47 डिग्री के दरमियान चल रहा है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टर जनरल ने कांगो और युगांडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैनुल अक्वामी तशवीश देश की सेहत आमा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि युगांडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें उसूल करने को यकीनी बनाना होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम, महफूज और मजबूत तवानाई की मार्केट्स के लिए पुख्ता अजम का इरादा किया है। भारत और अमरीका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासर की सप्लाई, कंकनी और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीज हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। रात के 9:15 पर हम फिर तीसरी मजलिस के साथ हाजिर होंगे।

0: बहुत बढ़िया,
1: बहुत ही सुंदर तालों में बहन जी ने सुनाए, बहुत चंगा लगे। मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ सुनावा।
2: बिल्कुल जी,
1: तो कोशिश करता पा।
2: स्वागत।
1: अजकल जिन्हे हालात थे पे साडे मुल्क विच, कुछ लोग मुल्क विच रह के साडे देश दा खानदान लेकिन मगर किसी होर दे खानदान विदेश दे
2: जी।
1: ते बारे च मैं थोड़ा कोशिश कीती है। जिथा दा खांदे हो, जिथा दा खांदे हो, खादा पिता हराम ना कर। जिथा दा खांदे हो, जिथा खांदे हो, खादा पिता हराम न कर। जिथा पैरांदे हो, जिथा पैरांदे हो, उस झाक कतलेआम ना कर। जिथा पैरांदे हो, जिथा

0: बदल तू अमला को, जेकर बदल तो सकदा है।
1: सही बात, राइट।
0: बदल तो अमला को, जेकर बदल तो सकदा है। जिथा दा खांदे हो, कदी तू सोची मेरा देश ए महान क्यों है। कदी तू सोची मेरा

तू प्रेम करसी तमिल सी एदा गुणा करके, तू प्रेम करसी तमिल सी एदा गुणा करके, पले से नफरत तरावना पोसी हा डर डर के, पले से नफरत तरावना पोसी हा डर डर के, प्रमाद आख दई प्रमाद आख दई इतनी जे गल तू मन वी गिन, पछतावना पोसीहा जीवना पोसीहा मर मर के, पछतावना पोसिया जीवना पोसिया।

0: शुक्रिया जी। मैं दोबारा इस कड़ी विच अपने छाबरा साहब को दोबारा निवेदन करेगा कि अपने एक और कविता पेश करो सुंदर लाल जी छाबड़ा
1: जी। हूं मैं तुम जी कविता सुना देना पाया। हूं कविता का शीर्षक है हूं मैं ना लिखसा। बहु सोचिया है हूं मैं ना लिखसा। वत सोचिया है ना लिखसा ते क्या करे सा। वत सोचिया है ना लिखसा ते क्या करे सा। गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। गल्ला जो कीतिया हन असा हां दी हां विच रहसन ते क्या करे सा। मैं ते तू तू ते मैं मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। मैं ते तू तू ते मैं केड़े केड़े सपने डिठे हन। कड़ी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताई कीती है। कड़ी दरिया किनारे बै पानी विच पैर घत छप छप छप छप ताई कीती है। ता माए पानी दी बुक्का भर तेड़े ते पाती है। ता माए पानी दी बुक्का भर तेड़े ते पाती है। खेत मुडेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। खेत मुडेरा ते बैके सुपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है ते हेक सिलाई मेरी है।
2: बहुत सोना वाह।
1: खेत मुडेरा ते बैके सपने असा बुनन हन। हेक सिलाई तेरी है ते हेक सिलाई मेरी है।
3: क्या बात।
1: ओ सोना सोना बाल है अपना। ओ सोना सोना बाल है अपना। निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। ओ सोना सोना बाल है अपना। निके निके पैर वधेंदा ते हाथ चाके भजदा आंदा। तू ते मैं ते तू तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिंदे हासे। तू ते मैं ते तू झप्पी पाके हाना लाके कोल बिलाके खिंदे हासे। ते हुण कित्था गई ओ तेरी खिल ते हुण कित्था गई ओ खिल ओ झप्पी ओ सपने ते ओ तेरी सिलाई। ते कित्था गई हुण ओ तेरी खिल ओ झप्पी ओ सपने ओ तेरी सिलाई। मैं बैके हुआ मुंडेरा ते मैं बैके हुआ मुंडेरा ते ते भर पानी दी बुक्का हाथ सिलाई फाड़ के अपनी सोचदा हां। मैं बैके हूं मुंडेरा ते

0: बहुत जी बहुत बिल्कुल असाते आखण तैयार हूं असा भी तुम्हारे बहुत खूब गाता है आखे तो सर
1: बहुत बढ़िया बहन जी बहुत बढ़िया
2: शुक्रिया अच्छा शुक्रिया आप सब बहुत बहुत शुक्रिया
1: वेल और लास्ट बीच में भी अपनी कविता
2: जी जी
0: हाँ जी
2: जरूर
1: मेरे जब दिल के बलबले उठते पैन
2: जी जी
1: हाँ मैं कविता मेरी पेश है बेबिया दे जिंदे बिना सदा गुजारा है कोनी
0: स्वागत
1: किसी का भी गुजारा कोई नहीं
0: जी हाँ
1: मैं तो कहना इस कविता दे अगर अमल करन लोग तो सुखी थी रसन जो मैं आखना चाहना
0: बिल्कुल
1: तो पेश है कविता जाया दे चलना ही समर्पित है तो मैं सबको यो गल करे सा

उसी समात फरमारे सी सराय की प्रोग्राम झोक माहिती FM9 103.6 MHz ते आकाशवाणी दाए अमृतसर की तरह तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिंदी पंजाबी सेवा शाम दे 5:30 बज चुके ने ते हुण साडी देश पंजाब मजलिस दा आगाज हुंदा है।

पखांडी थी, कथा लोग सुन रहे थे, हजामन जी ये कहानी सुन रही थी। ते होना देश पंजाब मजलिस से विच अगला सिलसिला थोड़े लिए तो हड़ा ही पसंदीदा प्रोग्राम नजराना। नजराना दी पहली पेशकश की थी आवाज़ जो

नजराना प्रोग्राम दी अगली पेशकश थोड़े लिए दीप टिलो ते जैस्मीन जसी दागाया की ते फरमाइश थोड़ी सर्दी मलोतों कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल जिला मुक्तसर पिंड मोहला तो आए नेपाल गिल गुरदयाल गिल साधु गिल दिशा मोहला दर्शन बराड़ ते मलकीत कुड़ियाला यानी जी रामनाथ अदापुर कॉलोनिया जिला श्री फतेहगढ़ साहब डाकखाना चनारथल कला तो रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह सहज प्रीत कौर चुकला बाजार सरवाना तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल हसमुख जिंदल महस गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी ते गुरमन्नत पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो बाबा त्रिलोक सिंह शिवजोत सिंह गुर सिमरन राजदीप प्रीत ते सारा परिवार जी तेना दे नाल इना दे दोस्त बलतेज सिंह कुड़ियाना भी ने ते लो जी थोड़ी सब दी फरमाइश ते पेश करें जी दीप ढिल्लों ते जसमीन जसी दा गाया एक गीत।

Thank you.

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया देश पराया। बाल साहब देखो हरा चारा आपां सारे देखदे आं कि जिमीदारा जिहड़ा है बिना हरा चारा यह औखा काम है, क्योंकि जिमीदारे दे विच जे तुहाडे कोल अपना कोई डंगर बच्चे ही नहीं है तो फिर कहदा जिमीदारा।
1: सही गल है
0: कि नहीं, क्योंकि मुढ़ कदीमी साडा चाहे आपां खेती मशीनरी जिन्नी मर्जी आ गई है पर हाले भी पशुआं दा जिहड़ा किता धंधा है लवेरे पालण दा इह साडे लई इक बहुत वड्डी धिर है। अज जो कि फसलां दा देखदे आपां नुकसान हो जांदा है ते इही चीज आके मूहरे खड़दी है।
1: सही गल है
0: ना, सानू बचाउंदे है माड़े वक्त तों।
1: बिलकुल,
0: सो इस करके इन्हां दे विच हरे चारे दा सारा साल आपां प्रबंध करना है ते क्योंकि कई समय आउंदे ग्लट भी आ जांदा है, कई समय अलग अलग तरह दे समय आउंदे है। मनप्रीत जैदका इन्हां ने जानकारियां साझिया कीतियां सारा साल हरे चारे दी उपलब्धता दे बाबत, इह आपां तुहाडे नाल साझिया करदे
1: हां। सुणा दिओ जी।
2: किसान वीरो, हरा चारा अते वण दाणा दुधारू पशुआं दी खुराक दे मुख अंश हुंदे हन, जिन्हां ते दुध उत्पादन दा लगभग 65-70% खर्चा आउंदा है। हरे चारे विच खुराकी तत् जिवें कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, निशाचता अते लघु तत् काफी मात्रा विच हुंदे हन, जो पशुआं दे वाधे, विकास, सेहत अते दुध उत्पादन विच बहुत सहाई आउंदे हन। हरे चारे विचले खुराकी तत् वण दाणे विचले खुराकी तत्तां नालों सस्ते ही नहीं सगो पचदे भी छेती हन। हरे चारे नरम अते कूले होण कारण इन्हां नूं पशु पसंद भी ज्यादा करदे हन। किसान वीरो, पशुआं दी सेहत नूं ठीक रखण लई अते इन्हां तों बहुता अते सस्ता दुध लैण लई सारा साल 40-50 किलो हरा चारा प्रति पशु प्रति दिन दे हिसाब नाल देना चाहीदा है। बाकी इस तों अलावा जिहड़े अपने जानवर हुंदे आ मौसम दे अनुसार हरे चारे दी ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ

0: करानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविय ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविय ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉ. मांडविय ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।
1: शीतल बहन, इस कार्यक्रम में हम बातचीत सुनवाएंगे, योजना के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ मनोरंजन तो होगा ही, तो लेकिन सबसे पहले हम बातचीत सुनवाते हैं सहकारी कृषि और किसानों की आय में वृद्धि। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव उपाध्यक्ष कृभको से हैं, यानी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
0: इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भाटी।
2: किसान बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे कृषि और ग्रामीण विकास दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की की तरफ जा सकते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी सहकारिता के माध्यम से किसानों के विकास के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन और पूरे देश में किस तरह सहकारिता से काम किया जा सकता है, किस तरह किसान और गांव के युवाओं को तरक्की मिल सकती है, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं सहकारिता के स्तंभ

0: डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी और भाई विश्व स्तर की बात करें तो के अध्यक्ष यानी कि एशिया पैसिफिक के भी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है सहकारिता को लेकर, तो किस तरह ग्रामीण और कृषि विकास किया जा सकता
1: है? हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। अगर हमारे किसान के खेत पर अच्छा उत्पादन होगा, निश्चित रूप से किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। वो किसान जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी इस देश को हम आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए देश दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें अपना स्थान रख सकते हैं। काफी लंबे समय से मैं समझता हूं कि सहकारी क्षेत्र ने कृषि के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज किसान जो खेती करता है, किसान को अच्छा बीज, अच्छा खाद समय से सही कीमत में सही मात्रा में उपलब्ध कराने वाले के लिए हमारा सहकारी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बहुत बड़ा शेयर जो है सहकारी क्षेत्र के पास है और वो समय से किसानों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसके साथ साथ हमारी जो अन्य संस्थाएं हैं, जैसे हमारा सहकारी बीज सहकारी संस्था है जो नेशनल लेवल पर अभी हम लोगों ने उसको इनिशिएट किया है, उसके माध्यम से पूरे देश में किसानों को हर फसल का अच्छा बीज उपलब्ध कराने के लिए जहां बिल्डर सीड यूनिवर्सिटीज में पूरा साइंटिस्ट जो है अन्वेषण करके और उसको फाउंडेशन सीड तैयार करके और इन संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में जो अच्छे खेती करने वाले कृषक उन्हीं के माध्यम से बीज तैयारी कराने का काम करके और फिर उसको सर्टिफाइड करके पूरे देश के किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। आज उत्पादन में बीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि अच्छा बीज होगा तभी खेत का अच्छा उत्पादन होगा। हम लोग प्रयास करते हैं कि किसान को जो खाद है, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो या एसएसपी है, जिंक है या कोई भी फर्टिलाइजर जो किसान को आवश्यकता है, हम सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने का काम लगातार कर रहे हैं। हमारे किसानों से ये भी अनुरोध रहता है कि संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करके ही अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अगर संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करके साथ में बायो फर्टिलाइजर है, कंपोस्ट है या और जो सहयोगी खाद किसानों को उपलब्ध कराई जा सकती है वो उपलब्ध करा के और ये प्रयास रहता है कि किसान जहां अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सके, उसकी लागत भी कम रहे और जो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति है वो भी कम ना हो, इसके लिए भी हम लगातार किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से समय समय पर कृषि गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं, किसान को असुविधाओं को देखते हुए उनको प्रदेश सरकार या देश की सरकार के माध्यम से जो उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर किसान बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। क्योंकि आज का किसान के खेत में जब अच्छा उत्पादन होगा तभी किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एक तरफ उत्पादन है, दूसरी तरफ विपणन है। जो किसान के खेत में अच्छा उत्पादन होता है तो बाजार में किसान को अच्छी कीमत मिले या भारत सरकार के द्वारा जो तय की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसान को उपलब्ध हो, उसके लिए भी हमारी तमाम देश की मार्केटिंग की संस्थाएं किसान के उत्पाद को खरीदने का लगातार प्रयास कर रही हैं। हमारा नाफेड है, पूरे देश में किसानों की हर फसल को खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरे देश में जगह जगह अपने क्रय केंद्र खोल करके और किसानों की फसल को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहीं नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन भी इस काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

0: का निर्भर है, जिससे कि किसानों को बाजार में कोई चीटिंग ना कर सके। किसान जब बाजार में जाए, उसकी जो लागत है, उसकी मेहनत है, उसके अनुसार सरकार के द्वारा तय की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी तमाम कृषि से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनके अपने भंडार भी हैं, जो किसानों के उत्पाद को और समय से अच्छी कीमत दिलाने के लिए उनको भंडारण अगर करना है, उसके लिए भी हमारी संस्थाएं आगे आ रही हैं और किसानों को समय पर जहां उनके उत्पाद को भंडारण कर रही हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम कर रही हैं। हमारी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कृषि उत्पाद को हम एक्सपोर्ट भी करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो उत्पादन है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सीधा लाभ किसानों को होगा, उनको अच्छी कीमत मिलेगी। हमारा ये भी प्रयास रहता है सहकारी क्षेत्र का, जो किसान का उत्पादन हो उसको प्रसंस्करण करके या प्रोसेस करके उनको वैल्यू एडिशन करके और हम किसान के इस उत्पाद को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम करें। और लगातार हमारी संस्थाएं सीईएल और क्रिको एग्री बिजनेस रैपिड, ये संस्थाएं उत्पाद को विदेशों में भेजने का काम कर रही हैं, जहां उससे देश की साख बढ़ रही है, वहीं हिंदुस्तान के किसान का उत्पाद जो है काफी लोगों के बीच में फेमस हो रहा है। हम सहकारिता के माध्यम से ये भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमने पहले ही कहा कि एक तरफ संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए, वहीं जो है ऑर्गेनिक खेती का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और ऑर्गेनिक खेती के लिए भी लोगों को जागृत किया जा रहा है, उन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि किसान जो है ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करके और कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। इस तरीके से हम लगातार किसानों की मदद भी कर रहे हैं, किसानों को हम ट्रेंड भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशिक्षित किसान बहुत अच्छी खेती कर सकता है, वहीं कम लागत भी लगा सकता है, वहीं अच्छे मार्केट में बेच भी सकता है। तो इस तरीके से लोगों को अगर जानकारी होगी, लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी, तो निश्चित रूप से किसान अच्छी खेती करेगा, अच्छा उत्पादन करेगा और अच्छी कीमत पे बाजार में बेचेगा, उसे आर्थिक लाभ होगा। और इसके लिए हमारा प्रयास है कि पूरे देश में किसानों को ये महसूस कराया जाए कि सहकारी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरीके से किसानों के लिए समर्पित है और किसानों के हित के लिए काम कर रहा है। इसलिए सहकारी क्षेत्र से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, जहां सहकारी क्षेत्र मजबूत हो वहीं सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसान मजबूत हो, एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना है, देश को मजबूत बनाना है और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में इस देश के सहकारी क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। यही हमारा आज के मौके पर आपसे
1: बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई सहकारिता के माध्यम से जुड़कर आप कृषि में भी ग्रामीण विकास में भी समय अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोता सुन रहे थे सहकारी कृषि और किसानों की आय में वृद्धि, और इसमें बातचीत में हिस्सा लिया था चंद्रपाल सिंह यादव, उपाध्यक्ष हैं क्रिबको से, और इनसे बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी।
3: और शीतल बहन, हम हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना के बारे में
2: जी।
3: और इस योजना के प्रमुख बिंदु और विशेषताएं हैं कि योजना का लक्ष्य है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भूमि के सुधार में, स्वास्थ्य में सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
2: बेसिकली मतलब सामान्य तौर पर इसका जो मेन उद्देश्य है कि कृषि शिक्षा योजना का ग्रामीण युवाओं और किसानों की कृषि से जुड़ी नई तकनीकों, आधुनिक खेती, पशुपालन, जैविक खेती, कृषि व्यवसाय में इनको जानकारी देना, जिसके बाद जो हमारे किसान हैं इससे लाभ पाते हैं। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का परीक्षण, मतलब उसमें ट्रेनिंग दी जाती है उनको, इसके साथ साथ मिट्टी परीक्षण, उर्वरक प्रबंधन, जल संरक्षण की जानकारी दी जाती है।
3: शीतल बहन, जो प्रशिक्षण केंद्र की आपने बात करी कि इस योजना के तहत देश भर में 100 केंद्र स्थापित किए गए हैं, इन केंद्रों के जरिए ग्रामीण स्तर पर कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जाते हैं
2: जी। बिल्कुल, और इसमें क्या होता है किसानों को पशुपालन, डेयरी, बागवानी से भी जुड़ी शिक्षाएं दी जाती है, क्योंकि कई जो किसान भाई हैं खेती के साथ साथ मुर्गी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, बहुत सारी चीजें जिनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और पशुपालन कैसे, दूध से क्या उत्पादन

0: बनते हैं, कैसे डेयरी पहुंचाया जाता है, इन सब की इनको जानकारी देकर, ट्रेनिंग देकर उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता
1: और
0: है।
1: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और ग्राम स्तर पर जैविक खेती से जुड़े कुशल युवाओं और मानव संसाधन को तैयार करना, रोजगार के अवसर देना, कृषि शिक्षा को कृषि आधारित व्यवसायों जैसे डेयरी, बागवानी आदि के साथ जोड़कर ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना भी
0: करना
1: है।
0: जी बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं,
1: सुनवाते हैं हम आपको एक
0: वाजिद अली की
1: एक
0: आवाज
1: किस्सा
0: में।
1: है, गोगा जाहर वीर का किस्सा। वाजिद अली कलाकार हैं, तो सुनते हैं ये किस्सा।

0: तो श्रोता सुन रहे थे ये बाजी दिल की आवाज में किस्सा था गोगा जहाबीर का, और अगली रागिनी भी सुनेंगे वाजिद अली की आवाज में।
1: ओ अल्लाह के निरंजन मेरा भजो ले राम ने, अल्लाह के निरंजन मेरा

0: श्रोता सुन रहे थे वाजिद अली की आवाज में ये रागिनी। और अपने श्रोताओं को बता दें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
1: बिल्कुल शीतल बहन, हम ये बताना चाहते हैं हमारे किसान भाई बहनों की आप बताइए जरूर कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें पहुंचाइए। हमारा पता है कृषि एवं गृह कांश केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली। और आप मेल भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आप मेल करके भी अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी
1: किसान भाई बहनों को हमारी राम राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओ, लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजाई कार्यक्रम। शुरुआत में आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और पंकज उदास को।

श्रोताओं, बड़ा ही अजीब मोहब्बत का ये फसाना है। अभी आपने सुनी प्यारी सी गजल, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज में एक और गजल।

0: श्रोता, इसी के साथ हमारा आज का गजल और कव्वाली का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रगति की समीक्षा बैठक की। खाद्य और उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग भी नए राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा, राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और

0: पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की प्रगति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शीत ऋतु के प्रारंभ से पहले प्रदूषण के स्तर में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन, मजबूत अंतर एजेंसी समन्वय और कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक चार्जिंग, बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में श्री गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी लाने और कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी को महत्वपूर्ण बताते हुए एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक निर्माण तकनीकों और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग पद्धतियों को अपनाने का निर्देश भी दिया है। श्री गडकरी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के प्रमुख राजमार्ग गलियारों में यातायात की गुणवत्ता में सुधार और निर्बाध संपर्क को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजना खंडों पर मॉनसून की तैयारी के लिए अग्रिम उपाय करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काम के अंतिम चरण की समीक्षा की। श्री सिंह ने बताया कि कई साल की देरी के बाद परियोजना अब पूरी होने के करीब है। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर 30 जून तक खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर बन जाने से लोगों को यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान समय पर परियोजना को पूरा करने और राजधानी के लोगों को राहत पहुंचाने पर है।
1: हमने टारगेट 1.25 साल पहले रखा था कि 30 जून 2026 तक इसको पूरा करेंगे। आज हम अपने टारगेट के कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। लाखों गाड़ियां यहां से निकलेंगी, नोएडा, ईस्ट दिल्ली और बाकी पूरे दिल्ली की गाड़ियां यहां पर, उनको जाम से जो हमने समस्या थी उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये अपने आप में इसकी फ्लाईओवर की विशेषता ये है कि अलग से देश में पहली बार ऐसा फ्लाईओवर है जहां पे साइकिल के लिए अलग से लेन बनाई गई है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री और राजधानी के कई लोकसभा सांसद शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि सभी राज्यों के नेताओं से भी इस पुस्तक को पढ़ने और यह समझने का आग्रह किया गया है कि कैसे दो मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम किया।
2: We name अपनापन in our language it means ours. This book I feel is very important that it should be read all budding politicians.
0: वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि यह पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवनी नहीं है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। एकता यात्रा के दौरान श्री मोदी के साथ अपने अनुभव को याद करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर श्री मोदी ने देश के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई थी। जब श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब के अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने अपने राज्यों के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम किया।
3: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप

0: भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है।
1: कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पुस्तक अपनापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान के अनेक अनुभव संकलित हैं और ये अनुभव निश्चित रूप से सभी के लिए जीवन के सबक साबित हो सकते हैं।
2: आज का कार्यक्रम प्रेरणादायक है। अपनापन जो पुस्तक है उसमें जितने भी अनुभव हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो निश्चित रूप से सबके लिए जीवन का एक लक्ष्य हो सकते हैं।
1: दिल्ली सरकार में खाद्य और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए राशन की सीमा को 1,20,000 रूपये से बढ़ाकर 2,50,000 रूपये कर दिया गया है।
3: अब दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड बनाने के लिए जिन लोगों की 2,50,000 तक की आमदन है वह सब लोग भी इस राशन कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। उनके पास भी पीडीएस का राशन उनको भी मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: दिल्ली में कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सवेरे 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। दिल्ली सरकार में विद्युत मंत्री आशीष सूद ने आज बताया कि शहर की बिजली व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है ताकि दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी में बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली का बुनियादी ढांचा अगले 2 साल में और भी मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद बिजली कटौती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां जोरों से चल रही है। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि पुस्तिका सामान्य योग अभ्यासक्रम, प्रमुख पहलों और सार्वजनिक भागीदारी के अवसरों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे योग संगम, हरित योग, योग समावेश, योग पार्क और योग अनप्लग्ड के साथ साथ 21 जून तक की निर्धारित गतिविधियों का विवरण शामिल है। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने राजधानी में जारी भीषण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लू प्रबंधन के लिए किए गए इंतजामों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा दल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं ताकि भीषण गर्मी के कारण नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। डॉक्टर सिंह ने बताया कि अस्पताल ने लू के मामलों के लिए एक व्यापक उपचार तंत्र तैयार किया है, जिसमें अलग आपातकालीन व्यवस्था, आईसीयू की तैयारी, समर्पित बिस्तर, विशेष उपचार कक्ष और मरीजों के लिए चरणबद्ध रिकवरी प्रबंधन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लू से संबंधित विभिन्न स्थितियों के साथ आने वाले मरीजों का प्रबंधन एक सुव्यवस्थित उपचार प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है।
4: जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, मैं लग रहा था कि गर्मी से लोग दिल्ली में परेशान, हीट वेव की समस्या आ सकती है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी समस्या आ सकती है। उसके लिए हमने बेडों के लिए और डॉक्टर सबके लिए व्यवस्था कर रखी थी। उसी नियमित हम चेक करने आए कि दिल्ली की जनता को कोई समस्या न आए।
1: ईद उल जुहा के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिसर में शांति बनाए रखने को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मस्जिदों और ईदगाहों के इमामों, अमन समिति, नागरिक भाईचारा समिति, नगर निगम अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संयुक्त पुलिस उपायुक्त अजीत कुमार सिंघला ने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर करने, स्वच्छता बनाए रखने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की। वहीं सभी हितधारकों ने त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस उपायुक्त राहुल अलवल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1100 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है।
5: हम लोग उसकी अरेंजमेंट का प्लान हो चुका है। हमारे यहाँ टोटल 1100 के हमारे पुलिस कर्मचारियों को हमने ड्यूटी पे लगाया है। उसके अलावा भी 23 कंपनीज का आउटसाइड फोर्स का हमने रिक्वेस्ट की है। इन सभी को हमने डिफरेंट मस्जिदों पे और खासतौर पे जो मेजर और सेंसिटिव मस्जिद है हमने प्वाइंट वाइज डिप्लॉयमेंट की है।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
1: श्री मांडविया ने कहा कि चैंपियनशिप में करीब 75 देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली नगर निगम की उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज प्रीत विहार वार्ड में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपमहापौर ने क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनी और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, नालों की सफाई, पार्कों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और अन्य जन सुविधाओं का जायजा लिया। राजधानी में आज दिन के समय तेज धूप रही और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 26.8 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रगति की समीक्षा बैठक की। खाद्य और उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा अब 2.5 लाख रूपये वार्षिक आय वाले लोग भी नए राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ा दी गई है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

किसी के इश्क में पढ़ने की चाहत है तो किसी की फिर से उजड़ जाने की। देखिए इश्क के तो कई रंग हैं श्रोताओं, लेकिन इस इश्क के रिश्ते की तो मजबूत डोर जो होती है वो आपको और हमको एक छोर से दूसरे छोर तक बांधे रखती है। तो श्रोताओं, हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप ही हम संग जुड़े रहिए, बंधे रहिए और खूबसूरत गीतों का आनंद लेते रहिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा देते हैं इश्क से ही जुड़ा हुआ एक और प्यारा सा नगमा।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। श्रोता, आज मैं सोच रही थी कि आपके लिए किस तरह के गीतों का गुलदस्ता लेकर आऊं, और तभी मन में मेरे ख्याल आया कि आज बात इश्क के हल्के, गहरे, चटक और खिलते रंगों की करते हैं। हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो अलग अलग इश्क के रंग गीतों के माध्यम से हमें मिले, और इन रंग से आप हम भी तो अछूते नहीं है। कोई लाल रंग के इश्क से रंगा है तो कोई इंद्रधनुषी रंग की छटा से।

इश्क जहां दिलों की धड़कन है तो साथ ही साथ स्वरों की सरगम भी। कहते हैं ना कि असल जीना तो आप तभी सीखते हैं जब आप किसी के इश्क में पड़ जाते हैं। जिंदगी के खूबसूरत रंग, खूबसूरत नजारे आप तभी देख पाते हैं तब आप किसी के इश्क में पड़ जाते हैं।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। श्रोता इश्क का मतलब वही समझेगा इस दुनिया में इश्क जिसे हो जाएगा, लेकिन प्यार इश्क मोहब्बत इनका नाम लेने से पहले दिल को भी जरा थाम लीजिएगा।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना श्रोताओं ये प्यारा सा गीत। इश्क किसी के लिए रंग है तो किसी के लिए रोग, लेकिन सच कहूँ ना तो इश्क संजोग है। आप कितना भी इससे बच जाएं, इश्क आपको बचने नहीं देगा। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा देते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से लिया गीत। आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत से सजा ये कार्यक्रम गीतमालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक

0: सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या साधारण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वही आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्रा के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से सफल बनाए और विकसित भारत 2047 की ओर कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए careerairforce.gov.in या ascat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मार्केट्स लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। Headlines. Center constitute high level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandaviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. At Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Bohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration.

0: जरा मेरा सामान आप बस की छत से उतरवा देंगे?
1: अच्छा जी बेटी, आप नीचे उतरिए, मैं आपका सामान उतारता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा,
2: क्या आप ही नहीं डॉक्टर हैं?
0: हाँ हाँ, मैं ही डॉक्टर हूँ। क्या तुम अस्पताल के चौकीदार हो क्या?
2: जी नहीं, मैं अस्पताल में काम नहीं करता, मगर अस्पताल की इमारत के पास ही रहता हूँ। फजल अहमद मेरा नाम है, मगर मुझे सब फजलू कहकर पुकारते हैं। अस्पताल का चौकीदार तो 10 दिन से छुट्टी पर गया है। चाचा जिलानी आने वाले थे, मगर वो बुखार से कमजोर हो गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो आराम करे, आपको बस स्टॉप से मैं ले आऊंगा।
0: अरे ये चाचा जिलानी कौन है?
2: आपके कंपाउंडर साहब है चाचा जिलानी। अच्छा चलिए, आइए डॉक्टर जी साहब।
0: हाँ,
2: आइए, चले आइए।
0: भैया ये रास्ता तो बड़ा चढ़ाई का है,
2: लेकिन ये छोटा रास्ता है, इसलिए मैं आपको इधर से लाया।

0: रहते हैं।
1: अच्छा।
0: और फिर दादी फाते भी पास में ही रहती है।
1: अरे ये दादी फाते कौन है?
0: दादी फाते, अरे बस दिल की बुरी नहीं, जबान की थोड़ी सी कड़वी जरूर है। एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, वो डॉक्टरनियों से बहुत जलती है।
1: अरे क्यों भैया, वो डॉक्टरनियों से क्यों जलती है?
0: खुद दाई है ना, इसीलिए। दावा करती है कि बस्ती के आधे लोग उन्हीं के हाथों पैदा हुए हैं। उनका ख्याल है कि नए जमाने की डॉक्टरनियां आ जाती हैं तो उनके पेट पर लात मारती है। आप बहुत हिम्मत वाली लगती है डॉक्टरनी साहिबा।
1: वो कैसे?
0: क्योंकि इस अस्पताल में 3-4 महीने से ज्यादा कोई डॉक्टर नहीं रुकता। 2 साल में आप यहाँ तीसरी डॉक्टरनी है।
1: लेकिन फजलू, यही नाम बताया था ना?
0: हाँ हाँ।
1: यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं रुकते?
0: यहाँ आसपास पहाड़ियाँ और जंगल बहुत है ना, और इनमें दहशतगर्द छुपे रहते हैं। अक्सर यहाँ फौज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर होता रहता है।
1: अच्छा।
0: इसलिए जो डॉक्टर या डॉक्टरनी यहाँ आते हैं 2-4 महीने में ही ढलकर भाग जाते हैं।
1: फिर तो वाकई खतरनाक जगह है ये।
0: अरे नहीं, बस्ती के लोग डॉक्टरों की बहुत इज्जत करते हैं और दहशतगर्द भी डॉक्टरों को कुछ नहीं कहते। लीजिए, हम पहुंच गए। लेकिन मैं पहले आपको अस्पताल की बजाय आपको उस मकान में ले चलता हूँ जिसमें आपको रहना है, ताकि आप कुछ देर आराम कर सकें। कुछ देर बाद मैं जिलानी चचा को आपके पास भेज दूंगा।
1: हाँ, ये ठीक है। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया कैसा, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
2: डॉक्टरनी साहिबा, मुझे 2 दिन से बहुत खांसी है।
1: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस बस, एक मिनट, आप ये नुस्खा लेके जिलानी चचा से दवा ले लीजिए। हाँ
3: डॉक्टरनी साहिबा, मेरी लड़की को जरा जल्दी देख लीजिए, इसे बहुत तेज बुखार है।
1: कोई बात नहीं, अभी देखती हूँ, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा।
3: जी जी डॉक्टरनी साहिबा, एंटीबायोटिक दवाएं खत्म होने वाली हैं, आज शाम तक मुश्किल से पूरी हो सकेंगी।
1: अच्छा जिलानी चाचा, आप आज लंच के वक्त मुझे उन तमाम दवाओं की लिस्ट बता दें जो खत्म हो रही हैं।
3: जी
1: मैं आज ही हेड ऑफिस को लिस्ट भेज दूंगी और वो सुबह की बस से दवाएं भेज देंगे।
3: जी जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब।
4: लो डॉक्टरनी साहिबा, चाय पी लो।
1: अरे दादी, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, चाय तो मैं खुद बनाने जा रही थी।
4: अरे आज मेरे हाथ की ही बनी पी लो।
1: शुक्रिया दादी। ये शायद कहवा है।
4: हाँ ये कहवा है, हम कश्मीरी लोग यही पीते हैं।
1: दादी तुम तो बहुत नेक दिल हो। फजल तो कह रहा था कि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं आ जाए तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। हा?
4: बुरा तो लगता है, डॉक्टरनी के आने पर लोग मुझे भूल जाते हैं और सब डॉक्टरनी के पीछे दौड़ने लगते हैं। मैं 50 साल से यहाँ दाई का काम कर रही हूँ, इसी मेहनत से मैंने अपने बच्चों को पाला है।
1: आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्र न करें दादी। बच्चे की पैदाइश का जो भी केस आएगा ना, मैं उसे तुम्हारे पास ही ले जाया करूँगी।
4: अच्छा।
1: और उसकी फीस भी तुम्हें ही दिलवाया करूँगी। ये आवाजें कैसी है, कोई त्योहार है क्या, ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं?
4: ये पटाखों की आवाजें नहीं है, गोलियां चलने की आवाजें हैं।
1: ओह, क्या दहशतगर्दों ने बस्ती पर हमला कर दिया है?
4: क्या पता, यहाँ तो रात दिन ऐसी ही आवाजें सुनाई देती रही। बस्ती के चारों तरफ जंगल है जिनमें दहशतगर्द छुपे रहते हैं और फौजी उनकी तलाश में रहते हैं। किसी भी वक्त गोलियां चलने लगती हैं और बमों के धमाके होते रहते हैं। हम तो अब इन आवाजों के आदि हो चुके हैं।
1: लेकिन दादी, ये हमला कौन लोग करते हैं?
4: क्या पता कौन जालिम होते हैं।
1: अब मेरी समझ में बात आई कि यहाँ के दवाखाने में डॉक्टर ज्यादा दिन क्यों नहीं ठहरते। अखबार और टेलीविजन वाले तो कहते हैं कि ये दहशतगर्द भी कश्मीरी ही होते हैं।
4: पता नहीं कौन होते हैं, मैं तो कहूंगी सब शेर भी

0: बीमारियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, वरना बेगुनाह इंसानों का इस तरह खून क्यों बहता?
1: लेकिन दादी, मैंने सुना है इन दहशतगर्दों को यहीं के लोग अपने घरों में पनाह देते हैं।
0: पनाह न दे तो क्या करें? अचानक कुछ लोग किसी घर में घुस आते हैं और मकान में छुपकर रहना चाहते हैं। अगर मकान वाले इनकार करते हैं तो उनको मारकर भाग जाते हैं। पता नहीं कब ये जुल्म खत्म होगा, कब अल्लाह को हम कश्मीरियों पर रहम आएगा।
1: कौन है?
2: मैं हूँ डॉक्टर निसाबा फजलू।
1: अरे तो अंदर आ जाओ। अरे तुम भी अब इस अस्पताल का एक हिस्सा बन गए हो।
3: शुक्रिया बाजी।
1: भाई ये बात समझ में नहीं आई, कभी तुम मुझे बाजी कहने लगते हो और कभी डॉक्टरनी साहिबा। तुम तो मुझे बाजी ही कहा करो, इस लफ्ज से अपनापन जाहिर होता है।
3: आप बहुत बड़े दिल की मालिक हैं बाजी, कि हम जैसे गरीबों को भी भाई समझती हैं। बाजी, क्या आपने अभी गोलियों की आवाजें सुनी थी?
1: सुनी तो थी। दादी बता रही थी कि यहाँ तो ऐसी आवाजें गूंजती ही रहती हैं।
3: हाँ दादी ठीक कह रही थी, चार दहशतगर्द दो फौजी सिपाहियों को गोली से मारकर भाग गए और अब फौज की टुकड़ियाँ जंगलों में उनको तलाश कर रही हैं।
1: लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
3: मैं बस स्टॉप पर चाय की दुकान पर बैठा था, वहीं से ये खबर सुनकर आ रहा हूँ।
1: अच्छा।
3: आप जब से आई हैं तो पहली बार गोलियां चली है ना, तो इसलिए मैं भागा हुआ आपको बताने आ गया कि कहीं आप डर ना रही हो। अब बाजी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये दहशतगर्द अस्पताल वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जख्मी होने पर इन्हें आपके पास ही आना पड़ेगा इलाज कराने के लिए।
1: लेकिन फजलू
3: जी,
1: ये दहशतगर्द इंसान नहीं दरिंदे होते हैं, अगर ऐसा कोई शख्स मुझसे इलाज कराए तो मैं तो साफ मना कर दूंगी।
3: ऐसा मत कीजिएगा बाजी, ये लोग बड़े संदिग्ध होते हैं, उनकी बात ना मानो तो फौरन गोली मार देते हैं।
0: अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ।
1: अरे दादी आप तकलीफ मत कीजिए, खाना मैं खुद ही बना लूंगी।
3: हाँ दादी आप रहने दीजिए, आज बाजी को मैं खाना बनाकर खिलाऊंगा। बाजी मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ हाँ बाजी, एक एमएलए साहब के यहाँ मैंने एक साल बावर्चीगिरी की है, अगर मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया तो आप मुझे अपना बावर्ची बना लीजिएगा, तनख्वाह मैं सिर्फ दो वक्त का खाना ही लिया करूँगा।
1: अच्छी बात है फजलू, अच्छी बात है, मुझे मंजूर है।
3: हाँ तो बस मैं अभी आपके लिए गोश्तावा बना।

0: अल्लाह खैर, ये कैसी आवाजें थी? डर कर तो मेरी आंखें खुल गई। अरे ये रोशनी कैसे हो गई? किसने स्विच दबाया?
1: ये स्विच हमने दबाया है और हमने ही अंदर दाखिल होने के लिए बाहर वाली खिड़की तोड़ी है।
0: मगर तुम लोग हो कौन? क्या तुम दहशत गर्द हो?
1: हाँ, तुम यही समझ सकती हो।
0: तो मुझसे क्या चाहते हो?
2: हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं।
0: कहाँ? तुम मुझसे क्या चाहते हो?
2: हमारा एक साथी बुरी तरह जख्मी हो गया है, तुम्हें हमारे साथ चलकर उसको देखना होगा।
0: मगर मैं कहीं नहीं जाती। तुम अपने मरीज को यहीं ले आओ।
1: हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा।
0: नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती।
2: जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे राजी से जाओ या जबरदस्ती। इनकार करोगी तो हम जबरदस्ती तुम्हें उठा कर ले जाएंगे।
1: एक बात का हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे औरत होने का हम फायदा नहीं उठाएंगे, यानी हम तुम्हें अपनी बहन की तरह ले जाएंगे।
2: हाँ।
1: और उसी तरह बखैरियत यहाँ वापस छोड़ जाएंगे।
2: मेरा साथी ठीक कह रहा है, उठकर कपड़े बदल लो, हम बाहर वाले कमरे में तुम्हारा इंतजार करते हैं। और हाँ, अपने साथ डॉक्टरी बैग जरूर ले लेना, शायद तुम्हें ऑपरेशन करना ही पड़े।
1: इसके अलावा एक शर्त और होगी, हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं।
0: या अल्लाह, मेरी मदद करना।

0: देखिए भाई साहब, अभी और कितनी दूर जाना होगा?
1: बस 5-6 मिनट और, हम अपनी मंजिल पर आ गए।
0: मुझे तो रास्ते के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, फिर मैं वापस कैसे आऊंगी?
1: तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बखैरियत अस्पताल पहुंचाना हमारा काम होगा। लेकिन याद रखना, अगर हमारा मरीज ठीक ना हुआ शायद तुम कभी वापस ना जा पाओगे। वैसे तो हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मजबूरी आ पड़े तो फिर हम दीवाने बन जाते हैं।
0: मगर भाई साहब, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, किसी मरीज की जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है।
1: हम पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को समझते हैं। तुम्हारी कोशिश हमें बता देगी कि तुम वाकई मरीज को अच्छा करने की कोशिश कर रही हो या सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही हो।
0: देखिए, MBBS की डिग्री देते वक्त हमसे हलफ लिया जाता है कि हम हर मरीज की जिंदगी बचाने में अपना इल्म और तजुर्बा लगा देंगे, चाहे वो मरीज हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो।
2: लो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अब तुम मेरा हाथ पकड़ लो और एहतियात से गाड़ी से उतर कर मेरे साथ चलो। अंदर मरीज के कमरे में जाकर तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल दी जाएगी, समझे?
0: और मेरा बैग?
1: तुम मेरे साथी के साथ अंदर चलो, बैग मैं ला रहा हूँ।

0: लीजिए, जख्म पर पट्टी भी बंध गई और अब ये 2-3 दिन में चलने फिरने के काबिल भी हो जाएंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अब आप हाथ धो लीजिए, उसके बाद आराम कर लीजिए। हमने दूसरे कमरे में आपके लिए बिस्तर लगा दिया है।
0: जी जी नहीं, मैं वापस चलना चाहती हूँ।
1: सॉरी डॉक्टर साहिबा, अब आप यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक के मरीज खतरे से बाहर ना हो जाए।
0: लेकिन आपने तो कहा था।
1: हमने जो भी कहा था वो सच है। यहाँ आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, मरीज उठने बैठने लगेगा तो हम आपको अस्पताल छोड़ाएंगे।
0: लेकिन वहाँ मेरे गायब होने पर अस्पताल और बस्ती के लोग क्या कहेंगे?
1: उसकी आप फिक्र न करें, सुबह अस्पताल में सबको मालूम हो जाएगा कि इमरजेंसी बुलावे पर आपको हेड ऑफिस जाना पड़ गया है। 2-3 दिन बाद आप वापस आ जाएंगे।
0: लेकिन मैं अब 4 मर्दों के दरमियान अकेले?
1: इसकी फिक्र आप न करें, आप यहाँ हमारी बड़ी बहन की तरह रहेंगी। हम सब आपको बाजी कहकर बुलाएंगे, आप भी हमें अपना छोटा भाई समझिए। अब आप दूसरे कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कहवा बनाकर लाता हूँ।
0: ऑलराइट, तुमने मुझे बहन बना लिया है तो मैं भी तुमको अपना छोटा भाई ही समझूंगी। लेकिन पहले आप लोग ईमानदारी के साथ मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन।
1: बहुत अच्छा बाजी, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। ये आपसे 5 साल पहले की बात है। एक रात मैं, मेरे अब्बा, मेरी बहन और मेरी दादी सो रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब्बा ने उठकर दरवाजा खोला तो 4 आदमी राइफल लिए अंदर घुस आए। उन्होंने बगैर कुछ कहे मेरे माँ बाप और दादी पर गोली चला दी। मैं घबरा कर फर्श पर गिर पड़ा और चारपाई के नीचे घुस गया। उन्होंने मेरी तरफ ख्याल ना किया और मेरे सारे खानदान को मारकर चले गए। गोलियों की आवाजें सुनकर सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए और दहशतगर्दों को बुरा भला कहने लगे। लेकिन अब क्या होना था, जिनको मरना था वो मर चुके थे। खानदान के मरने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा रह गया था बाजी। एक हफ्ते तक मैं रोता रहा, इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। और फिर एक दिन एक आदमी मुझसे मिला, उसने मेरे दुख की वजह पूछी। मैंने उसको सारी कहानी सुना थी। सारी बातें सुनकर उस शख्स ने कहा, अब तुम हिम्मत से काम लो और मर्द बनकर अपने खानदान की तबाही का बदला दुश्मनों से लो। उस शख्स ने मुझे एक ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया। वो ट्रेनिंग कैंप कहां था यह मुझे मालूम नहीं। वही मेरी मुलाकात इन 4 दोस्तों से हो गई।
0: फिर
1: बस यही हमारी कहानी है बाजी। हमें यहां वापस आए 2 साल गुजर चुके हैं। अब एक आदमी हमारा कमांडर है, वो हमें खबर देता है कि किस जगह पर फौजी सिपाही मिलेंगे, हमें किस घर को लूटना है, और हम उसका हुक्म मानने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। ये परवेज भी आज इसी तरह के हमले में जख्मी हुआ है। जमीन ठीक कह रहा है बाजी, इस 2 साल के अरसे में हम बात पूरी तरह समझ गए हैं कि वो लोग दहशत करते हम हमें यतीम बनाकर और हमारे अंदर इंतकाम की आग भड़काकर हमें अपना साथी यानी दहशतगर्द बनाना चाहते थे। और अब हम खुद खूनी बन चुके हैं, इसलिए हम ऐसी घिनौनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन लोगों ने हमारे जख्मी जज्बात और हमारी कच्ची अकलों का फायदा उठाया है। अब तो हम चारों जानते हैं कि किसी न किसी दिन हमें भी मरना होगा। आज तक जिस तरह हम अपनी गोलियों से बेगुनाह लोगों को मारते आए हैं, उसी तरह किसी दिन उनकी गोलियों से हम भी मारे जाएंगे। हम सिवाय दहशत करते कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है।
0: नहीं, गलत कह रहे हो तुम। तुम अब भी बच्चे हो, ना समझो। तुम चाहो तो नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो।
1: लेकिन अब हम नई जिंदगी शुरू कैसे कर सकते हैं? हम तो किसी कस्बे में जाकर रह भी नहीं सकते। अगर हम गुमनाम बनकर रहना भी चाहें तो ट्रेनिंग देने वाले लोग हमें कत्ल कर देंगे या फिर हम पुलिस की गोलियों का निशाना भी बन सकते हैं।
0: मैं तुम्हारी मुश्किल को समझ गई हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिलवा सकती हूँ।
1: सच सच बाजी, क्या क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हम सब इस खून खराबे की जिंदगी से तंग आ चुके हैं।
0: देखो एक रास्ता है।
1: वो क्या? क्या वो क्या?
0: तुम चारों अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
1: क्या? ये क्या कह रही बाजी आप? हमने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो वो हमें दहशतगर्द बताकर गोली मार देंगे या फिर अदालत के जरिए फांसी में चढ़ा देंगे।
0: हाँ। देखो जो कुछ तुम लोग कर चुके हो उसकी कुछ तो सजा भुगतनी होगी ना। तुम अभी कम उम्र नौजवान हो और तुम्हारे दहशतगर्द बनने में तुम्हारी मर्जी का कोई दखल नहीं था, बल्कि तुम पर जुल्म करके तुम्हें भड़काया गया था। देखो मेरे एक चाचा फौज में ब्रिगेडियर हैं, मैं उनको जाकर तुम्हारी बेगुनाही की कहानी सुनाऊंगी। मैं चाचा से ये भी कहूंगी कि वो अदालत से सिफारिश करके तुम्हें कम से कम सजा दिलवाए।
1: लेकिन अदालत हमारी बात का यकीन कैसे करेगी?
0: तुम लोग शायद अखबार नहीं पढ़ते, अब मुल्क के हालात बहुत बदल रहे हैं, बहुत से खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि मेरे चाचा तुम्हारी सजा में बहुत कमी करा देंगे, और ये सजा भी तुम्हारी ही भलाई के लिए होगी, क्योंकि जेल में तुम उन दहशतगर्दों से महफूज रहोगे जो तुम्हारे दुश्मन बन गए होंगे। मुझे यकीन है 2-3 साल के अंदर अंदर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। जेल से छूटने के बाद कश्मीर तो क्या, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा वतन होगा। तुम किसी भी जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो।
1: जमील खान, बाजी की बात कुछ समझ में तो आती है।
0: एक बात और समझ लो, जो लोग जिहाद का नारा लगाकर ये दहशत फैला रहे हैं, फिदाइन बनकर दूसरों को कत्ल करने के लिए अपनी जानी भी दे देते हैं, वो इस्लाम की तालीम से बिल्कुल नावाकिफ है। पहली बात तो ये कि फिदाइन जोश में आकर अपनी जान दे देते हैं, और ये खुदकुशी है, और खुदकुशी इस्लाम में हराम है। दूसरे जिहाद में बेगुनाहों को कत्ल करने से साफ मना किया गया है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जिहाद उस मुल्क में वाजिब है जहाँ कोई हुकूमत मजहबी मामलात में मदाखलत करे, जबकि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपने खुदा की इबादत करने के लिए आजाद हैं। इसलिए खुद को कानून के हवाले करके तुम कत्लो खून से भी बचोगे और अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बना सकोगे।
1: हम आपस में मशवरा करके बहुत जल्द आपको बताते हैं।

0: बेटी मैं तुम्हारी खातिर ये खतरा मोल ले रहा हूँ, क्योंकि हम फौजी लोग इन दहशत गर्दों पर कभी भरोसा नहीं करते।
1: मुझे मालूम है चाचा जान, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैंने इंसानी नफ्सियात पर भी काफी तजुर्बात किए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो चारों शरीफ घरानों के नेक लड़के हैं। चाचा जान, अगर आपकी कोशिशों से वो सुधर गए तो आप एक बहुत बड़ा नेक काम करेंगे।
0: खैर, चलो चलकर देखते हैं। हैरत की बात है, कैसे घने जंगल में जीप का रास्ता बना हुआ है। शायद दहशत गर्दों ने ही दरख्त काट कर ये रास्ता बनाया होगा।
1: हो सकता है ये रास्ता काफी पुराना हो और इस रास्ते से लोग एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाते हो। और वो देखिए चाचा जान, अब यहाँ से दरख्तों का घनापन खत्म होता जा रहा है, हम चश्मे के पास पहुँच रहे हैं।
0: तुम तो यहाँ से गुजर चुकी हो बेटी, इसलिए रास्ता पहचान लेना चाहिए।
1: चाचा जान, मैं रात के वक्त आई थी और मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, फिर वापसी पर अंधेरा था, इसलिए मैं रास्ता अच्छी तरह नहीं देख पाई थी। अरे वाह, देखिए हम पहुँच गए। चाचा जान, वो सामने देखिए, चश्मे का पानी नजर आ रहा है ना।
0: तुम ठीक कहती हो,
1: बस चश्मे के पास पहुँच कर आप गोलियाँ।
0: अरे, यहाँ तो पहले ही गोलियाँ चल रही हैं।
1: चाचा जान, ये तो ऐसा लगता है कि इन लोगों पर ही किसी ने हमला कर दिया है। चलिए आप आवाजों की तरफ चलते रहिए, जरूर पास में ही वो मकान होगा।
0: मैं अपनी राइफल से गोलियां चला रहा
1: हूँ। लेकिन चाचा जान, इससे क्या फायदा होगा?
0: अगर कुछ लोग उन लड़कों पर गोलियां चला रहे हैं तो वो हमारी गोलियों की आवाज सुनकर डर जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि उनकी मदद को कुछ लोग आ गए हैं।
1: बस अब यही रुक जाइए, देखिए तो क्या होता है।
2: फिरोजाबादी, क्या तुम हो? हाँ, मैं फिरोजा का चाचा बोल रहा हूँ और फिरोजा भी मेरे साथ है, तो हम आ रहे हैं, आप गोलियां मत चलाइए, हमने इनको खत्म कर दिया है।
1: अरे,
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, ये वही दहशतगर्द थे जिनके काबू में हम थे। उन्हें न जाने कैसे पता चल गया कि फिरोजा बाजी हमारी मदद करने गई हैं। उन्होंने हम पर हमला कर दिया था, वो चार आदमी थे, हमें दो को मार कर आया है। आपकी गोलियों की आवाजें सुनकर वो डर कर भाग गए।
1: लेकिन शुक्र है कि तुम लोग खैरियत से हो।
3: लेकिन अफसोस बाजी, जिसे आपने नई जिंदगी दी थी उससे खुदा ने फिर जिंदगी छीन ली। हाँ, वो जख्मी था इसलिए भाग नहीं सका, हम तो भाग कर दरख्तों के पीछे छुप गए थे, लेकिन परवेज अपने अल्लाह से जा मिला।
1: या खुदा, होनी को कौन टाल सकता है, खुदा का यही एहसान बहुत है कि तुम तीनों बच गए।
0: मैं समझ गया, ये वही लड़की हैं तुम जिनकी सिफारिश लेकर मेरे पास गई थी। ये रस्मी बातों का वक्त नहीं नौजवानों, तुम पर हमला होने का मतलब है कि कोई शख्स तुम्हारी निगरानी कर रहा था। जब उसने देखा कि तुम लोगों ने फिरोजा को हॉस्पिटल में बजाए शहर के पास छोड़ दिया है तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने फौरन अपने आकाओं को खबर कर दी, इसीलिए तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की गई थी।
3: आपका अंदाजा दुरुस्त है और हम जानते हैं कि दुश्मन का वो जासूस कौन है जिसने हमारे बारे में दुश्मनों को खबर दी होगी।
0: कौन है वो शख्स, क्या तुम उसका पता ठिकाना जानते हो?
3: जी ब्रिगेडियर साहब, और बाजी फिरोजा भी उसको अच्छी तरह से जानती है।
1: मैं उसे जानती हूँ, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती।
3: आप फजल उर्फ फजल को तो जानती है ना?
1: हाँ, मगर वो तो बहुत नेक लड़का है, अस्पताल में हमेशा मरीजों की मदद करता रहता है।
3: वो भी दहशतगर्द है और जासूसी का काम करता है।
1: क्या?
3: वो सारी बस्ती की खबरें दहशतगर्दों को पहुँचाता है।
1: क्या? तो चलो पहले अस्पताल चलते हैं, अभी उसे यहाँ के हालात का पता नहीं होगा इसलिए वो बेफिक्र होगा और आसानी से पकड़ा जाएगा।

0: चलो ये ठीक है, अभी उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं होगा।
1: बस तो चलो जल्दी से जीप में बैठो, हम अभी जाकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे।
0: ठीक है।
2: अगर वो दहशतगर्दों का जासूस है तो उसे उनके खुफिया ठिकानों का भी पता होगा, उसके जरिए हम बहुत से दहशतगर्दों को पकड़ सकते हैं।
0: हाँ, आपने ठीक कहा बाजी, चलिए हम आपके साथ हैं। और हाँ, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं ब्रिगेडियर साहब कि आपने वक्त पहुँच कर हमारी जान बचाई।
1: मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम मुद्दत की सजा मिले। बेटी तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारा पहला ही मिशन कामयाब था।
2: या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि इन लोगों के काम आ सके।

और विशाल नहावकर, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है रोहिदास चौक पंधारपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे का। सतीश अनेजा हैं बिमला अनेजा के साथ चंडीगढ़ सिटी से और सुनने के मंतजर अगले नकमे को। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरनूर सिंह है गांव लोहगा ठाकुरावाला से, और ये फरमाइशी मेल मौसूल है सिद्धेश्वर गजबतमाल से पंजाब रामटेके, यशोर रामटेके, शव्य का। इसी नकमे को सुनना चाहते हैं हमारे वो दोस्त जो शामिल नहीं हुए हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मिराज जहां, आजाद नगर लक्सा हरिद्वार से। और अगला ईमेल है आकर हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश गोहन का, सुमित गोहन का, ध्वनि गोहन करपरी का, और अब है जनाब नकमे की बारी। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये खूबसूरत रूमानी नकमा।

0: तो यकीनन आप समझ गए होंगे इतनी खूबसूरत शायरी किसने की इस नगमे में। जी हाँ, हसन जयपुरी साहब ने कलम बंद किया था इस खूबसूरत रोमानी नगमे को। और अब अगले पायदान की जानिब कदम बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको एक खूबसूरत नगमा। और किसकी फरमाइश पर है ये भी बता दें तमाम सामईन। बहुत सारे सामईन फरमाइशें भेज चुके हैं, उसको हम थोड़ा सा तरतीब देते हैं। भोपाल से हैं चंपालाल दुबे अनंत और दर्शित और उनके कुछ और साथी, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है। पूनम सेन, दीपक सेन, कार्तिक और भाई मनोज सेन का सिटी सेंटर खंडवा से। अगले नकमे की फरमाइश की है वरुण जोलकर से, महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद ने। आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा और राहुल कुमार वर्मा। दादरी गेट भिवानी से सुनना चाहते हैं तामिर शाह प्रोग्राम का अगला नकमा, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, कपिल मेहरा और उनके अहले खाना। और मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और आरती कुमारी। ये फरमाइशी में छत्तीसगढ़ के पथरिया भरेवा से मिला है, चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल और नोमेश का है। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं गांव ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, वंदना और उनके बहुत सारे साथी। जमशेदपुर से फरमाइश रही है अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार की और शब्बीर हुसैन, मुज्जू बाबा और साथ में उनके हैं शहजाद हुसैन, सब्जी मंडी बुलडाना से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं विनायक बेंडे, मंगला और शुभम बेंडे, आकोट से। ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर हुसैन अंसारी और नईम रजा सिद्दीकी का, पश्चिम थोक गंज डंडवारा से हैं। और अगला ईमेल है नासिर शेख, नाजे नासिर, साजिद शाहिद का, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, अनंता भगत, अरुणा भगत और चेतन है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। ये परसोवा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायर बानो, साथ में करिश्मा। और अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम साक्षी, अहले खाना वाडी खाम गांव से हैं। और ये फरमाइशी मेल मौसूल है सुदर्शन शाह प्रखर और कुशल शाह का, पन्ना टॉकीज नेपानगर एमपी से। और रामगढ़ कैंट से सुनने के मुतमन्नी है इस नगमे को महेंद्र मोदी ठाकुर साहेब और प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, कुलदीप और अहले खाना है, करणवीर हाउस, भुचो कैजिया, बठिंडा पंजाब से। और आप हैं सत्येंद्र चंसौरिया, आदर्श सार्थक और अहले खाना, पैजौनिया जालौन यूपी से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, वक्त फिल्म से है, साहिर साहब का लिखा हुआ, रवि ने मौसीकी तरतीब दी।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है,
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं,

0: क्या जाने उसे वहम है क्या मेरी तरफ से, जो ख्वाब में भी रात को तन्हा नहीं आता।
1: नहीं, खुद पे नहीं,

और अगला ईमेल किसका है? जी हाँ, देख लेते हैं जनाब। नीरज अग्रवाल हैं, साथ में सचिन अग्रवाल, डीकेएलबी भी हैं, पश्चिम विहार दिल्ली से आपने फरमाइश हमें साल की है। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, जयपाल यादव की फरमाइश सागर एमपी से मिली है। इसी नाम को सुनना चाहते हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी, शनि मंदिर चौक खंडवा से। और आपने धर्मेन्द्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। तालुका निवासक खुपटी से फरमाइश की थी बंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला पोपलघट ने। और आप हैं गुवाहाटी आसाम से हरिन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी की फरमाइश थी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और अनिल बुरांडे, अनिल उषा बुरांडे दरअसल पूरा नाम है, और अनुश्री धनश्री बुरांडे भी हैं पंदर कावड़ा से। ये फरमाइश आपने साल की। और जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, साथ में विलिस जनकपुरी सहारनपुर से। और ये फरमाइश है हयात कॉलोनी अरेरे बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल की। और इसी नकमे को सुनना चाहते थे हिना साबरी, आयजल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम, बिशनपुर गेडी झारखंड से। और आप हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी और अहले खाना। इसी नकमे की फरमाइश की थी नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, निवृत्ति शेरसागर, संजय कुमार चौहान ने। और तामिल शाद प्रोग्राम की अगली पायदान पर है नगमा लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। ब्लैक कैट फिल्म से हमने इस नगमे का इंतखाब किया है आपके लिए। जानिसार अख्तर ने इस नगमे को लिखा, मौसीकी एन दत्ता ने दी। और सुनने के ख्वाहिशमंद आप तमाम सामईन। आप हैं तंबरम चेन्नई से शाहिद अली, इफ़त फारूकी और हिफ्जा अली। और अगला ईमेल मिला है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और दिशानी का, आपने जलालाबाद वेस्ट से किया फरमाइश। और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत और उनके अहलखाना। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कहीं ये पहले शामिल तो नहीं हो चुके हैं। चमनपुर उदयपुर से सभिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ गणेशपुर गंज टंडवाला के एटा से शेख शमा परवीन, बेबे मुस्कान के साथ में एम फारूक शेख। और आप हैं रेलवे रोड गंज टंडवा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, संजय साहू साथ में उनके सुजाता भी हैं और शशांक भी हैं। पोटिया कला दुर्ग से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी और मोहम्मद रिहान। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा, बागबान मंजिल छोटी बलिया करजा से नूर आयशा अहमद बागबान, इकबाल अहमद और अखलाक अहमद और अहल खाना। और ये फरमाइश है मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी की। अगले नकमे को आपकी नजर पे करते हैं। आप हैं सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से। अजमेर शरीफ राजस्थान से फरमाइश है गुलनाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी की। किशन सबकाल, अच्छा सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीट शहर से सुनने के मुंतजिर अगले नकमे को। रवि कुमार राहुल साथ में रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, कस्बा बराड़ा, अम्बाला हरियाणा से। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा और गौरव गरिमा शर्मा का। और सहदेव दामोदर ये पहले शामिल हो चुके हैं यकीनन, ये तो इतना याद है मुझे। राम रतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान है किदवई नगर से, दुपरा टाउन से, बिलम गेट काजगंज से हैं एम असलम सैफी, जेबुन निसा बेगम, राहुल मनवर, सरला मनवर, बेबी प्रियांशी, शाहनगर यवतमाल से। और मोटाला बाजार से फरमाइश की बबलू, शेख वजीर और शेख सोहेल ने। और आप हैं बुडाना वट सिंह की महाराष्ट्र, अमोल मानकर, शुभता मानकर और श्लोक कुमार। और ये फरमाइश आई है बलिया के कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार की। और आप हैं विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, नागपुर महाराष्ट्र से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

और दोस्तों इसी नकमे की फरमाइश की रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से इस नकमे को सुने राष्ट्रपाल गजबीए, राधिका गजबीए और अहले खाना, और ये फरमाइश है गगनदीप ठांडी, तृप्ता ठांडी, डॉक्टर प्रियंका ठांडी की टोरोवाल नवा शहर से, बड़े गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द साहब की फरमाइश भी हो गई है मुकम्मल। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइडलाइन। कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर लिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल भी शामिल हो गए। और ये ईमेल मिला है पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा का कुमार गली कोलगांव से। और दोस्तों तामिल शायद प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामने की नजर करते हैं। मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है। नई बस्ती गंज डुंडवा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी का, और माला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, मोहम्मद अजीम और साथ में कामरान खान। अगला नकमा आप भी सुनना चाहते हैं, गाडिया नगर यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना राय लोखंडे, साथ में शैलेश और जफर मौजम शेख बेबी अलिजा, हाँ जी हाँ अलिजा शेख भी हैं, फलक तबस्सुम भी हैं, रघुवीर नगर से। इसी नकमे को सुनना चाहते हैं वो दोस्त जो शामिल हो गए, तो इनको साइड लाइन करना पड़ेगा इनके ईमेल को। और ये फरमाइश ईमेल मिला है गंज डिंडवारा यूपी से मास्टर खेलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख का। और अगला ईमेल भी रिपीट है, इसको भी करते हैं साइड लाइन। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और ये फरमाइश आई है उन दोस्तों की जो हो गए हैं शामिल। आगे बढ़ते हैं ना। खान मंजिल गंज ढुंडवारा से आगा खान आगा, बेगम निदा खान और साथ में बेबी अमल खान और उनके कुछ और साथी, और ये फरमाइश ईमेल मिला है। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी का, और आप हैं रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय, गांधी बाग अकोला से। और सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, साथ में शव्या, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ नीलम बत्ता, मुकेश बत्ता और वंश का।

मेरा मोहल्ला पटियाला से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई। सिद्धार्थ नगर देरापुर बाबली से गजानंद येले नवदीप येले साथ में सुशील और शाहरुन अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी हैं। हरपुर मटकली जिला बरेली से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा से और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, दातार सिंह इनका दरअसल पूरा नाम है और दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर, अक्षय रामेकर राहट गांव के अमरावती से शामिल हुए, अशोक दले और सविता दले, ऋषिकेश दले, कुमार गली श्रीरामपुर से और ये फरमाइश आई है शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी और नदीम इदरीसी की, मोहम्मद कन्नौर से हैं आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली और इसी नकमे को सुनना चाहते हैं नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव और जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान, नीलू खेल बदा पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू कोयल मल्होत्रा, साथ में नानक चंद्र मल्होत्रा। तो नकमा सुन लेते हैं, उसके बाद बीच बीच में आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे। नकमा जी हाँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में और फिल्म है आरती। मजरू सुल्तानपुरी, नकमा निगार, रोशन है मौसीकार।

दोस्तों ऐसा करते हैं, इसको इंटरप्ले करते हैं और नाम शामिल कर लेते हैं। मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान और बेगम शमा रफी, और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइडलाइन। पुरानी भिलाई 3/14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, साथ में बेगम हमीदुल सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। भूषण खेड़ा विश्वखेड़ा विशाल खेड़ा है फाजिलका पंजाब से, और ये फरमाइश मिली कल्पना मदनझा मानक और मानव और मैंक की ढलाडवापी गुजरात से। दिनकर सालवे, गंगा सालवे, शुगर फैक्ट्री गेवराई मराठवाड़ा से शामिल हुए हैं तामिल शाह प्रोग्राम में अपने ईमेल के जरिए। और अगला ईमेल है साधु शेर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ का, बलकरण वर्मा, अंजनीय ज्योति हैं, गांव पंचायत बठेना पाटन दुर्ग से। और मनवर लल्ला पीरजादा, नसीर मिर्जा, अरबाज शहबाज हैं पश्चिम थोक गंज टंडवार से। और ये फरमाइश है गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम की, और आप हैं उदयपुर से राजकुमार माथुर, अशरफ खान और गोपाल बाबू सिंधी, रोशन लाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता हैं भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, सिंदरौली मीरगंज बरेली से जीशान वासी, इमरान शेख और रेहान शेख और उनके कुछ और साथी, और इस नगमे को सुन रहे हैं काशी निवास बंगाली पंजन नागपुर से भारती प्रकाश रंबाड़े, वैष्णवी हर्षल रंबाड़े और जहानवी रंबाड़े। राजेंद्र चड्डा, रेखा चड्डा की फरमाइश है नांगोई दिल्ली से, बड़े दिनों के बाद तशरीफ लाए आप चड्डा साहब, सब खैरियत तो है और खुशामदीद कहते हैं आपको। और ये फरमाइश मेल मोहम्मद मुजीब शेख, जायना नावे शेख, बेबी आमिरा शेख का है, आशियाना अपार्टमेंट बांद्रा मुंबई से, बठिंडा रोड मंडी डबाली से रंजन नारंग, अंजू नारंग और साथ में मोहित और सदानंद मंदूरकर, सुशीला देवी मंदूरकर, दापकी रोड अकोला से। उदयपुर से कांता देवी, किरण देवी और दीपिका, और दुर्गा ये पहले शामिल हो चुके हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं, मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, चेतन विश्वकर्मा है तख्तपुर छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसन पवार, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं।

इस शो को चंचल से नागपुर सुन रहे हैं बरगद बेल हुबली कर्नाटक से फैज अहमद शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी श्याम किटे बंदना किटे कार्तिक किटे की फरमाइश राहट गांव कैंप अमरावती से मिली है और आप हैं मानक चंद्र राठौर अशोक कुमार वाघे और अहले खाना जामली कला गांव से आपने फरमाइश मिसाल की है और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है मदरसा गेट बापर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी कामरान इरशाद हजरत तबस्सुम का और भारत भूषण साथ में उनके हैं अंजू श्रीवास्तव व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आपने फरमाइश इरसाल की है और हिंगोली महाराष्ट्र शाहजी बोर्ड के नंदा बोर्ड के साथ में उत्तम जमधाड़े और ये फरमाइश आई है मध्य प्रदेश के भोपाल से चंपालाल दुबे अनंत और दर्शित की और मुझे लगता है कि ये पहले शामिल तो नहीं हो जाना ज्योति नगर नौखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर कैलाश मिस्त्री घनश्याम भार्गव अहले खाना गुरमीत सिंह मीता साहब हैं साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से और ये फरमाइश आई है सदर बाजार कुरावली अनिल कुमार वर्मा मायदेव वर्मा राहुल कुमार वर्मा की राजीव जेटली साथ में विपिन कुमार जनकपुरी दिल्ली से और नरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और उनके अहले खाना कलनौर से आपने फरमाइश भेजी और गवरी चौक उदयपुर राजस्थान से रमेश नचानी विनीत नचानी मिथिल नचानी और ये फरमाइश आई है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले इमरान अहमद और अहले खाना की और इसी नगमे को सुनने की ख्वाहिश जाहिर की थी गुरप्रीत सिंह बिलिंग और वीर सिकंदर सिंह बिलिंग ने डंगेड़िया सरहिंद पंजाब से शंभू दयाल खटक विमला देवी और पूजा खटक हैं गांव जाखो राजस्थान से मास्टर विट्ठल सुरोशी सुषमा सुरोशी मायरा सुरोशी की फरमाइश काटा रोड वाशिम से मौसूल हुई और आप हैं संजय चौधरी मैत्री चौधरी गार्गी चौधरी सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी आस्था अंसारी नौरीन और एम ए वहीद रुमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फसी फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से और सुनील सामक अंजलि सुनील और सेजल पाटिल है महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसाइटी सिडको संभाजी नगर से और ये फरमाइशी मेल आखिरी है इस प्रोग्राम का बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद और आशा भोसले की आवाज में ये थी इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लेकिन एक ईमेल और जाते आते दिखाई दिया जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी का अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। दुनिया इस समय एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में कई बड़े और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की घोषणा की है, चाहे बात हो मैरिटाइम सर्वेलेंस की, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स की, एनर्जी सिक्योरिटी की, सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क्स की या फिर AI आधारित एग्रीकल्चर इनोवेशन की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने क्वाड की भूमिका और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या अहम बात कही।
1: वी हैव जस्ट कंक्लूडेड वेरी सब्सटेंटिव एंड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। अंडरस्टैंडेबली मच ऑफ द डिस्कशंस एंड इंडीड द बायलैटरल एक्सचेंजेस वर डिवोटेड टू द करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। बीइंग क्वाड, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड HADR एक्टिविटीज।
0: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है। हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से।
2: देखिए, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी एक जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भूराजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बदल रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश जो चार देश है ये अपनी साझेदारी इनकी जो बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है। तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा और कहां पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है, उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता। ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो हिंद प्रशांत है इस पर अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये क्वाड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय।
0: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
2: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे आपकी जो एसेट्स है उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते हैं। चाहे तो देश है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं कि भारत जो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है। तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहां पर क्या चल रहा है, और उसके साथ अगर आप किसी दौर देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने जो कैपेबिलिटीज उनको और ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, तो सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है। तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।
0: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है। आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
2: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है, जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर। तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर्स को मोबिलाइज करें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रिजिलियंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा, ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज कर रहे हैं, कि आपकी ऑल्टरनेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक अल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
0: जी बिल्कुल, एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रेजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
2: जिस तरह से आपने इसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमें ये बात अभी नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ही मानती थी कि अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए एसेंशियल और इसे हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है एक तरह से अलार्म बेल है दुनिया के लिए कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस है कि जो कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोलियम प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात करते हैं तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश में है वो नजर आ रही है।
0: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो AI एंगेज

0: इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
1: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है, उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रिजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की कि एक ऑल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है कि हम कि और जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए, मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में। और जब हम AI एंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कैसे AI को इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, तो काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रिजिलियंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में AI एंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और AI और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज को साध सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा नमूना क्वाड देशों में पेश।
0: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
1: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर एंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ, अगर आप आए चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे, मुझे लगता है। ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है, और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में, और वो देश जो क्वाड की ओर उन्हें भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उनसे उनका भी फायदा।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियलिटीज क्या होंगी और जियो पोलिटिकल रियलिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीटी फ्री डिश पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है। بزم موسیقی.

जाने के बावजूद ही हमले हुए हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस बात की हिमायत नहीं करते कि पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने के अब्राहम माहदे में शामिल हो। उन्होंने इस रायजनी का इजहार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान में अमन मुजाकरात में शामिल मुल्कों पर जोर दिए जाने के बाद किया कि वो अब्राहम माहदे में शामिल हों जिनमें इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान सिफारती इकतदी सलामती पर तोज्जो मरकूज की जाए। मुतहदा अरब अमारात और बहन पहले इस माहदे में शामिल है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्क रोबियन रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव के साथ फोन पर बात की और रूस यूक्रेन लड़ाई और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान टॉमी पिकॉट ने यह जानकारी दी है। तर्जमान ने बताया कि फरीकैन ने बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। रूस के वजीर खारजा ने कहा कि रूस के इलाके पुरअमन लोगों सिविलियन ठिकानों के खिलाफ यूक्रेन की सरकार के लगातार हमलों के तनाज में रूस ने कीव के मुख्तलिफ मकामात पर हमले करने का फैसला किया। कॉमर्स सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के वजीर आजम मार्क कर्नी से मुलाकात की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने बाहमी इश्तराक को मजीद वसत देने के बारे में दूर अंदेशी पर मबनी तबादला ख्याल किया और भारत और कनाडा के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौते जल्द तय पाने के सिलसिले में पूरे मुद्दे का इजहार किया। वजीर मौसम ने कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद के साथ भी वसी तर बातचीत की और दोतरफा कलीदी साझेदारी के लिए तजारत सरमाकारी टेक्नोलॉजी के रबतों की अहमियत पर जोर दिया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन हज अहम तरीन मनासी के हज की अदायगी के लिए कल सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमीन हज सफेद एहराम बांधे हुए थे जिन्होंने खुतबा हज की समाअत की और मस्जिद मीरा में एक साथ जोहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हजाज इकराम मुजल्फा के लिए रवाना हुए और ये एक साथ मगरिब ईशा की नमाज अदा की। वो मुजल्फा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो आज मीना वापस पहुंचेंगे जहां वो कुर्बानी का फरीदा अंजाम देंगे और रमी जमारात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हजाज इकराम फरीजा हज अदा कर रहे हैं। बैडमिंटन में आज ओलंपिक का दो बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु और भारतीय मर्दों की डबल की जोड़ी सत्विक साईराज रिंकी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के 16वें राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कोसुमा वरदानी को 21-17 21-18 से हराकर टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं, जबकि मर्दों के डबल्स मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने अमरीका की जोड़ी प्रेसली स्मिथ और चैन जीई के साथ एक सख्त मुकाबले में 26-28 21-15 21-13 शिकत देकर दूसरे राउंड में अपनी जगह बनाई। नौजवानों के उम्र खेलों के महकमे के वजीर मनसूख मांडविया ने कल कहा कि 2036 खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक खेलों में योग आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो मुल्क सेहत के सिलसिले में रिवायती तरीकाकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। कल वियतनाम के डानांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा। मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे के 1 तमगा जीता। 65 किलोग्राम जुमरे में मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को 12-4 से हराकर सोने का तमगा जीता। 79 किलोग्राम के जुमरे चंद्रमोहन ने भी कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले में उसे 7-6 से शिकस्त दी। इस दौरान 92 किलोग्राम के जुमरे में पुनीत कुमार ने चांदी का तमगा जीता। 125 किलोग्राम जुमरे में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों ने भारत बैलुकाई समुद्री निगरानी ताउन का आगाज किया। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरक बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जनसम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नष्ट कर दिए जाएंगे। खेलकूद के वजीर मनसूख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलम योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान

0: मोहन कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DDF डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मसीह में जब सुनिए शमसुद्दीन फरीद देसाई का रुद्र वीणा पर बजाय राग मालकोस।

0: तबादला ख्याल किया और भारत और कनाडा के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता जल्द तय पाने के सिलसिले में पुरुमीदी का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद के साथ भी वसी तर बातचीत की और दो तरफा कलीदी साझेदारी के लिए तिजारत सरमाकारी टेक्नोलॉजी के रबतों की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात हथियारों की इस मुहिम को खत्म करने की गरज से आइंदे 6 महीने के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नस्ब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के हमले से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर भी उतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविज हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के रोल की यह कहते हुए सताइश की कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर BSF फौज इंसानी और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल 4 सती ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह कल राजस्थान के बीकानेर के नजदीक BSF की साचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 सती ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन हज अहम तरीन मनासी के हज की अदायगी के लिए कल सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमीन हज सफेद एहराम बांधे हुए जिन्होंने खुतबा हज की समाअत की और मस्जिद निबरा में एक साथ जोहर और असर की नमाज अदा की और तमाम जाज करम मुजल्फा के लिए रवाना हुए और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा की। वो मुजल्फा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो आज सुबह मीना वापस पहुंचेंगे जहां वो कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमी जमारात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हुज्जाज इकराम फरीजा हज अदा कर रहे हैं। नौजवानों के उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने कल कहा कि सन 2036 खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योग आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रिवायती तरीकाकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योग आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है। दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है। कल वियतनाम के डानांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा। मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। 65 किलोग्राम जुमरे मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को 12-4 से हराकर सोने का तमगा जीता। 79 किलोग्राम के जुमरे में चंद्र मोहन ने भी कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले में उसे 7-6 से शिकस्त दी। दौरान 92 किलोग्राम के जुमरे में पुनीत कुमार ने चांदी का तमगा जीता। 125 किलोग्राम के जुमरे में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। खास खबरें इस बुलेटिन की। एक बार फिर क्वाड मुल्कों ने भारत बेलकैद समुद्री निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नष्ट कर दिए जाएंगे। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलम योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का 1 बजा चाहता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे. गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है. राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की.
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी. परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए. और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया. सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई. विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की. भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेंगे. प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सभी फैसले दिए. शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया. पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया. सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया है. यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है. नई दरें कल से लागू हो गई. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे. डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी. आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालीफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

शुभ आप सभी कार्यक्रम गीत सुन रहे। और अभी आपने सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। अभी सुन रहे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मेरा साया से बहुत ही दमदार गीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए IR लाइव न्यूज 24/7।

श्रोताओं आपने सुना हमने आज फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे और ये है आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

जवान सबसे पहले सुनो मियां करके वर्जिश बनो जवान चेहरा मालिश किया करो थोड़ी मालिश किया करो स्टाइल से उठे कदम सीना ज्यादा तो पेट कम है किबला

काला झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सही फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसलों को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah yesterday said the committee will be chaired by former

आकाशवाणी दिल्ली का याया लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आप सुनते हैं गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं एस सिद्धार्थ, वायलिन पर संगत की है AG सुब्रमण्यम ने, जबकि मृदंगम पर संगत कर रहे हैं VM कानन।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांति।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आप सुनेंगे आदि तालम जो कि विलंबित तीन ताल में निबद्ध है। मृदंगम पर संगत की है MV चंद्रशेखरन ने, वायलिन पर हैं R श्रीधर, घाटम पर N कानन, जबकि तबले पर संगत की है बाबर लतीफ। पखावज पर साथ दे रहे हैं मोहन श्याम शर्मा और सारंगी पर संगत की है एहसान अली ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई 2026। सुबह के 4:53 और 51 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। तो वहीं 6:45 का वक्त होगा कार्यक्रम रामचरित मानस का।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5
1: चेत आवन का सदका सर्व सुख होवा, जहां जहां खालसा जी साहेब, तहां तहां रथ आरे आए तो देग तेग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीता, श्री साहेब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी, सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, बबेक दान वसाहा दान, पुरुषा दान, दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इस्नान, चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी, सिखा दा मन नीमा मत उच्ची, मत पात दा राखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दार जियो, श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे, जिन्ना तो पंथ नू विसोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार, ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नू बगसो, हे नमानिया दे मान, नतानिया दे तान, नोटिया दी ओट, तन तन, श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, आप जी दे पावन

السلام هلا سوتها جن مستك طور.

दिवामेसु नायले प्रच जयनन तुम खंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल पान किसन जाद भया पार जात गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद तर्म हुआ नाउ खुदा येलो पया नील बस्तले कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी।

को बकरार खा सबको आख पाए कोई पुराना सुटिया पी फिर पाइए हो नानक तग न टूटई जे तक हुए।

0: कटे जप माली तान मले शाखाई अंतर तूजा परेक ते बस संजम तुरका पाई सोडी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: साम कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे
0: रिद कहे रहया पर पूरा नाम देवा मैं सू नहीं।

0: प्राच जाय नानक तो मुख अंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान किसन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद थर्मल हुआ नाव खुदाई अलो पया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क उठानी मिल किया मानस खाने कर निवास श्री वगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे रास कूड़ा व्यापार कूड बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़या भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई
1: नील बस्तर प्रमाण मलेश
0: प्राण पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अना साडा फिटे कन फिटे फिर करे मन जूठे चुली परे कहो नानक सच त्याई है सुच हो वे ता सच पाई पौड़ी चते अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाए दाया फिर उड़े आके ही परम कराए दाया।